शुभ प्रभात दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के भजनों के इस प्रोग्राम में। भजन क्यों किए जाते हैं, यूं तो सभी को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी भजन करने से जो मन की शांति हमें मिलती है, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, सुबह सुबह जो हमारे चित्त को, हमारे स्वभाव को, हमारे सोचने की शक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन।

हेलो दोस्तों, आज कैसे हैं आप? जिंदगी को जीने के तीन नियम। नियम नंबर एक, अपने दुख में खुद को अकेला समझना, केवल अपने दर्द के बारे में सोचना दुख को और बढ़ा देता है। भाई, हम दूसरों के प्यार और दर्द को समझ ही नहीं पाते। जितना हम प्यार करते हैं उतना खोते जाते हैं, लेकिन जितना खोते हैं उतना सीखते भी जाते हैं। जितना सीखते हैं उतना और प्यार करते हैं। यह सब एक पूरा चक्र है, जीवन पाठशाला है और प्यार उसका सबक। हम कुछ भी नहीं खोते, पाते ही पाते हैं। नियम नंबर दो, हम सबको अपने पैमानों पर समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। हम हर चीज समझ लेना चाहते हैं, भले ही हमारी मंशा गलत ना हो, लेकिन दूसरों को लगातार अपने जैसा बनाने की कोशिश में हम दरअसल उन्हें चोट पहुंचा देते हैं। लोग हमसे दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि सब कुछ समझने की कोशिश ना करें, छोड़ दें। कई बार समझने से ज्यादा जरूरी दूसरों को अपनाना हो जाता है, वो जैसे भी हों। नियम नंबर तीन, हम तन का इलाज करते हैं लेकिन मन के घावों को तो छोड़ ही देते हैं। समय के साथ गहरे होते हुए घाव तन की पीड़ा को और बढ़ा देते हैं। हम अपने भीतर की आवाजों को अनदेखी नहीं कर सकते। हमें अपने भावों को सही दिशा देनी होगी, उन्हें ढंग से पचाने की जरूरत है। हम अपनी समस्याओं को नहीं, अपनी सोच को ठीक कर सकते हैं। इस तरह हमारी समस्याएं भी अपने आप ठीक हो जाएंगी। फिर मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: मैं हर रोज गुनाह करता हूं, तू हर रोज माफ कर देता है। मैं आदत से मजबूर हूं, तू रहमत से मशहूर है।
1: आइए दोस्तों, एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूं। एक पंडित जी खाने पीने के बहुत शौकीन थे और उन्हें पुआ बहुत अच्छा लगता था। एक बार की बात है, पंडित जी को दूसरे गांव में पूजा करने के लिए जाना था, इसलिए उन्होंने अपनी भाषा में पंडिताइन से कहा, हम दूसर गांव जा रहे हैं पूजा करने के लिए, शाम तक लौटबे और कुछ जरूरत पड़तो तो अपने पड़ोसी से मांग लियो। पंडिताइन अपनी भाषा में बोली, तो निश्चिंत रहो पंडित जी, हमें ठीक से रहवे और कुछ और चीज की जरूरत पड़ते तो हम पड़ोसी से मंगवा लेवे। पंडित जी दूसरे गांव चले गए। वहां तो यजमान ने पंडित जी का खूब सत्कार किया, तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाए, जिसमें पंडित जी तो दूध का पुआ बहुत अच्छा लगा। पंडित जी यजमान से विदा लेकर अपने घर को चल पड़े। तभी बहुत तेज बारिश हो गई। यजमान ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आज रात यहीं रुक जाइए। पंडित जी यजमान की बात मानकर रुक गए और एक खटिया पर सोने चले गए। सोते सोते सोचने लगे कि पुए का स्वाद कितना अच्छा था, कल सुबह घर जाएंगे तो पंडिताइन से कहेंगे, हमरा दूध पुआ खाने का बहुत मन हो रहा है, हमरा लिए दूध पुआ बना दो। फिर पंडित जी सोचने लगे कि हमें भूलने की बहुत आदत है, ऐसा करते हैं हम रट लेते हैं, तभी हम घर जाकर पंडिताइन को बनाने के लिए कह पाएंगे। पंडित जी रटते रटते सो गए। सुबह जैसे ही वो घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, वैसे ही वो भूल गए कि उन्हें पंडिताइन को क्या बनाने के लिए कहना था, कौन सा पकवान उन्हें खाने में अच्छा लगा था। पंडित जी रटे हुए शब्द तो भूल चुके थे। इधर पंडिताइन पंडित को देखते ही बहुत ही खुश हुई और अपनी भाषा में बोली, आ गए लो पंडित जी। पंडित जी पंडिताइन की बातों को सुनकर हामी भर के चुप रह गए। फिर पंडिताइन बोली, यजमान के घर की खेलो, यजमान की खिलाल खूं। पंडित जी को तो याद नहीं था हमको बोलना कौन सा शब्द है, वो तो भूल ही गए थे ना। वे पंडिताइन से सिर्फ इतना बोलकर चुप रह गए, हमें ऊ चीज खिला दो, हमारा ऊ चीज बना दो, हमारा ऊ चीज खाने का मन कर रहा है।
2: दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

सदियों पुरानी बात है। चीन के थिंगजा इलाके के एक राजकुमार की सम्राट के रूप में ताजपोशी होनी थी, लेकिन कानून के मुताबिक उसे इसके लिए पहले शादी करनी थी। एक अक्लमंद मंत्री की सलाह पर उसने प्रांत की विवाह योग्य युवतियों को बुलाकर उनमें से सबसे उपयुक्त को चुनने का निर्णय लिया। राजकुमार के महल में एक बूढ़ी महिला वर्षों से नौकरी कर रही थी। उसकी बेटी भी राजकुमार से मनी मन बड़ा प्रेम करती थी। घर पहुंचकर जब नौकरानी ने राजकुमार की योजना का समाचार बताया तो वो ये जानकर चौंक गई कि उसकी बेटी भी कन्या चयन प्रतियोगिता में शामिल होने का इरादा रखती थी। उसने बेटी से कहा, मेरी बच्ची, दरबार में सब सुंदर और धनाढ्य परिवार की बेटियां होंगी, तुम वहां क्या करने जा रही हो, तुमको तकलीफ होगी। बेटी ने मां को जवाब दिया, मां, मुझे पता है कि मुझको कभी भी चुना नहीं जाएगा, पर मुझे राजकुमार के करीब रहने के लिए कुछ और पल मिल जाएंगे ना, मैं बस इसी में खुश हूं। रात में जब बूढ़ी नौकरानी की बेटी महल पहुंची तो वहां रेशमी कपड़ों और गहनों में सजी धजी तमाम युवतियां इकट्ठी थीं। दरबारियों से घिरे हुए राजकुमार ने घोषणा की कि मैं आप में से प्रत्येक को एक बीज दूंगा, जो युवती 6 महीने में मेरे लिए सबसे सुंदर फूल लाएगी वही चीन की भावी महारानी होगी। उस लड़की ने भी अपना बीज लिया और घर चली आई। उसने बीज को एक फूलदान में लगाया। वो बागवानी ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन बड़े धैर्य और कोमलता से उसने फूलदान की मिट्टी की देखभाल की। उसने सोचा कि अगर फूलों की सुंदरता उसके प्यार जितनी गहरी होती है तो उसे परिणाम के बारे में चिंता करने की भला क्या जरूरत है। मगर कुछ नहीं हुआ। उस युवती ने कई मालियों से सलाह ली, लेकिन सारे के सारे प्रयास बेकार हो गए। 6 महीने हो गए, गुलदान में कुछ भी नहीं निकला। ये जानते हुए कि उसके पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, उस युवती ने यह सोचकर महल जाने का फैसला किया कि प्रेमी के दीदार का ही एक मौका ले लूं। महल पहुंचकर उसने देखा सबके हाथों में गुलदान में एक से बढ़कर एक फूल थे। आखिरकार वो पल आया जब राजकुमार ने सभी फूलों को देखा और आखिरकार नौकरानी की बेटी की ओर इशारा करते हुए उसे अपनी पत्नी बनाने का ऐलान कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने शिकायतें की कि जो एक लड़की इस परीक्षा में नाकाम रही आपने उसे ही चुन लिया। तब राजकुमार ने बहुत शांति से जवाब दिया, आप सभी में से एकमात्र यही है जिसने उस फूल को विकसित किया, जिसने उसे महारानी बनने के लिए योग्य बनाया। यह है ईमानदारी का फूल, क्योंकि आपको बांटे गए सारे बीज बांझ थे। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

एक बार कुछ जिज्ञासुओं ने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया कि मनुष्य डेवलपमेंट क्यों चाहता है, विकास क्यों चाहता है, उसे पाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। दरअसल विकास यानी कि डेवलपमेंट नेचर यानी कि प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, होके रहेगा आप करें या ना करें। सृष्टि में सब कुछ गतिमान है, चलता ही रहता है। मनुष्य सृष्टि का ही एक अंग है और विकास करना, आगे बढ़ना उसका मौलिक लक्षण है। मनुष्य को यह पता है कि जब तक वो परिश्रम नहीं करेगा विकास पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकता। विकास का पथ चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक, इसके पीछे का उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन में सुख भोग की चाहत ही होती है। क्योंकि मनुष्य की सोच बहुत बड़ी है, इसलिए सिर्फ वो अपने लिए सुख समेटना उसका मौलिक गुण धर्म नहीं होता। उस सामाजिक जीवन को भी वो सुख पहुंचाना चाहता है जिसे वो भोग रहा है। विवेकशील प्राणी होने के कारण वो अच्छे बुरे के बारे में सही निर्णय ले सकता है। जब वो सही निर्णय लेने लगता है तब आध्यात्मिक महत्व को भी समझने लगता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लेने के लिए उसे सुबह शाम साधना करनी पड़ती है। इसी साधना की बदौलत मनुष्यों में व्यक्तिगत मानसिक विकास और विश्व बंधुत्व की भावना कायम होगी। यहां एक और बात बहुत जरूरी है दोस्तों, आध्यात्मिकता के साथ मनुष्य को भौतिक और मानसिक जगत से भी संतुलन बनाकर रखना होगा। मनुष्य में वृहत्व को पाने की आकांक्षा है, इसे बड़ा देखने की इच्छा भी कह सकते हैं, इसे बड़ा बनने की इच्छा भी कह सकते हैं। अगर उसमें यह आकांक्षा न होती तो ब्रह्म समुद्र में रहकर भी वो पर ब्रह्म को पहचानने का प्रयास न करता और हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाता। विराट को पाने का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि एक कार का मालिक 5 कारों का मालिक बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, मगर माने या ना माने सीमित संपत्ति को सभी मनुष्यों को संयुक्त संपत्ति के रूप में ग्रहण करना होगा। सीमित वस्तुओं की प्राप्ति के पीछे दौड़ दौड़ कर धक्के खा खा कर मनुष्य ने एक दिन ये सच तो खोज ही निकाला था कि सच में उसका मन ऐसा कुछ पाना चाहता है जो जीवन भर के लिए बस मिल जाए। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: सन 1884 की बात है। कलकत्ता में उन दिनों चैतन्य लीला नाटक की धूम मची हुई थी। बड़ी संख्या में लोग वो नाटक देखने जा रहे थे और उसकी काफी प्रशंसा भी कर रहे थे। कुछ भक्तजन स्वामी रामकृष्ण परमहंस को महान भक्त चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित इस नाटक को दिखाने के लिए नाट्य गृह में ले गए। विनोदिनी दासी नामक नगर वधु ने चैतन्य लीला में सजीव अभिनय किया। स्वामी रामकृष्ण उसके अभक्तिपूर्ण अभिनय को देखकर अभिभूत हो उठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। नाटक की समाप्ति के बाद जब विनोदिनी ने दर्शक दीर्घा में स्वामी रामकृष्ण को बैठे देखा तो वो भागी भागी उनके पास पहुंची और उन्हें प्रणाम करके गदगद हो गई। स्वामी जी ने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी तुम्हारा अभिनय बहुत प्रभावी है, जीवन उसी के अनुरूप ढालो तो कल्याण हो जाएगा। विनोदिनी दासी एक महान सिद्ध संत के आशीर्वाद स्पर्श से सुदबुद खो बैठी। उसका जीवन बदल गया। जीवन पर्यंत वो भक्ति और साधना में लगी रही।
1: दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।
2: हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर कोई खतरा ना आए, बल्कि उनका सामना करने की हिम्मत हमारे अंदर आए।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वही जिंदगी को जीने के तीन नियम। नियम नंबर एक, हर बड़ी चीज किसी न किसी विचार और सपने से शुरू होती है, जिसे हम फिर धीरे धीरे आकार देने लगते हैं। ये बात जीवन में अपने गोल को जानने और पहचानने का ये तरीका भी है। अब आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये भाषण देंगे कि हवाओं में महल ना बनाया करो, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अब किसी समझदार व्यक्ति ने कहा, किसी को यह कहने की इजाजत बिल्कुल ना दें कि दिन में सपने देखना समय की बर्बादी है। ये वो लोग हैं जिनका अपना कोई सपना नहीं होता। नियम नंबर दो, खुशियों का पीछा करने की दौड़ में हम उन बातों की अनदेखी कर देते हैं जो दरअसल खुशी देने वाली होती हैं। सोचिए ना, खुशियों के लिए बहुत कोशिश करनी नहीं पड़ती। थोड़ा सा धैर्य रखिए और काम करते रहिए, खुशी खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। समझदार व्यक्ति बोले, खुशी एक तितली की तरह होती है जिनका हम पीछा करते हैं, वो हमें उतना ही दौड़ाती रहती है। ध्यान दें, लेकिन जब आपका ध्यान कहीं और हो जाता है तो खुद कंधे पर आकर बैठ जाती है। नियम नंबर तीन, प्रेम और डर दुनिया के सबसे मजबूत भाव हैं। प्यार हमें इस दुनिया में लाता है और उसी के भरोसे हम जीवन यात्रा चलाते रहते हैं। जहां प्यार है वहां खुशी होगी, आशाएं होंगी, माफी होगी। प्यार हमारी गलत सोच को भी दूर कर देता है। प्यार में डर के लिए जगह नहीं होती। प्यार भरोसा देता है जो हमें बेहतर बनाता है। समझदार व्यक्ति कहते हैं, जब जिंदगी का मकसद प्यार हो तब हर शक, दुख और डर बेकार हो जाते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा। आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो, बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। गर्मी जो सिर्फ मौसम नहीं, एक पूरी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई कहानी में। आज की इस कहानी में हम सिर्फ गर्मी की बात नहीं करेंगे, आज के एपिसोड में हम उन छोटी छोटी खुशियों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ इंडियन समर ही दे सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, दोपहर के 2 बजे हैं, सड़क ऑलमोस्ट खाली, धूप इतनी तेज कि लगता है हवा भी गर्म हो गई है, और इस गर्मी के बीच अचानक एक आवाज, टन टन टन। कुल्फी वाले की घंटी समर का एक एंथम होता है, बस ये आवाज ही होती है जो बचपन में दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं। जैसे ही घंटी बजती है, घर के अंदर से रॉकेट स्पीड से बच्चे बाहर निकलते हैं। माँ, कुल्फी चाहिए, कुल्फी वाला आ गया, और मम्मी अपनी इटर्नल डायलॉग के साथ रेडी। रोज रोज नहीं मिलती कुल्फी, और हम, पर मम्मी आज स्पेशल है, कल से नहीं मांगूंगी पक्का, और ये डायलॉग हम रोज बोलते हैं। फिर बार्गेनिंग शुरू होती है, एक ही ले लो भैया, छोटी वाली देना, और फाइनली हाथ में एक ठंडी जमी हुई कुल्फी, उसका पहला बाइट और वो इंस्टेंट ठंडक दिल के भी नीचे उतरती है। लगता है जैसे पूरी गर्मी उसी कुल्फी में डिसॉल्व हो गई हो। सच बताओ, आप कौन सी कैटेगरी के थे, ऑरेंज वाली स्टिक आइसक्रीम, मलाई कुल्फी, या वो रॉकेट वाली जो गिरते गिरते बचती थी? समर का सुपरस्टार। अब बात करते हैं किंग ऑफ फ्रूट्स, आम की। गर्मी का मतलब ही होता था घर में आम की पेटी आना, और मम्मी का स्ट्रिक्ट रूल, गेस्ट के लिए हैं। पर हम ऑलरेडी 2 आम वॉशरूम में छुपके खा चुके थे, और वो आम का रस स्टील के बड़े भगोने में पूरी फैमिली के साथ, कोई रोटी के साथ खा रहा है, कोई पूरी के साथ खा रहा है, और कोई डायरेक्ट सिप्स ले रहा है, और लास्ट में हाथ पे चिपका रस और उसे चुप चुप के लिक करना। उफ, क्या दिन थे। और जब हीट लेवल्स एक्सट्रीम हो जाते थे, तब एंट्री होती थी आम पन्ना की, कच्चे आम का आम पन्ना, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, एक सिप लो तो लगता है पूरी बॉडी रिबूट हो गई हो। मम्मी प्राउडली बोलती, ये हीट स्ट्रोक से बचाता है, और हम, ये तो लाइफ स्ट्रोक से बचाता है मम्मी। कूलर वर्सेस गर्मी की अल्टीमेट बैटल। पहले एसी नहीं था घर में, पर कूलर, कूलर हीरो था। कूलर के सामने बैठ जाओ और लगता था नेचर ने पर्सनली हवा भेजी है, और उसकी आवाज, कूलर के फैन में मुंह डाल के खड़े होना और अपनी ही आवाज को घर से सुनना, याद आया? वो बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा बजता है कानों में, जो बिना प्लेलिस्ट के चल रहा होता है पूरे समर्स में। और जब पानी खत्म हो जाता है तो सडनली हवा का तंदूर मोड ऑन, फिर घर में एक ही आवाज, पानी डालो कूलर में, लाइट चली गई। और समर का सबसे आइकॉनिक ट्विस्ट,
बिजली का जाना, फैन बंद, कूलर बंद, सब बंद। और मम्मी का सोल्यूशन, हाथ से पंखा चलाओ। और हम, ये कौन सा जिम है भाई? टेरेस वाली चांदनी रात। और फिर रात को टेरेस पे सोने के प्लान्स, छत पे बिस्तर, ऊपर तारों भरा आसमान, एक सफेद चादर और दूर कहीं से रेडियो की आवाज, हल्की हल्की ठंडी हवा। और मम्मी, मम्मी कहती, मच्छर का कॉइल जला दो। हम स्टार्स काउंट करते रहते थे, कॉन्स्टिलेशंस बनाते रहते थे, और कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता। कभी बीच रात उठ के आसमान देखना, ऐसा लगता था मानो दुनिया रुक सी गई। कहाँ गए वो दिन, दिल सच में ढूंढता है फुर्सत की वो रात दिन। अब आते हैं गोले वाले के कलर थेरेपी पे। जी हाँ, गोले वाले भैया, बर्फ का गोला, ऊपर से कलरफुल सिरप्स। और वो पूछता, कौन सा फ्लेवर दीदी? हम झट से बोलते, भैया फुल मिक्स बना दो या फिर काला खट्टा। रिजल्ट होता एक रेनबो गोला, और टंग भी उसके साथ साथ रेनबो हो जाती। समर का एक फनी ट्रूथ होता है दोस्तों, गर्मी में तीन चीजें पक्की होती हैं, आइसक्रीम का गिरना, बिजली जाना और मम्मी का गुस्सा। और जब कोई गेस्ट आ जाता था तो मम्मी की पहली लाइन, आम उन्हें दो। और हम अंदर से कुड़कुड़ाते रहते थे, दोस्तों गर्मी सिर्फ टेम्परेचर नहीं होती, एक इमोशन होती है। वो कुल्फी की घंटी, वो आम की मिठास, वो कूलर की ठंडी हवा, वो टेरेस की रात, सब कुछ सिंपल था पर दिल को इतना खुश कर देता था जैसे चांद छू लिया हो। आज की गर्मी वर्सेस कल की गर्मी, आज एसी ऑन है, फूड डिलीवरी है, पर वो टन टन की एक्साइटमेंट, वो बिना वजह वाली हंसी शायद थोड़ी कम हो गई है। तो इस समय थोड़ा स्लो हो जाएं, थोड़ा फील करें, एक कुल्फी जरूर खाएं, आम का रस हाथ से खाएं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फोन साइलेंट पे हो या ना हो, दिमाग कभी कभी ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाता है। कोई कुछ बोल रहा होता है और अंदर से आवाज आती है, प्रोसेसिंग।

नव ग्रहों की एक सभा 2.0, जब ग्रहों ने इंसानों की कंप्लेंट मीटिंग बुलाई। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक कॉस्मिक ड्रामा है जहां 9 ग्रह मिलके इंसानों की आदतें डिस्कस कर रहे हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, सोचिए अंधेरा नहीं, रोशनी भी नहीं, एक अजीब सा शिमरिंग स्पेस जहां हवा नहीं पर एनर्जीज चल रही हैं। यही है नवग्रहों की सभा। आज वहां इमरजेंसी मीटिंग है और एजेंडा। अर्थ के लोग हमें हर चीज के लिए ब्लेम क्यों करते हैं? एंट्री नंबर 1, सूर्यदेव, सीईओ ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे पहले इन्हीं की एंट्री होती है, हमारे प्यारे सूर्यदेव की। ब्राइट एंट्री, इतनी ब्राइटनेस कि बाकी सबको सनग्लासेस चाहिए। मीटिंग टाइम पे स्टार्ट होगी, सब अंडर ब्रेथ, सर थोड़ा डिम मोड पे आ जाओ ना, बट सूर्यदेव तो सूर्यदेव हैं। एंट्री नंबर 2, चंद्रदेव, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम। चंद्रदेव आते हैं सॉफ्ट से ग्लो के साथ, क्या हुआ, सब ठीक है ना? सूर्यदेव कहते हैं ये थेरेपी सेशन नहीं है चंद्र। एंट्री नंबर 3, मंगलदेव, एंग्री यंग ग्रह, हमारे सिपाही। मंगलदेव की एंट्री आती है और फुल एनर्जी मोड ऑन हो जाता है। किसने कंप्लेन किया बताओ, बताओ किसने कंप्लेन किया? बुधदेव कहते हैं बीच में, भाई पहले सुन तो ले। एंट्री नंबर 4 इन्हीं की है, हमारे बुधदेव यानी मर्क्यूरी, डेटा एनालिस्ट ऑफ द कॉस्मोस। बुधदेव टैबलेट लेकर आते हैं और कहते हैं स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग और बाकी सब इंग्लिश बंद करो बुधदेव, ये हिंदी कॉन्फ्रेंस है। एंट्री नंबर 5, सबके फेवरेट, सबसे प्यारे, सबसे बड़े गुरुजी, गुरुदेव मोड ऑन। बृहस्पति, बृहस्पति देव कामली आते हैं और कहते हैं हर प्रॉब्लम की एक सीख होती है। मंगलदेव इंटरप्ट करते हैं, आप हर जगह ज्ञान क्यों देते हो? एंट्री नंबर 6, शुक्र, स्टाइल और रोमांस की किंग। शुक्रदेव की एंट्री परफ्यूम की खुशबू के साथ, लाइफ में थोड़ा ग्लैमर भी जरूरी है, शनि साइड आई देता है। एंट्री नंबर 7, शनि देव, न्याय के देवता। सडनली पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, शनि देव आते हैं स्लो और इंटेंस, सब सीधा होके बैठ जाते हैं। कौन ब्लेम कर रहा था मुझे जरा बताना, बाकी सब हम नहीं, हमने तो बिल्कुल नहीं। एंट्री नंबर 8, राहु, मास्टर ऑफ इल्यूजन। राहु की एंट्री थोड़ी मिस्टीरियस म्यूजिक के साथ होती है, मैं तो बस इल्यूजन्स क्रिएट करता हूं। इस पे बुधदेव कहते हैं एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। एंट्री नंबर 9, केतु, डिटैच्ड बाबा। केतु देव आते हैं थोड़ी से लॉस्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, और बाकी सब फिर आए क्यों भाई। सीन नंबर 2, अर्थ की कंप्लेंट्स की एक प्रेजेंटेशन शुरू होती है। बुध स्क्रीन ऑन करता है और स्लाइड नंबर 1, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, फोन टूट गया, बाकी सब व्हाट। स्लाइड नंबर 2, शनि इक्वल्स टू जॉब नहीं मिली। शनि बोलते हैं रेज्यूम देखा है अपना। स्लाइड नंबर 3, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स इक्वल्स टू राहु। राहु कहते हैं रेड फ्लैग, इग्नोर किसने नहीं किया। सीन नंबर 3, सारा क्योस शुरू हो जाता है। मंगल कहते हैं मैं तो सिर्फ एनर्जी देता हूँ, चंद्र कहते हैं मैं सिर्फ इमोशंस बढ़ाता हूँ, और शुक्र कहते हैं मैं तो प्यार ही प्यार देता हूँ। शनि फिर कहते हैं मैं सिर्फ टेस्ट लेता हूँ, और सब एक साथ
गलती हमारी कहाँ है? सीन नंबर 4, ट्रूथ बाहर आता है। तब बृहस्पति कामली बोलते हैं, हम रास्ता दिखाते हैं पर चलना इंसान को होता है। चंद्र कहते हैं, मैं मूड बनाता हूँ, डिसीजंस उनके होते हैं। और बुध कहते हैं, मैं कम्युनिकेशन देता हूँ, बोल क्या रहे हैं वो तो उनकी चॉइसेस हैं। अब होता है एक लाइव डेमो। सूर्य बोलते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक इंसान रात को 3 बजे तक फोन यूज करता है, सुबह लेट उठता है, ऑफिस लेट पहुंचता है, बॉस से डांट खाता है और फिर बोलता है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। तब ग्रह एक दूसरे को देखते हैं और मंगल बोल पड़ता है, फोन किसने यूज किया था? चंद्र कहता है, लेट कौन सोया था? शनि कहते हैं, लेट कौन पहुंचा था? और सब एक साथ कहते हैं, इंसान। अब बारी है फाइनल वर्डिक्ट की, और इसमें शनिदेव कैसे पीछे रह जाएं? वो एकदम से खड़े होते हैं और बोलते हैं, डिसीजन सुनाया जाता है, हम इन्फ्लुएंस करते हैं, कंट्रोल नहीं। ब्लेम बंद करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सूर्यदेव बोलते हैं, हम आसमान में हैं पर जिंदगी उन्हीं के हाथ में है। सब ग्रह धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगते हैं और एक आवाज गूंजती है, अपनी कहानी खुद लिखो। दोस्तों, प्लैनेट्स आपको सिर्फ गाइड करते हैं पर आपको डिफाइन नहीं करते। आपकी मेहनत, आपकी चॉइसेस, आपका एटीट्यूड, वही आपकी डेस्टिनी बनाता है। सच सच बताओ, आपने लास्ट बार कब किसी ग्रह को ब्लेम किया था? मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे एक प्यारी ग्रहों की कहानी। स्टार्स को देखिए, इंस्पिरेशन लीजिए, पर स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: चार्जिंग पे जिंदगी। फोन चार्ज पे लगाओ तो लगता है कंट्रोल में हो। खुद की लाइफ चार्ज पे लगाने का ऑप्शन होता तो सब लाइन में खड़े होते।

स्नैक्सीडेंट एपिसोड, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें इंश्योरेंस भी काम नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, आज का वर्ड ऑफ द डे है स्नैक्सीडेंट। नाम सुनते ही लगता है ना ये कोई नया क्राइम है या कोई फूड स्कैंडल, पर नहीं, स्नैक्सीडेंट एक ऐसी लाइफ सिचुएशन है जिसमें आप बिल्कुल इनोसेंट होते हो, ट्रस्ट मी। पर एविडेंस सब आपके खिलाफ होता है। डेफिनेशन थोड़ी फिल्मी है। स्नैक्सीडेंट का मतलब होता है जब आप कहते हो बस थोड़ा सा खाऊंगा और 10 मिनट बाद पैकेट खुद आपको देख के कहता है भाई मैं तो खत्म हो गया, और आप शॉक में चले जाते हो, ये किसने किया, कैसे हुआ, कब हुआ, और घर में सिर्फ आप होते हो। बस एक बाइट से शुरू होती है ये स्नैक्सीडेंट की कहानी। हर स्नैक्सीडेंट एक इनोसेंट शुरुआत होता है। शाम का टाइम, आप थोड़े से बोर्ड, टीवी या फोन चल रहा है और आपका दिमाग बोलता है थोड़ा स्नैक हो जाए। आप फ्रिज खोलते हो, स्नैक निकालते हो और खुद से प्रॉमिस करते हो सिर्फ 2 बाइट्स। ये वही प्रॉमिस है जो कभी पूरा नहीं होता। फ्रेंड्स, स्नैक की कैरेक्टर एंट्री अब जरा इमेजिन करो। स्नैक्स भी अगर इंसान होते, चिप्स का पैकेट बोलता आओ आओ मैं क्रंची हूं, चॉकलेट बोलती मैं तो मेल्ट हो जाऊंगी जल्दी खा लो, और बिस्किट्स बोलते हम तो चाय के बिना इनकम्प्लीट है, और आप इमोशनली मैनिपुलेटेड हो जाते। द ब्लैक होल इफेक्ट। स्नैक्सीडेंट एक ब्लैक होल जैसा होता है, जो भी अंदर जाता है वापस नहीं आता। चिप्स, पॉपकॉर्न, नमकीन सब गायब, और आप सोच रहे होते हो मैं तो बस थोड़ा सा खा के रहने वाला था। चॉकलेट वाली ट्रेजेडी। चॉकलेट के साथ स्नैक्सीडेंट अलग ही लेवल का होता है दोस्तों। आप एक पीस तोड़ते हो, फिर सोचते हो ये तो अनइवन हो गया, थोड़ी सी और खा लेता हूं। फिर आप बैलेंस करते हो और बैलेंस करने के लिए एक और पीस, और फिर एक और, और फिर एक और, और एंड में पूरी चॉकलेट गायब, सिर्फ रैपर हाथ में। और आपका लॉजिक ये रहता है शायद सिमेट्री के लिए जरूरी था ना। मिडनाइट स्नैक्सीडेंट हॉरर स्टोरी, इससे ज्यादा डरावनी कोई स्टोरी नहीं है, ट्रस्ट मी। रात के 1 बजे सब सो रहे हैं और आपको आवाज आती है किचन से। आप जाते हो, लाइट्स ऑन करते हो और फ्रिज के अंदर स्नैक्स आपको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। आप बोलते हो बस पानी पीने के लिए आया हूं, और 15 मिनट बाद सारी प्लेट साफ। डाइट प्लान का मर्डर, ब्रूटल मर्डर। सुबह उठते हो, मिरर के सामने खड़े होते हो, बस अब डाइट स्टार्ट ही करने वाला हूँ, हेल्दी ब्रेकफास्ट, सैलेड, डिटॉक्स वाटर, और रात को स्नैक्सीडेंट का फिर से अटैक होता है। डाइट प्लान का RIP, प्रॉपर रेस्ट इन पीस। एक इल्यूजन है दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ स्नैक करना एक मिथ है, सब थोड़ा थोड़ा खाएंगे, और रियलिटी एक बंदा सब खा जाता है और बाकी लोग हम तो सिर्फ देखते ही रह गए। पिज्जा स्नैक्सीडेंट, डेंजरस लेवल है ये। पिज्जा ऑर्डर करो, प्लान करते हैं 2 स्लाइसेस ही खाएंगे, और फिर ये लास्ट स्लाइस ही तो है, और फिर अब एक ही तो बचा है, वेस्ट नहीं कर सकते, आखिर हम इंडिया में रहते हैं, और एंड में पूरा पिज्जा फिनिश। पैकेट का बिगेस्ट स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम क्या है जानते हैं? फैमिली पैक। ये फैमिली के लिए नहीं होता, एक इंसान के लिए चैलेंज पैक होता है, और जब खत्म होता है आप कहते हो ये इतना छोटा कब हो गया। स्नैक्सीडेंट का डीप मीनिंग दोस्तों, स्नैक्सीडेंट सिर्फ फूड नहीं है,
ये लाइफ का एक पैटर्न है। हम कहते हैं बस 5 मिनट स्क्रॉल और 2 घंटे निकल जाते हैं इंस्टाग्राम पे, पता भी नहीं पड़ता। बस एक एपिसोड और रातों रात पूरी सीरीज खत्म। बस थोड़ा सा और कंट्रोल चला जाता है सिस्टम के हाथ में। जिंदगी भी थोड़ी सी स्नैक्सीडेंट जैसी है दोस्तों। अगर कंट्रोल ना रखो तो छोटी चीजें भी ओवर हो जाती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्नैक्स छोड़ दो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही। बस एंजॉय करो पर कॉन्शियस होके। सच बताओ, आपने अपना लास्ट एक्सीडेंट कब किया था और किसके साथ किया था? चिप्स के साथ, आइसक्रीम के साथ या फ्रिज का फुल ऑन रेड? दोस्तों आज का वर्ड याद रखिएगा, खैर याद तो रहेगा, रोज होता जो है। स्नैक्सीडेंट जब स्नैक खुद नहीं खाता आपसे खुलवा लेता है, और अगली बार जब आप बोलो बस एक बाइट तो याद रखना ये कहानी पहले भी शुरू हो चुकी है। मैं हूँ आपकी दोस्त, खुश रहिए, हंसते रहिए और स्नैक्स एंजॉय करते रहिए, पर थोड़ा कंट्रोल और कॉन्शियसनेस के साथ, वरना स्नैक्सीडेंट FIR लिखवा देगा। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: मीटिंग में सिर्फ हाँ बोलने वाला। मीटिंग में एक बंदा होता है जो सिर्फ सर हिलाता है, हाँ हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, और बाद में पूछता है, मीटिंग किस बारे में थी?

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था, जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन है। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें, बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बालाश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील हैं। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं,
बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा। अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है, आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है, ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे, हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थीं, अभी नहीं है। ऐसा खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कहीं नहीं है। कंक्यार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी उसकी बूंदों को ढूंढूं? सूर्य एक सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है। क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं? सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: हमारे देश में भयंकर वाली टेक्नोलॉजीज चलती हैं। अमेरिका के दो साइंटिस्ट एक बात सुनकर हमारे देश की बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि घर में अगर चप्पल उल्टी रखती जाए तो लड़ाई हो जाती है।
0: दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

मदर टेरेसा की वो सात बातें जो हर पीआर प्रैक्टिशनर्स के लिए मददगार साबित होती हैं। मदर टेरेसा एक ऐसी महिला हैं जिन्हें दुनिया भर में उनकी करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थता के लिए जाना जाता है। उनके मृत्युपरांत आज भी लोगों और समाज के प्रति समर्पण के लिए

उन्हें दिल की गहराइयों से याद किया जाता है। आज के ब्रांड्स ऑडियंस के बीच एक लंबे समय तक चलने वाली छवि बनाने का लक्ष्य रखते हैं। मदर टेरेसा के निम्नलिखित उदाहरणों से पीआर प्रैक्टिशनर्स कई सीख ले सकते हैं जो उन्हें अपने क्लाइंट्स के लिए एक लंबे समय तक चलने वाली छवि बनाने में मदद करेंगे। यहां 7 बातें बताई गई हैं जिनका प्रत्येक पीआर प्रैक्टिशनर को पालन करना चाहिए। 1, ऑडियंस को अपनी प्राथमिकता बनाएं। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, आपके पास आने वाला हर व्यक्ति मुस्कुराकर ही वापस जाना चाहिए। ब्रांड्स का वजूद अपने कस्टमर्स की वजह से होता है। आखिरकार पब्लिक ही है जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदती है। अपने संपूर्ण जीवन के दौरान मदर टेरेसा अनेक लोगों की भलाई के लिए काम करती रहीं और खुद को दान, गरीबी और सादगी के साथ जीने के लिए समर्पित कर दिया। इसी तरह ब्रांड्स को भी जनता के प्रति केंद्रित होना चाहिए और उनके हित में मानवता का आदान प्रदान होना चाहिए। मदर टेरेसा की अपने से पहले अन्य लोगों के हित में सोचने की उदारता को हर एक ब्रांड को भी निश्चित तौर पर अपनाना चाहिए। 2, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जैसा कहा वैसा करना। ब्रांड्स की अपनी एक पहचान होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति उन पर भरोसा कर सके। उस ब्रांड से बदतर कुछ भी नहीं है जो कहता कुछ है और करता कुछ है। मदर टेरेसा ने अपने पूरे जीवन में एक ही बात सिखाई कि हमें अपना जीवन दूसरों की भलाई करने में ही व्यतीत करना चाहिए। वह स्वयं गरीबी में रहती थीं, लेकिन फिर भी दूसरों की सहायता करने के लिए भोजन और आपूर्ति की व्यवस्था करती ही रहती थीं। पीआर प्रैक्टिशनर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जैसा कहें वैसा करें। 3, कड़ी मेहनत करें भले ही कोई नहीं देख रहा हो। मदर टेरेसा को गति प्राप्त करने में बहुत समय लगा। डिजिटल युग के विकास के साथ सफलता की धारणा बदल जाती है। आजकल ऐसा माना जाता है कि सफलता रातों रात प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ये पूर्णतः गलत धारणा है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। कई बार आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है या आप हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका ध्यान अपने लक्ष्यों से हटना नहीं चाहिए। कई बार हमें कड़ी मेहनत का फल उतना अच्छा नहीं मिलता जितनी हमने मेहनत की थी, लेकिन इसके प्रति अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखें, क्योंकि देर से ही सही फल अवश्य मिलेगा। 4, दूसरों के नक्शे कदम पर चलने के बजाय अपना रुझान बनाएं। दुनिया भर में पहचान हासिल करने के बाद भी मदर टेरेसा ने इसकी चिंता किए बिना कि लोग क्या सोचते हैं, हमेशा ही एक साधारण जीवन जीना जारी रखा। उन्होंने खुली बाहों से लोगों को स्वीकार किया, उन्हें आजीवन प्यार किया और उनकी देखभाल की। प्रति सांस्कृतिक होने की क्षमता रखने वाले ब्रांड्स भी अपनी ऑडियंस के जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। ये एक जोखिम है, लेकिन साथ ही साथ प्रभावी भी है। अपने कस्टमर्स को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न रुझान अपनाएं। ये आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएंगे और आपको भीड़ से बिल्कुल अलग पहचान दिलाएंगे। 5, अपने आप पर विश्वास करें। मदर टेरेसा ने गरीबों की मदद करने और उन्हें ईश्वर के करीब लाने के लिए आजीवन बखूबी कार्य किए। संपूर्ण जीवन काल के दौरान उनका आत्म बलिदान उन्हें अन्य सभी लोगों से अलग स्थान देता है। इसी तरह पीआर प्रैक्टिशनर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जीवंत रखने की आवश्यकता है जो वो समाज को दे रहे हैं। उन्हें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। ये न केवल उन्हें काम में उद्देश्य स्थापित करने की भावना देगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगा कि प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना वास्तविक है।
ब्रांड्स अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं यदि उन्हें अपने लक्ष्यों पर पूरा भरोसा है और वो इन लक्ष्यों के लिए कार्य करने को तैयार हैं। 6. आप जैसे हैं वैसे ही रहें। एक बात जो मदर टेरेसा को उल्लेखनीय व्यक्ति बनाती है वो ये है कि वे कभी भी अपने काम से नहीं भटकी। प्रसिद्ध होने के बाद उन्हें एक आरामदायक जीवन जीने का अवसर मिला, लेकिन वे कभी भी अपनी राह से नहीं भटकी। गरीबों और लाचारों की जीवन को बेहतर बनाने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए वो हमेशा तत्पर रही। ब्रांड्स को भी अपनी डिमांड्स और पॉपुलैरिटी को देखते हुए भटक नहीं जाना चाहिए। उन्हें अपनी प्रसिद्धि का आदि नहीं होना चाहिए और अपने वजूद को कभी नहीं भूलना चाहिए। राह में कई ध्यान भटकाने वाले कारणों से अलग, ब्रांड्स को अपनी लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सटीक विकल्प बनाना चाहिए। 7. साधन संपन्न बने। इस विषय को लेकर मदर टेरेसा का मार्ग प्रशस्त था कि उनके पास जो कुछ भी है उसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए किस तरह किया जाए। स्ट्रेटजीज बनाने से पहले पीआर प्रैक्टिशनर्स की अंतर्दृष्टि भी स्पष्ट होनी चाहिए और उन्हें इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि समाज में उनके ब्रांड का क्या प्रभाव है। मदर टेरेसा ने हमें सिखाया कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। समाज को वापस देने के लिए विभिन्न परोपकारी कारणों के रूप में हर ब्रांड को इसे स्वीकार करना चाहिए। अपने सभी संसाधनों के उपयोग के साथ उन लोगों की मदद करने और समर्थन करने के विभिन्न तरीके खोजें जो इस दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाने की वजह बने। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? दोस्तों, हम जिंदगी में चलते चलाते सभी के बारे में राय बनाते रहते हैं। कभी कभी ये राय बड़ी खोखली भी हो सकती है। हम गलत सोच सकते हैं किसी के बारे में। आइए, इसी से संबंधित आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, आपके बात समझ में आ जाएगी। चलिए, मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे थे, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए बस यूं ही खड़े हो जाते हैं। पसीना पहुंचते हैं, रुमाल निकालते हैं, रुमाल से अपने को हवा करने की कोशिश करते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक आदमी से आंखें मिलती हैं। आपकी ऐसी स्थिति देखकर वो आदमी हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। अब आपने फौरन उस आदमी के लिए एक राय बनाई। बड़ा ही सहृदय व्यक्ति है, न जान न पहचान, फिर भी पानी के लिए पूछ रहा है। अब उस व्यक्ति के लिए आपकी ये पहली राय है, क्यों? अब वो आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर लेता है। आप पानी लेने तेज कदमों से उसके दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस आदमी के बारे में आपकी क्या राय है भाई? आप उसे गालियां देने लग जाते हो, क्यों? बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है, ढीला है, आलसी है, पता नहीं क्या क्या बोल डालते हो उसको आप। अब ये आपकी दूसरी राय है, देखिए। लेकिन थोड़ी सी देर बाद दरवाजा खुलता है और वो आदमी बाहर आता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी, उसे थोड़ी देर हो गई, उसके लिए बहुत बहुत खेद है, लेकिन आपकी हालात देखकर उसने आपको पानी के बजाय नींबू पानी देना जरा ज्यादा अच्छा समझा, इसलिए थोड़ा सा लंबा वक्त लग गया। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब आपकी क्या राय है? कितना अच्छा आदमी है ये, कितना सोचा उसने मेरे बारे में। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि शरबत में चीनी तो है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय बनाना चाहते हैं आप? अरे यार, बड़ा बेवकूफ आदमी है, नालायक है, बेहद कंजूस भी है। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उस समय उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी ले आया, जिससे आप जितनी चाहें उतनी डाल लें। अब उस व्यक्ति के बारे में क्या विचार है आपका? है ना मजेदार? अब आप मनन कीजिए, एक सामान्य स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली हो जाती है और लगातार बदलती जा रही है, तो क्या हम किसी के बारे में भी राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से राय ना बनाएं। पता नहीं कौन किस परिस्थिति या स्थिति में ऐसा काम कर रहा है, अब ये तो वही बेहतर जानता होगा ना। हो सकता है अपनी अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और दूसरा भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को बस इतना सा समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। क्यों दोस्तों?

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: पंडित जी ने कुंडली मिलाई, 36 के 36 गुण मिल गए। लड़के वालों ने फिर भी मना कर दिया शादी से। लड़की वालों ने पूछा, भला ये क्या बात हुई, 36 के 36 गुण मिल गए हैं, फिर क्या परेशानी है? लड़के वालों ने कहा, हमारा लड़का बिल्कुल एक नंबर का निकम्मा है। अब आप चाहते हो बहू भी वैसे ही ले आए?

सीख तो हम कहीं से भी सकते हैं। कहते हैं कि जिंदगी से बड़ी पाठशाला और समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं, लेकिन अगर हम अपनी कल्पनाओं को और विस्तार दें तो पाएंगे कि प्रकृति ने हमारे लिए इतने सारे शिक्षक उपलब्ध कराए हैं कि हम सारी जिंदगी सभी से कुछ ना कुछ सीखते रह सकते हैं, बशर्ते कि हम में ज्ञान की प्यास हो और हमारी चेतनाएं जागरूक हों, जो हमें सुनने, देखने, स्पर्श करने, महसूस करने और सोचने में मदद करती हैं। अगर हम सब चीजों को नए नजरिए से देखना शुरू करें तो पाएंगे कि हर रोज हमारे जीवन में कुछ तो ऐसा नया जरूर आता है जो हमें कुछ ना कुछ सिखा ही जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रह्मांड की, नितांत अवर्णनीय, हमारे समस्त ज्ञान और कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा रहस्यमय। लेकिन जब बात कुछ सीखने की आती है तो यह हमें इस बात की समझ देता है कि हम क्या हैं और वास्तव में कहां हैं। यह कोई इकाई नहीं बल्कि अरबों खरबों इकाइयों का विस्तार है। हम इसकी एक इकाई से भी बहुत ज्यादा कम हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मांड के बाद बारी आती है समय की। यह हमारे जीवन में बहुल प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। हर क्षण खास और शिक्षाओं से भरा हुआ होता है। इसका पूर्वानुमान, सही पूर्वानुमान हमेशा असंभव प्रायः ही है। यह हमें अनपेक्षित के प्रति तैयार रहने की शिक्षा देता है। यह हमें जिंदगी के सभी पक्षों में अच्छे और बुरे की समझ विकसित करने में मदद करता है। जीवन हमें मिला हुआ एक और शिक्षक है। यह अनुभवों और आश्चर्यों से भरपूर होता है। हर अनुभव एक नए पाठ के समतुल्य है। हम अपनी गलतियों और सफलताओं से सीखते हैं। जीवन हमें जिंदगी के महत्व, इसकी उपयोगिता, इसे कैसे उपयोग करें, इसे कैसे अमूल्यता दें और कैसे इसे अधिकतम पाएं जैसी बातों के बारे में सिखाता है। नदी प्रवाह का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, पारदर्शिता का प्रतीक है। अपने प्रवाह को शाश्वत बनाए रखने के लिए चिर कटिबद्ध नदी कभी किसी से नहीं पूछती कि कहां जाऊं, कैसे जाऊं। यह हमें आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ बढ़ते जाना सिखाती है। नदी की बात चले और पानी की याद ना आए, ऐसा संभव है क्या? जीवन की एक अनिवार्यता के रूप में पानी हमें सामंजस्य की कला और विज्ञान दोनों सिखलाता है।

ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। हम किताबों से अपने अपने जीवन के, हमारे परिवेश के, समाज के, संसार के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। वे हमें सिखाती हैं कि एक अच्छा, अनूठा और सफल व्यक्ति कैसे बने। मां, यदि पेड़ इंसान होते तो यकीनन मां जैसे ही होते। मां हमें स्वरहित प्रेम, दयालुता, कोमलता, ख्याल रखना, संसार को समझाना, समझौता किए बिना सामंजस्य स्थापित करना, वह सब कुछ सिखाती है जो हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों और नियामतों को सही ढंग से स्वीकार करना सिखाती है। लोग, हम एक ऐसे समाज में रहने के लिए बने हैं जो लोगों द्वारा या लोगों से बनता है। हमारे पूरे जीवन में लोग अलग अलग रूप में हमारे सामने आते रहते हैं। वो हमारे मित्र हैं, संबंधी हैं, सहकर्मी हैं, साथी हैं, पड़ोसी हैं, अजनबी हैं, लेकिन हम उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वे हमें जीवन के विभिन्न स्वरूपों का मतलब और उन्हें समझने की कला सिखाते हैं। इतिहास, हीगल ने कहीं कहा था कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। कुछ वर्ष पश्चात स्पेनी दार्शनिक जॉर्ज सांतियाना ने इसमें जोड़ा कि जो अतीत को याद नहीं रख सकते वे ही उसे दोहराते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें इससे सीखना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को बचा सकें और एक आकार दे सकें।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुहारा।
1: अचानक वाईफाई बंद हो गया है। चेक किया तो पता चला पड़ोसी ने बिल नहीं भरा था 2 महीने से वाईफाई का, इंटरनेट का। कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: हमारे जल संसाधन।
2: पानी या जल प्रकृति की अनमोल देन है। जीवन और उसके अस्तित्व के लिए यह इतना जरूरी है कि इसके बिना तो जीवन ही असंभव है। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, ना होता जल तो जग जाता जल। वास्तव में जीवन की उत्पत्ति जल से ही प्रारंभ हुई है। हमारे शरीर का लगभग 65% भाग पानी ही है। दैनिक जीवन की प्रत्येक घरेलू प्रक्रिया में, जैसे खाना बनाने से लेकर पीने के पानी तक, नहाने से लेकर कपड़े धोने तक, शॉर्ट से लेकर सफाई तक, प्रतिदिन एक व्यक्ति लगभग 120 लीटर पानी खर्च करता है, जिसमें औसतन 2 लीटर पानी पीने के लिए ही चाहिए।
3: हमारे देश में पानी का सबसे अधिक उपयोग कृषि में फसलों की सिंचाई के लिए होता है। मवेशियों को भी काफी मात्रा में पानी चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न उद्योगों में भी इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक अच्छा घोलक, शीतक और सफाई का माध्यम है। बिजली बनाने का एक मुख्य साधन पानी ही है, जिसे जल विद्युत या पन बिजली कहते हैं। आज भी परिवहन का सबसे सस्ता साधन नदियों में चलने वाली नौकाएं या समुद्री जहाज ही हैं।
2: काफी हद तक मौसम भी तो पानी और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। जलाशय और खासकर विशाल सागर, जो ऊष्मा ऊर्जा के बैंक का कार्य करते हैं, जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और उसे छोड़ते हैं। इस कारण समुद्र तट के क्षेत्रों की जलवायु समुद्र से दूर के क्षेत्रों से भिन्न होती है। समुद्र तट के इलाकों में न तो सर्दी में ज्यादा सर्दी और न ही गर्मियों में ज्यादा गर्मी ही पड़ती है।
3: मगर ये पानी आता कहाँ से है, यानी इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं?
2: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पर कुल पानी का लगभग 97% महासागरों और समुद्रों में है, जो कि धरती की 3/4 सतह पर फैले हुए हैं। समुद्र का पानी खारा होता है, इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। शेष 3% ताजे जल के रूप में उपलब्ध है। इस 3% में से 2% जल हमारी पहुंच के बाहर है, क्योंकि ये जमा हुआ है। हिम के रूप में पहाड़ों की चोटियों पर, या ग्लेशियरों के रूप में, या फिर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और ध्रुवों पर बर्फ की विशाल और मोटी चादर के रूप में यहाँ पेंगुइन और सील रहते हैं। इस प्रकार सिर्फ 1% जल ही नदियों और झीलों में है, या फिर भूमिगत जल जो हम कुओं और नलकूपों के द्वारा निकालते हैं, और कुछ हवा में नमी और बादलों के रूप में। इसे यूं समझें कि अगर धरती पर 9 चम्मच पानी जमी हुई बर्फ के रूप में है, तो नदियों में बहता पानी 1 बूंद के बराबर है।
3: सच कहा जाए तो पानी हमारे आसपास चारों तरफ है। यहाँ तक कि रेगिस्तान की सूखी हवा में भी पानी की आर्द्रता अवश्य होती है। हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी में कुछ न कुछ मात्रा में पानी मौजूद रहता है, और उसके नीचे भूमिगत जल।
2: आपने सही बताया, मगर पानी तो वर्षा से भी आता है।
3: हमारे खेतों की फसलों के लिए और पीने का पानी काफी मात्रा में वर्षा से ही आता है। इस विषय पर आप कुछ और बताना चाहेंगे?
2: हाँ, क्यों नहीं। हमारे देश में जलवायु की विविधताएं हैं। कहीं थार जैसे रेगिस्तान हैं, तो कहीं हिमालय जैसे बर्फ से ढके हुए पहाड़। इसलिए वर्षा में काफी असंतुलन और असमानता है। जैसे राजस्थान के जैसलमेर में 20 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा प्रतिवर्ष होती है, तो आसाम के चेरापूंजी में लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी तरह मुंबई और पुणे के बीच सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी पर भौगोलिक कारणों से मुंबई में मानसून के समय लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इतने ही समय में पुणे में लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तभी तो किसी कवि ने कहा है, भारत तेरी अजब कहानी, दो कोस पर बदले पानी और 100 कोस पर वाणी।
3: फिर भी हम वर्षा के मामले में भाग्यशाली हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में औसत प्रतिवर्ष 115 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो विश्व के अन्य भागों की तुलना में बहुत अधिक है। भारत सबसे अधिक वर्षा के क्षेत्र में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर आता है। कई कारणों से कुल वार्षिक वर्षा का 10वां भाग ही हम उपयोग में ला पाते हैं। एक अनुमान के अनुसार अगर स्थितियां बदली नहीं तो आज से 40 वर्ष बाद भी 1/4 से ज्यादा पानी हम उपयोग में नहीं ला सकेंगे।
2: हमारे देश में व्यापक जल स्रोतों का प्राकृतिक खजाना है। कहीं विशाल नदियां, तो कहीं आभूषणों जैसी झिलमिलाती झीलें, कहीं झरझर करते जलप्रपात। और तीन तरफ फैला लंबा समुद्री किनारा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है।
3: पानी तो एक मुख्य समाचार बन जाता है जब देश के किसी भाग में सूखा पड़ जाता है,

या किसी प्रदेश में बाढ़ आ जाती है। या कई मौतें जल प्रदूषण से हो जाती हैं।

0: या गर्मियों में महानगरों में पानी का अभाव हो जाता है, जीवन के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।
1: हमारे देश में पानी की प्रत्यक्ष अधिकता भ्रामक है और हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें पानी का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पानी का हम दुरुपयोग भी करते हैं और कभी कभी अधिक और अनुचित उपयोग भी करते हैं। परिणाम स्वरूप पानी की गंभीर कमी की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं।
0: हमारे देश में हर एक को आवश्यकता अनुसार पानी क्यों नहीं मिल पाता है, इसके क्या कारण हैं?
1: पानी की कमी के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं बढ़ती हुई आबादी की बढ़ती हुई पानी की आवश्यकताएं, पीने के पानी का मुख्य स्रोत भूमिगत जल है। अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यह संसाधन तीव्र गति से कम हो रहा है। कई प्रदेशों में भूमिगत जल का बहुत उपयोग होने लगा है। भूमि के नीचे से जल निकालने की दर भूमि में जल रिसने की दर से अधिक है। परिणाम स्वरूप भूमिगत जल स्तर यानी वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है।
0: देखिए, बरसात तो सिर्फ वर्षा ऋतु में होती है ना, इसलिए दूसरे समय के लिए पानी का संचय करना पड़ता है, और पानी का संचय करना कोई आसान काम नहीं है।
1: पानी को जमा करके रखने का एक मुख्य तरीका है बांध बनाना। पानी को बड़े पैमाने पर बांध बनाकर उसे एक जगह पर विशेष उद्देश्यों के लिए रोक लिया जाता है। बांध के जल का उपयोग कृषि में सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से किया जाता है और सूखे में पानी की कमी से बचा जा सकता है। भारत में भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध, मिस्र में अश्वान बांध और पाकिस्तान में तरबेला बांध और अमेरिका में कूली और हैवर बहुउद्देश्य परियोजनाओं के उदाहरण हैं। वर्षा के पानी को जमा करके खेती के लिए और यहाँ तक कि घरेलू जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल में लाया

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ी, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों को

0: वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन बचाएं। अमित बेटा।
2: जी माँ।
1: मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दादाजी और सोनिया दीदी के पास जाकर बैठो।
2: ठीक है माँ।
1: और हाँ, देखो उन्हें तंग मत करना।
2: अच्छा माँ, मगर तुम जल्दी आना।
1: हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम जाकर खेलो।
2: अच्छा माँ।

0: सोनू दीदी बोलो, ये देखो मैंने शेर का चित्र बनाया है।
1: अरे वाह, इतना सुंदर।
2: अरे वाह भाई वाह अमित, अरे तुमने तो शेर का चित्र बहुत अच्छा बनाया है।
1: शेर तो जंगल का राजा होता है, पर अमित तुमने जंगल तो बनाया ही नहीं।
0: अरे हाँ सुनू दीदी,
1: हाँ
0: ये जंगल कैसा होता है?
1: जंगल
2: जंगल हमारे गांव के पास ही है बेटे।
1: बिल्कुल ठीक।
2: देखो जंगल का मतलब दूर दूर मीलों तक घने पेड़ पौधे झाड़ियाँ, समझे?
1: हाँ।
2: इसमें ढेर सारे जंगली जीव जंतु जैसे बाघ, शेर, हिरण, हाथी, हाँ, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि रहते हैं।
1: और जंगल इन सभी जीवों का घर होता है, है ना दादाजी?
2: बिल्कुल सही सोनिया बेटी। दरअसल जंगल

0: यानी वन हमेशा हमारे लिए वरदान रहे हैं।
1: अच्छा
0: समझे? हाँ, ये प्रकृति का उपहार है। आज बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण वनों का महत्व और भी बढ़ गया है।
1: अच्छा दादाजी।
0: हाँ भाई, अगर वन न हो तो हम सब पर संकट छा जाएगा। हाँ, और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता ही चला जाएगा।
1: पर्यावरण प्रदूषण ये क्या होता है दादाजी?
0: अरे बेटा, पर्यावरण हमारे आसपास के वातावरण को कहते हैं, समझे? जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, पेड़, पौधे, ये सब कुछ। अगर ये प्रदूषित हो जाएं, यानी गंदे हो जाएं, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, समझे? हमारे ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
1: अच्छा, वो कैसे दादाजी?
0: भाई जैसे गंदा पानी पीने से अनेक बीमारियां होती हैं, वैसे ही प्रदूषित वायु में सांस लेने से सांस संबंधी बीमारी हो जाती है।
1: अच्छा।
0: और बेटे, अगर वन न हो तो सभी जीवों का जीना दूभर हो सकता है।
1: वो कैसे दादाजी?
0: सुनो, वन वातावरण प्रदूषित होने से बचाते हैं और हमें शुद्ध हवा देते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, पेड़ पौधों के अंदर जो नमी होती है वो वर्षा कराने में सहायक होती है।
1: अच्छा।
0: भाई इन सब के अलावा वनों से हमें ढेरों कीमती सामान भी मिलते हैं। जैसे अनेक जड़ी बूटियां, फल, लकड़ी, रबर, गोंद और पत्तियां और पेड़ों की छालें, जिनका उपयोग हम दवा, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ आदि के रूप में करते हैं।
1: अच्छा दादाजी। वन इतने उपयोगी हैं, फिर इनका विनाश क्यों हो रहा है?
0: अरे बेटे, इसके बहुत से कारण हैं। जैसे हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा हो गई है।
1: अच्छा।
0: लोगों के पास रहने की जगह कम पड़ने लगी है। और भाई, लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए, इसलिए लोग वनों को काट कर अपने रहने की जगह बना रहे हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, बड़े बड़े कारखानों के लिए भी जगह की जरूरत है।
1: अच्छा।
0: इसके लिए भी वन काटे जाते हैं।
1: अच्छा।
0: और पेड़ों की लकड़ियाँ प्रमुख साधन है। इसके अलावा झूम खेती से भी वनों का विनाश हो रहा है।
1: अच्छा दादाजी। दादाजी, ये झूम खेती क्या है?
0: देखो बेटा, झूम खेती हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, समझे? भाई इस प्रकार की कृषि में लोग भूमि के एक टुकड़े पर कुछ दिन खेती करने के बाद दूसरी जगह वनों को साफ कर खेती करना शुरू कर देते हैं।
1: अच्छा, ऐसा करते हैं?
0: हाँ, इसके कारण नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों में वन लगातार कम होते जा रहे हैं।
1: दादाजी, इन वनों को बचाया कैसे जाए?
0: अरे बेटा, वनों को तो हम कई तरीकों से बचा सकते हैं।
1: वो कैसे?
0: जैसे ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग न कर कोई अन्य वस्तु, जैसे गोबर गैस, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा का उपयोग करें।
1: अच्छा।
0: हाँ, और इमारत और फर्नीचर में लकड़ी का उपयोग न करके फाइबर, शीशे, लोहे का उपयोग कर सकते हैं।
1: दादाजी,
0: बोलो बेटे।
1: हम पेड़ काटने से पहले पेड़ लगा भी तो सकते हैं।
0: अरे वाह वाह अमित भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटे। सोनिया बेटी।
1: हाँ जी।
0: देखो जरा कौन आया है।
1: हाँ दादाजी, मैं अभी देखती हूँ।

0: रेंजर चाचा आप? आइए नमस्ते।
1: नमस्ते बेटी नमस्ते। काका नमस्ते।
2: अरे भाई रेंजर, आओ आओ भाई, और सुनाओ कैसे हो? आओ आओ इधर आओ, इधर
1: सब ठीक है काका।
0: चाचा जी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा, और सुनाओ बच्चों, दादाजी से क्या बातें हो रही थी?
0: हम जंगल के बारे में बात कर रहे थे चाचा जी।
1: अच्छा
0: रेंजर चाचा, आप तो जंगल में रह चुके हैं।
1: हाँ?
0: आप हमें बताइए कि वनों को बचाने के लिए लोगों को कैसे बताया जाए?
1: बच्चों ये बातें अनेक तरीकों से बताई जा सकती हैं।
0: वो कैसे?
1: जैसे टीवी रेडियो पर वनों के महत्व को बताकर, अखबारों में वनों के महत्व पर लेख लिखकर, और पोस्टर बैनर के जरिए वन बचाने का संदेश देकर।
0: अच्छा चाचा जी, वनों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है?
1: बच्चों पेड़ों को बचाने के लिए अनेक आंदोलन हुए हैं।
0: अच्छा।
1: वर्षों पहले उत्तराखंड के लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इसमें गांव के सभी लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया।
2: देखा बच्चों?
0: हाँ दादाजी।
1: ठीक इसी प्रकार कर्नाटक के सिरसी जिले के सालकड़ी गांव के निकट एक जंगल में अप्पिको आंदोलन शुरू हुआ। वहाँ वन विभाग ने जब पेड़ काटने शुरू किए तो गांव के स्त्री पुरुष और बच्चे पेड़ों से चिपक गए।
0: अच्छा।
1: इससे मजबूर होकर पेड़ काटने का काम रोकना पड़ा।
2: देखा?
1: इसी तरह राजस्थान के खेड़जली गांव और उत्तरकाशी क्षेत्र के तिलाड़ी गांव के लोगों ने वनों को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है।
2: अच्छा भाई रेंजर, ये बताओ कि इस विषय में हमारी सरकार क्या कर रही है?
1: काका हमारी सरकार ने भी वनों को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
0: वो कौन सी कदम है चाचा जी?
1: जैसे बिना इजाजत पेड़ काटने वालों को जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ती है।
0: अच्छा।
1: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वनों की कटाई पर नजर रखता है, और इसके अलावा सरकार ने सामाजिक वानिकी नाम की एक योजना भी बनाई है जो अब कई जगह चल रही है। इस योजना के तहत लोगों को ये बताया गया है कि गांव के लोग खुद पेड़ लगाएं।
0: अच्छा।
1: और वन काटने के बजाय इन्हीं पेड़ों से अपनी जरूरतों को पूरा करें।
0: अच्छा।
1: और झूम खेती करने वालों के लिए सरकार ने एक स्थायी कृषि प्रणाली बनाई है ताकि लोग झूम खेती छोड़ दें।
0: अच्छा।
1: इन सब के अलावा जंगलों की रक्षा से संबंधित शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए हमारी सरकार ने अनेक शिक्षण संस्थान भी खोले हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे वन अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी।
0: चाचा जी।
1: हाँ बेटा।
0: फिर तो मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा कि वन कितने जरूरी हैं।
1: शाबाश।
0: हाँ, और मैं भी अपने हर एक जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी और अपने सभी साथियों को भी पेड़ लगाने को कहूंगी।
1: बहुत अच्छे।
2: अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बगीचे में चलकर इसकी शुरुआत आज ही से करें। चलो
0: चलो।

0: दुनिया रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
1: दो गौरैया।
2: इस घर में हम तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तोते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है। सुबह होते ही कबूतरों का गुटरगू संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि दो गोरैया सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई। पिताजी, देखिए ना, गोरैया घर में क्या ढूंढ रही हैं?
3: ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि रहने योग्य है भी या नहीं।
2: अच्छा,
3: देखो देखो, कभी खिड़की पर बैठ रही हैं तो कभी रोशनदान पर।
2: हाँ, अरे हाँ हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
4: दो तीन दिन बाद क्या देखते हैं कि गोरैया के जोड़े ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में तिनके और घास फूस से घोंसला तैयार कर लिया है और मजे में चहचहा रही है। माँ और पिताजी सोफे पर बैठे उन्हें ताक रहे हैं।
3: अब ये देखो, इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया। उड़ाना पड़ेगा इन्हें यहाँ से।
5: अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है।
3: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे हैं। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
5: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे।
3: ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़। तुम्हें यहाँ से इसमें हंसने की क्या बात है?
5: चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
3: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
5: ठीक है,
3: चल चल चल, हट हट।
5: ये अब नहीं निकलेंगी।
3: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ।
4: मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गोरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती तो कभी किचन के दरवाजे पर। उधर माँ को चिठोली सूझती।
5: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी ये निकलेंगे। हाँ
3: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है
2: जी?
3: जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे
2: जी।
3: वो सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रख
2: जी। अच्छा पिताजी।
4: अब पिताजी लाठी उठाकर फिर गोरैया से लोहा लेने को लग गए। एक बार तो लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची।
5: अरे अरे, अरे क्या करते हो जी?
3: गलती से लग गया।
5: आराम से।
4: गोरैया चीची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। माँ तालियां बजाने लगे और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
3: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
4: सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
3: अरे
5: वो देखो, फिर से आ गई घर में।
4: दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गोरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
6: देखता हूँ मैं इनको।
5: अरे सुनो सुनो, देखो जी इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
3: बाहर मत निकालो तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
5: सुनो तो। रुक जाओ।
4: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झुलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़े और उन्हें बाहर खदेड़ दिया।
3: गई।
4: दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठे। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गोरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही है। अब तो ये रोज का खेल हो गया।
6: मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अभी सुन कर ये।
4: दिन में गोरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो ना जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठा कर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी।
5: तुम्हारे बस की नहीं है।
7: फिर कोशिश करता।
4: तभी मेरी नजर बाहर बैठी गोरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी।
3: क्या देखो?
4: घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा चींची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके। बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई?
7: पिताजी देखो देखो देखो ऊपर देखो। माँ पिताजी
5: हाँ?
7: वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे
5: सारे। हाँ, बेटी।
4: अरे पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। चींची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ है, कहाँ है हमारे माँ बाप। माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए।
5: ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया। आ जाओ गोरैया।
4: और तभी गोरैया झट से उठकर अंदर आ गई और

0: नमस्ते डॉक्टर साहब।
1: अरे नमस्ते नमस्ते कमला जी, आइए आइए।
0: देखिए ना डॉक्टर साहब, इसके दांत में दर्द हो गया है।
2: बस बस घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा?
3: चीनू।
2: चीनू, लगता है चीनी ज्यादा खाती हो है? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा मुंह खोलो मुंह खोलो। हाँ थोड़ा सा और। एक सेकंड बस, ये लो इस पे दवा लगा देता हूँ। हाँ इसे खा के कुल्ला करो बस। अब कुछ दर्द कम हुआ बेटा? हुआ ना? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, ये जो तुम्हारा दर्द है ना, ये कीटाणु की वजह से है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं। और ये इसलिए लगता है क्योंकि आप समय से दो बार ब्रश नहीं करते होंगे, क्यों है ना कमला जी?
0: जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
2: देखो बेटा, कभी भी लापरवाही मत करना, क्योंकि दांत जो है हमारी सुंदरता का प्रतीक है ना? कितने अच्छे लगते हैं दांत, तो इसीलिए हमेशा दो बार, एक तो हमें सोकर उठने के बाद ब्रश करना चाहिए, और उसके बाद सोने से पहले यानी रात को भी ब्रश करना चाहिए। और हमें कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या पता है? ऊपर नीचे, ब्रश को ऊपर नीचे करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि खाने का कोई भी अंश दांतों में फंसा ना रह जाए, समझे? और हाँ, समय समय पर डॉक्टर से दांतों की जांच भी करवानी चाहिए। कमला जी आगे से आप भी ध्यान रखिएगा।
0: जी बिल्कुल,
2: है ना?
3: डॉक्टर साहब, क्या मैं कभी चॉकलेट नहीं खा सकती? कभी नहीं मीठा खाऊंगी मैं।
0: डॉक्टर साहब इसको मीठा बहुत पसंद है, ये मीठा के बगैर नहीं रह सकती।
2: समझ गया। देखो बेटा, ऐसी बात नहीं है कि तुम मीठा नहीं खा सकती, तुम मीठा बिल्कुल खा सकती हो, चॉकलेट भी खा सकती हो, मिठाई भी खा सकती हो, लेकिन हाँ खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना और दांत अच्छे से साफ करके सोना, जैसे मैंने बताया दो बार ब्रश। समझ गए ना? और एक बात और, अगली बार जब आओगी ना तो हमारे लिए भी चॉकलेट लेकर आओगी? लाओगी चॉकलेट? ये हुई ना बात। शाबाश, जाओ शाबाश।
4: ये सारी बातें सुनकर चीनों के दांत के कीटाणु परेशान हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं।
5: अरे भाई छोटे।
3: हाँ भाई बड़े।
5: आप तो हमारे आराम के दिन गए।
3: हाँ
5: हम तो अब भूखे ही रह जाएंगे।
3: हाँ, चलो दादाजी से चलकर।
5: हाँ चलो चलो दादाजी। दादाजी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है।
3: भूख लगी है।
6: हाँ बेटा मैं समझता हूँ। बेटा ये जगह अब बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है और यहाँ खाने को भी अब कुछ नहीं रहा। चलो हम किसी और दांत में चलकर वहाँ जगह बनाते हैं। चलो
5: चलो
6: आओ।
5: चलो
3: चलो
4: चलो। इस तरह सारे कीटाणु चीनू का दांत छोड़कर नए घर की तलाश में निकल जाते हैं। चीनू भी अब रोज रात को ब्रश किए बिना नहीं सोती। बच्चों अगर आप नहीं चाहते जो कीटाणु अभी अभी बेघर हुए हैं वो आपके दांत में आकर अपना घर बना लें, तो आप भी चीनू की तरह रोज रात को ब्रश करने की आदत डाल लें।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है बुलबुल बुल।

बाल गीत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा बिसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और हमारे किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि हम और आप देख रहे हैं गर्मी इतनी ज़्यादा भीषण पड़ रही है। ऐसे में हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान साथी जिनका मन नहीं मानता है और वो सोचते हैं कि हम तो खेती में ही हमें पूरा समय व्यतीत करना है, और चाहे वो गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, या फिर बरसात का मौसम हो, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, सोचते रहते हैं कुछ नयापन करने के लिए। और बहुत सारे किसान साथी ऐसा करते भी हैं और कर भी रहे हैं, तो ऐसे में किसान साथी थोड़ा अपना भी ख्याल अवश्य रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से हमारे किसान साथी यदि बीमार पड़ जाएंगे तो आगामी फसल कैसे करेंगे। हाँ, हमें आशा है कि किसान साथी हमारी बात को समझ रहे होंगे। और किसान साथी, इस बार चूंकि आपके जिले झाबुआ में पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन खुल गया है, तो नई नई जानकारी तो आप सुन ही रहे होंगे, और आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों की ये जो जानकारी है वो बहुत पसंद आ रही होगी। हम कोशिश करेंगे कि वो छोटी सी छोटी जानकारी हमारे किसान साथियों तक पहुँचाई जाए, जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो। अब हमारे किसान साथी चूंकि पथरीला इलाका है झाबुआ जिले का, और हमारे किसान साथी कम सीमित उनके पास खेती भी है, और जिनके पास ज़्यादा खेती है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन जिनके पास कम खेती है वो क्या करते हैं कि खेती बस दो सीजन की खेती लेते हैं, या ये बरसात के बाद जो खरीफ वाली है या रबी वाली फसल, दोनों फसलें लेते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है, ऐसे में किसान साथी संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी से परामर्श लेकर, आपके पास में केबीके है यानी कृषि विज्ञान केंद्र भी है, वहाँ पर जो संबंधित वैज्ञानिक बैठे रहते हैं वो आपके लिए तत्पर तैयार रहते हैं। और साथियों, आपके पास कम्युनिटी रेडियो है जिस पर आप जानकारी अपनी आदान प्रदान कर सकते हैं, साझा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसान साथी कि आय किस तरीके से दोगुनी हो, क्योंकि दुगनी तभी होगी हमारे किसान साथियों की आय जब हम वैज्ञानिक पद्धति की ओर मूव करेंगे, जब हम वैज्ञानिक खेती करना स्टार्ट करेंगे, नई नई पद्धति, नए नए वैरायटी के बीज, और स्प्रिंकलर से खेती करना या फिर ड्रिप एरिगेशन से खेती करना, तो विभिन्न प्रकार की संभावनाएं खेती में, और इसमें लागत भी कम आती है और मुनाफा अधिक होता है। तो हमारे किसान साथी समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, हमें आशा है कि समझ गए होंगे, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें। और अभी से चूंकि बरसात का मौसम जैसे ही आएगा, तो हमारे किसान साथी क्या करेंगे, अभी से तैयारी करें, क्योंकि मनरेगा में बहुत सारा पैसा रहता है, मेड़ बंधान कर सकते हैं हमारे किसान साथी, जो ढालू उबड़ खाबड़ जमीन है उसको एक समतलीकरण उसका कर सकते हैं, जो हमारे किसान साथियों के लिए समतली जमीन है उन पर वो बागवानी लगा सकते हैं, सब्जियाँ लगा सकते हैं, तमाम प्रकार की संभावनाएँ खेती में करें। तो किसान साथी करने के लिए यदि तत्पर हैं, तो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी भी तत्पर हैं और हमारे वैज्ञानिक भी तत्पर रहते हैं आपके सहयोग करने के लिए। आपको बस उनके पास जाना है, समझना है, सोचना है, और हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना है। आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज हम एक नई पद्धति की खेती के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, वो है कि किस तरीके से जो हमारे किसान साथियों के पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं वहाँ पर पॉली हाउस, चूँकि पॉली हाउस सरकार द्वारा अनुदान भी इसमें दिया जाता है, पॉली हाउस में टमाटर की खेती किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर की खेती यानी टमाटर सीजनेबल होता है, और आपको पता है कि अहम खेती में से एक मानी जाती है टमाटर की खेती। तो ऐसे में किसान साथी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कैसे संभालें, तो पॉली हाउस में किस तरीके से खेती कर सकते हैं टमाटर की, उस पर हम आज एक नज़र डालेंगे। साथ साथ में एक सफल किसान की कहानी भी हम सुनाएंगे, साथ साथ में आधुनिक जमाने में हम किसान साथियों को किस तरीके से खेती कर सकते हैं, कौन सी योजना का लाभ लेकर हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो 3-4 सेगमेंट होंगे। आज हम साथ साथ में मौसम आधारित जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन साथियों जानकारी उपलब्ध कराने से पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से व्हीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप लोग रेडियो, अपनी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
1: आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें।
0: रेडियो टांटिया बिल 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से भीली गीत को सुना, आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अब जानते हैं मौसम क्या कहता है, क्योंकि जब तक हम मौसम आधारित खेती नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा क्या कहता है मौसम। तो आने वाले 5 दिनों के दौरान तेज हवा, आंधी, तूफान चलने की संभावना देखते हुए हमारे किसान साथी, जिन किसान साथियों के पास कच्चे छत वाले पशुशालाओं हैं तो उनका गिरने का डर बना रहता है, इसलिए कच्चे पशुशालाओं की मरम्मत का कार्य अति शीघ्र शुरू कर दे। साथ साथ में कच्चे छत वाले पशुशालाओं के पशु सुरक्षित रहें। आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना बताई जा रही है। आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना भी बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 45 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना बताई जा रही है। रात का न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना बताई जा रही है। हवा की औसत गति 11 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें? आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना बताई जा रही है। साथ साथ में गर्म लू चलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई जिन्होंने सब्जी बोई है, उड़द मूंग भी की फसल उन्होंने बोई है, फलों के बगीचे उन्होंने लगाए हैं, तो हल्की हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर करते रहें। साथ साथ में मूंग में सफेद मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाई फसल का निरीक्षण करें। नियंत्रण हेतु मिथाइल डेमोटोन और डाई मैथो एट दवा 2.0 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आसमान जब साफ रहे तब उसका छिड़काव अवश्य कर दें। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वे हरी घास हेतु मक्का या ढेंचा की बोनी कर सकते हैं। आने वाले 5 दिनों के दौरान तेज हवा चलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई पान की यदि खेती करते हैं तो पान की बेलों को डंडी या बांस से ऊपर बांधकर चढ़ाने का कार्य शुरू कर दें। साथ साथ में टमाटर जिन किसान साथियों ने लगाई है, मिर्च बैगन की नर्सरी लगाई है तो उनको दोपहर के समय छाया का उचित प्रबंधन अवश्य करें जिससे गर्म हवाओं से बचा जा सके। कद्दू वर्गीय जिन किसान साथियों ने सब्जियां लगाई हैं, लाल कीड़ा सफ़ेद मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके लिए हमारे किसान भाई ट्राइजोफास 40 ईसी दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अवश्य कर दें तथा दवा छिड़काव के 7 दिन बाद तक सब्जियों को ना तोड़ें। वर्तमान मौसम में बैगन और टमाटर में फल तथा तना छेदक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके बचाव के हेतु क्वानाल फास 25 सीसी दवा 2.0 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अवश्य कर दें। और हमारे जिन किसान साथी नए बाग बगीचे फलबाग लगाने के लिए सोच रहे हैं तो वो गड्ढों की खुदाई अवश्य कर दें, उचित दूरी पर गड्ढे खोदें। साथ साथ में खुदी हुई जो मिट्टी रहती है उसको धूप से तपने दें जिससे जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाए। मानसून पूर्व पशुओं को गलघोंटू और जहरी बुखार के टीके अवश्य लगवा लें। आपके नज़दीकी जो पशु चिकित्सा होगा तो वहाँ पर जाकर संपर्क कर लें। साथ साथ में बारिश के मौसम के आने तक इनके अंदर रोग रोधक क्षमता का विकास हो सके। मुर्गी पालक हमारे किसान साथी जो पाले हुए हैं उनको मुर्गियों को गर्मी से बचाव हेतु मुर्गी खाने में चारों ओर जालियाँ में टाट फट्टी जो रहती है, बोरे जो रहते हैं उसको लगा देवे। साथ साथ में दिन का समय 2 से 3 बार पानी का छिड़काव अवश्य कर देवे। तो ये थी जानकारी मौसम आधारित जो आपको सुनाई जा रही थी। इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है हमारे कार्यक्रम को सुनने का। हमारे किसान साथी दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि गीत संगीत भी होगा और आपको जानकारी भी हम मुहैया कराएंगे। तो आइए इसी बीच सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला।

0: 101.8 FM, આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: रेडियो टांडिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं. और अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं पॉली हाउस में हमारे किसान साथी किस तरीके से टमाटर की खेती कर सकते हैं. आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को. बने रहिए आपके आरजे मरीज के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया व्हील 90.8 FM, आपका रेडियो अपनी बात है.
2: टमाटर की फसल बहुत ही नाजुक होती है, मौसम की मार इस पर बहुत ज्यादा पड़ती है, प्रभावित हो जाती है इसकी उपज. ऐसे में जरूरी है कि हम कोई विकल्प ढूंढें. विकल्प है पॉली हाउस. जी हाँ, टमाटर की खेती हम पॉली हाउस में कर सकते हैं, बेहतर उत्पादन हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है. किस तरह से ये संभव हो सकता है, आइए जानते हैं हमारे इस सेगमेंट के जरिए.
3: हमारे देश में टमाटर की मांग साल भर बनी रहती है. प्रधानमंत्री से टॉप फसलों में शुमार कर चुके हैं और ये केंद्र सरकार की ओर से चलाए जाने वाले ऑपरेशन ग्रीन्स का भी हिस्सा है. ज्यादा मांग की वजह से ही इसकी खेती आर्थिक रूप से काफी सुरक्षित मानी जाती है, यानी टमाटर कमाई वाली फसल है. लेकिन ज्यादा धूप, तेज हवा, अत्यधिक बारिश, ओले या मौसम दूसरे हमले इस फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसके अलावा टमाटर में कीटों और बीमारियों का भी खतरा बना रहता है. इसकी वजह से किसानों को फसल में कीटनाशकों और दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ जाता है. इससे न सिर्फ लागत बढ़ जाती है बल्कि गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है. पॉली हाउस लोहे और पॉलीथिन से बना छाया घर है जो महंगी फसलों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं और उन्हें मौसम की मार से बचाता है. इन घरों में जलवायु को नियंत्रित करके बेमौसमी फसलें भी उगाई जा सकती है. बेमौसम फसलें हमेशा से ही ज्यादा मुनाफा देती है. पॉली हाउस में बोने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने कई किस्में तैयार की हैं. पूसा रक्षित, पूसा टमाटर, संरक्षित एक, चेरी टमाटर, हिम शिखर, नवीन, हिम सोना, अभिलाष, शहनशाह, अर्का रक्षक और अर्का सम्राट. ये ऐसी किस्में हैं जो उन्नत भी है और लंबे समय तक फल देती है. टमाटर की खेती के लिए हल्की बलोई या बलोई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है. मिट्टी पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होनी चाहिए और पीएच मान 6 से 7. पॉली हाउस के अंदर खेत तैयार करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती. मिनी रोटावेटर या कल्टीवेटर से 2-3 जुताई काफी है. पहली जुताई के समय गोबर की खाद जरूर डाल दें. टमाटर उथली जड़ वाली फसल है और फल आने के बाद शाखाओं के लटक जाने या टूट जाने का खतरा रहता है, इसलिए समय समय पर पौधों को रस्सी से बांधकर सहारा देना चाहिए. बसंत और गर्मियों के दिनों में 4 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी है. आम मौसम में हर 10 दिन पर पानी दे सकते हैं. वैसे बेहतर होगा कि पॉली हाउस में टपक सिंचाई का इंतजाम करें. इससे न सिर्फ पानी की बचत होगी बल्कि लागत भी कम आएगी. पॉली हाउस चूंकि बंद संरचना है, इसलिए बारिश होने पर जल भराव की समस्या नहीं आती. टमाटर में रोपाई के पहले 4 हफ्तों के दौरान निराई गुड़ाई की जरूरत होती है. फसल में तापमान और नमी बनाए रखने के लिए फोगर सिंचाई भी कर सकते हैं. पॉली हाउस में चूंकि वातावरण नियंत्रित होता है, इसलिए पैदावार भी खुले खेत के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है. इसके अलावा आप साल भर टमाटर की फसल ले सकते हैं. कई विशेषज्ञों का मानना है कि पॉली हाउस सामान्य खेती के मुकाबले 4 गुना ज्यादा मुनाफा दिला सकता है.
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपनो रेडियो आपड़ी बातें. रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं. और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी. और अभी आपने सुना पॉली हाउस में किस तरीके से टमाटर की खेती कर सकते हैं. अगला सेगमेंट है कि बागवानी में किस तरीके से हमारे किसान साथी आगे बढ़ सकते हैं. और साथ में सुनेंगे सफल कहानी हमारे एक किसान की. बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपका रेडियो अपनी बात है. इसी बीच कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं इस प्यारे से वीली गीत को.

0: देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
1: खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा।
0: इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती है। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
2: किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी में कई ऐसी मिसालें हैं जो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। आज एक ऐसे ही किसान अमरनाथ से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं कैसे उन्होंने कामयाबी का ये सफर तय किया है।
3: अमरनाथ का जन्म गांव खेड़ा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा में हुआ था। इन्होंने खेतीहर परिवार में जन्म लिया था, इसलिए जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे उनकी रुचि खेती से जुड़ती जा रही थी। उनके पिता ने उनका दाखिला स्कूल में कराया तो था, लेकिन पेड़ों की छांव में पढ़ते समय भी अमरनाथ के दिमाग में खेती ही गूंजती रहती थी। पुराने दिन की वे यादें आज भी वे भूले नहीं है।

0: अमरनाथ बचपन से ही अपने पिता के साथ खेतों पर जाते थे। उन्होंने देखा कि किसान किस तरह खेतों में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जितनी मेहनत वो करता है उसके मुकाबले किसानों को मजदूरी तक नसीब नहीं होती है। इसी कारण अमरनाथ ने कई जगह नौकरी भी की, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ खास तरक्की नहीं मिली। आखिरकार अमरनाथ ने खेती को चुना और इसमें लगातार मेहनत करने लगे। वो दिन रात खेतों पर काम करते, बुआई बिजाई से लेकर कटाई तक सारे काम वे खुद ही करते हैं। काम करने की लगन और हमेशा कुछ नया करने की जिद ने अमरनाथ के लिए नए रास्ते बनाने शुरू कर दिए। उन्हें कहीं से पता चला कि सरकार किसानों के लिए अनेक सुविधाएं और ऋण मुहैया कराती है, तो बस फिर क्या था, अमरनाथ ने सरकार से खेती करने के लिए ऋण लेकर अपने काम को आगे बढ़ाया। उन पैसों से ट्रैक्टर खरीदा, धान काटने की मशीन खरीदी। सरकार की तरफ से मिली इन सुविधाओं से खेती से काफी मदद मिली। इन सभी मिली सुविधाओं से अमरनाथ की समझ भी बढ़ी। उन्हें ये समझ आने लगा कि परंपरागत खेती को छोड़ नई तकनीकों को अपनाकर ही किसान खेती में सफलता हासिल कर सकता है, लिहाजा वे नई तकनीकों के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने लगे। अमरनाथ ने अनेक राज्यों के सेमिनारों में शिरकत की और वहां अपने फसलों का प्रदर्शन किया और उसके लिए अमरनाथ को इनाम भी मिला। अमरनाथ खेती से जुड़ी बारीकियों और नई तकनीकों को जानने के लिए शहरों के चक्कर भी लगाते थे। इसी बीच उनका नासिक जाना हुआ था। वहां जाकर उन्होंने उन्नत किस्म के प्याज की उपज के विषय में विस्तार से जानकारी इकट्ठी की। उन्होंने प्याज की खेती करनी शुरू कर दी और उसमें उन्हें अपार सफलता भी मिली। सेमिनारों में उनके प्याज को खूब सराहा गया और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। अमरनाथ ने फसल चक्र को अपनाया। उन्होंने एक साथ कई फसलें लेनी शुरू की, प्याज के साथ गन्ना और चना भी लगाया, जिससे उनकी आय में भारी इजाफा हुआ और प्रगति के नए रास्ते भी खुलते गए। गरीबी के साए में पले बढ़े अमरनाथ आज अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बलबूते आज सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं।
1: ये पूरा प्राकृतिक है। अधिक जानकारी के लिए
2: बता दें आपको कि हमारी जो सरकार है वो आपकी उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, कई अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम है कृषि अवसंरचना कोष। इस कोष का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, हमारे किसानों को यानी कि आप लोगों को इससे किस तरह का लाभ मिल सकता है, जानने के लिए आइए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट पर।
3: लेकिन साथियों, उनकी बातचीत को सुनने से पहले सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपना रेडियो आपनी।

कृषि अवसंरचना कोष केंद्रीय सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बनाई गई एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद कृषि अवसंरचना प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए माध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के

0: किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके और साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनिटिक मानदंडों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 यानी 10 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स पात्र हैं। ये ऋण 4 वर्षों में वितरित करने का लक्ष्य है। कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म सभी योग्य संस्थाओं को ऋण के लिए आवेदन करने में सुविधा प्रदान कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति या संस्थान पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन से पहले अलग अलग बैंकों द्वारा प्रस्तावित ऋण दरों के बीच तुलना करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की प्रक्रिया के साथ साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं।
1: किसान भाइयों बहनों, अथर्ववेद में लिखा है कि ये धरती हमारी माँ है और हम सभी इसके पुत्र हैं। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, वैसे ही ये धरती भी हम इंसानों का पेट भरती है अपनी उपज से। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा उपज मिले, इसके लिए हमने क्या किया? रासायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया, जिससे हमारे देश की मिट्टी बीमार हो गई। अब हमारा दायित्व है कि हम इसे स्वस्थ बनाएं। कैसे? प्राकृतिक खेती को अपनाकर। आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं।
2: रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है, जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें दो तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद दो तरह से बन सकती है, मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खासतौर से

0: कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और महत्वपूर्ण योजनाएं साथ साथ में हमारे सफल किसान की कहानी और साथ साथ में पॉली हाउस में किस तरीके से हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं उसके बारे में हमने जाना, समझा और सोचा। साथियों, हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अब समझ गए होंगे कि आपके लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है और साथ साथ में योजना पर भी काम कर रहे हैं। और साथियों, यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए हो तो केवीके अपना झाबुआ में बना हुआ है, वहाँ पर संबंधित जो वैज्ञानिक रहते हैं उनसे परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि पॉली हाउस की योजना में भी अनुदान दिया जाता है, तो किस तरीके से लाभ लेना है उससे संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में नई पद्धति से नए बीजों का चयन और किस तरीके से जैविक पद्धति से हम खेती करना चाहते हैं, किस तरीके से बागवानी लगाना चाहते हैं, तो आप संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। कि हमें आशा है कि हमारे किसान साथी इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और हम कोशिश करते रहेंगे कि किसान साथियों को वो सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी है। एक बार फिर से आपको हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, अपना ख्याल रखें, पशुओं का भी विशेष तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे में पशुओं को बार बार पानी पिलाएं, साथ में उनको शरीर पर ठंडक बनाए रखें, नहलाएं उनको, नदी यदि आसपास है तो वहाँ पर नदी में भी नहला सकते हैं, साथ साथ में मेड़ बंधान पर विशेष तौर पर ध्यान दे सकते हैं हमारे किसान साथी। और साथ साथ में एक हम उम्मीद करेंगे कि इन कार्यक्रमों को सुनकर हम हमारे किसान साथी अपने जीवन में, अपनी खेती में जरूर बदलाव करेंगे। और साथ साथ में एक बातचीत और फिर से दोहराना चाहते हैं कि जिन किसान साथी जो खेत पर काम कर रहे हैं वो विशेष तौर पर अपना जरूर ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बार बार पानी पीते रहें, साथ साथ में तौलिया या गमछा अपने सर पर डाल के रखें जिससे आपको धूप ना लगे, और ज़्यादा मेहनत ना करें, समय समय पर रेस्ट लेते रहें और अपना काम करते रहें। तो ये जानकारी जो आपको उपलब्ध कराई जा रही है वो आपको बता देना चाहते हैं, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको दी जा रही है। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। फोन नंबर है हमारा 94251436003, यानी 9425413603। इस नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त समीर गोयल और आज एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है, द कन्वर्सेशन अबाउट कैंसर। कैंसर एक अजीब सी ऐसी कंडीशन है जिसको सुनकर किसी को भी एक अजीब सी फीलिंग होती है, डर लग जाता है। एक सोशल स्टिग्मा कैंसर के साथ जुड़ा हुआ है। कैंसर बोलते ही ऐसा लगता है जैसे कोई डेथ सेंटेंस, कोई सजा सुना दी गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। समय बदल चुका है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं, डर हैं, जो मैं आज इस प्रोग्राम के, इस एपिसोड के, इस बातचीत के जरिए दूर करनी है। हर 14 सेकंड में इस संसार में किसी न किसी महिला को ये शब्द सुनने पड़ते हैं, आपको ब्रेस्ट कैंसर है। आप सोच के देखिए दोस्तों, क्या गुजरती होगी उस महिला के ऊपर, क्या मानसिक स्थिति होती होगी इस महिला की। डर, भय, उदासीनता, इस समाज से कट जाने का एक फीलिंग कैसा होता होगा। लेकिन दोस्तों, ये प्रोग्राम इसी चीज को ठीक करने के लिए, इसके बारे में बातचीत करने के लिए और ये भ्रांति दूर करने के लिए है। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रिया तिवारी मैम हैं, जिनसे हम बात करेंगे इसी इन्हीं सब भ्रांतियों को लेकर, इन्हीं सब डर को लेकर, इन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए। मैं डॉक्टर प्रिया तिवारी मैम का छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। डॉक्टर प्रिया तिवारी मैम ने अपना MBBS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से किया, वहां से उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली से उन्होंने अपना MD और ऑन्कोलॉजी में DM किया। डॉक्टर तिवारी आज की डेट में इंडिया के टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट में शुमार रखती हैं और आर्टिमिस हॉस्पिटल गुड़गांव की ऑन्कोलॉजी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, विभाग प्रमुख हैं। डॉक्टर तिवारी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस प्रोग्राम। प्रोग्राम को शुरू करते हुए मैम, मैं आपसे उन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा जब कोई एक लेमैन, कोई एक साधारण व्यक्ति, कोई महिला, स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई एक महिला क्या सोचती है जब उनको ये शब्द सुनाई देते हैं। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें ये बताएं, जैसे ये कहा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर है
1: जी,
0: तो उसकी परिभाषा क्या है।
1: बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले तो थैंक यू फॉर द इन्विटेशन
0: मैम।
1: ब्रेस्ट कैंसर जब समझना है तो ये समझना है कि कैंसर क्या होता है। कैंसर हमारी जो सेल्स होती हैं बॉडी की, तो हमारी बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स हैं, अगर वो अनियंत्रित तरीके से ग्रो करने लगे, बढ़ने लगे, तो वो कैंसर बना लेती हैं। तो हमारी जो बॉडी में सेल्स होती हैं वो कुछ समय तक तो ग्रो करती हैं, लेकिन फिर उनका जब एक नॉर्मल जो एज होता है उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। बट कैंसर में ऐसा नहीं होता है। कैंसर में दो प्रॉब्लम होती है, जैसा कि पहला मैंने बताया कि अनियंत्रित, अनकंट्रोल मैनर में ग्रो करने लगे, और दूसरा अमर हो जाती हैं। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट कैंसर में ये प्रॉब्लम्स होती है कि सेल्स रिफ्यूज टू डाई।
0: ओह माय गॉड।
1: हाँ, सुनने में तो सबको अमरत्व चाहिए, है ना, तो बड़ी अच्छी चीज लगती है, पर देखिए अमरत्व के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप इस प्लैनेट पे देखिए, ह्यूमन बींग्स ग्रो कर रहे हैं तो हम सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लेते हैं।
0: बिल्कुल ठीक।
1: जब हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कैंसर भी हमारी बॉडी में यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जो बॉडी के अपने रिसोर्सेज नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज होने चाहिए, जो हम न्यूट्रिशन खाते हैं, अगर ये प्रॉब्लम हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ये उनको यूज करने लगते हैं, तो जो बॉडी के नॉर्मल ऑर्गन्स होते हैं उनका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, उनका ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इसीलिए कैंसर से डेथ हो सकती है। कैंसर बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, क्योंकि सेल्स हर जगह हैं, टिप ऑफ द नोज से लेकर टिप ऑफ द फिंगर, हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेस्ट, कहीं पे भी। इसीलिए कैंसर केवल एक बीमारी नहीं है, कम से कम 100 से ज्यादा किस्म के कैंसर हो सकते हैं, और अगर यही प्रॉब्लम यही सेल्स ब्रेस्ट में हो जाए तो वो ब्रेस्ट कैंसर कहलाते हैं।
0: अमेजिंग, अमेजिंग, एक नई परिभाषा दी डॉक्टर साहब आज आपने, बहुत प्यारे ढंग से, बहुत साफ सुथरे लैंग्वेज में आपने बताया। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, जो भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, काफी क्लैरिटी आई होगी, बहुत समझ में आया होगा कि क्या है कैंसर और किस तरीके से ये कुछ सेल्स हैं जो अमृतत्व प्राप्त कर लेते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही सही कहा। लेकिन गौर कीजिएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां पर जरूर एक बात कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब की, जैसे ही हम कैंसर सुनते हैं
1: जी,
0: एक शब्द भारी भरकम सा हमारे दिमाग में आता है, वो है डर।
1: जी।
0: जबकि ऐसा मेरे ख्याल से अब नहीं है। कैंसर एक दूसरी बीमारियों की ही तरह एक बीमारी का नाम लिया जा सकता है। क्या कहते हैं आप डॉक्टर साहब?
1: बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना, डर इस वजह से होती है क्योंकि जागरूकता का अभाव होता है। प्रॉब्लम यह है कि कैंसर के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं कैंसर में क्या होता है। हार्ट अटैक सबको पता है
0: जी।
1: कि हार्ट में प्रॉब्लम होती है, चलो हार्ट अटैक है, पता है, इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कैंसर के बारे में जागरूकता ही नहीं है, इसीलिए लोग डरते हैं। अच्छा, जागरूकता नहीं है इसीलिए कैंसर समय पर पता नहीं चलता। समय पर पता नहीं चलता तो इसका इलाज नहीं हो पाता। अगर इलाज नहीं हो पाएगा समय पर, पता न चलने की वजह से वो डेथ हो सकती है।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपके इसी बहुत ही बढ़िया जवाब से एक सवाल उठ रहा है। कैंसर जैसे ही दिमाग में आता है तो लोगों के दिमाग, ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, कि जी गांठ हो गई। मान लिया कि चलिए गांठ है, छोटी है, बड़ी है, जो भी है, दुख भी नहीं रही है, दर्द भी नहीं कर रही है, तो अगर हम एक सेकंड के लिए सोचें कि ये ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जा रहा है मामला
1: जी,
0: तो और क्या सिम्टम्स और क्या लक्षण होते होंगे जिससे हमें थोड़ा सा जागरूक हो जाना चाहिए?
1: देखिए सबसे जरूरी चीज ये समझना है कि ब्रेस्ट में अगर गांठ हो रही है तो कैंसर हो सकती है, लेकिन 10 में से 9 गांठें कैंसर नहीं होती हैं। तो हर गांठ कैंसर की नहीं है, पहले तो ये बात समझनी है। तो इसलिए लोगों को जब ब्रेस्ट में गांठ होती है, पता चलता है, तो पैनिक नहीं करना चाहिए।
0: ओके।
1: बट हाँ, ये भी बात सही है कि कैंसर का सबसे कॉमन लक्षण, जैसा कि आपने बोला, लंप होता है जिसे कि गांठ बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या चिन्ह हो सकते हैं? एक होता है कि ब्रेस्ट का नॉर्मल साइज एंड शेप। तो जब कैंसर डेवलप होता है, क्योंकि ये सब ब्रेस्ट के अंदर से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो साइज और शेप में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि जो ब्रेस्ट के ऊपर की त्वचा है वो कई बार ऐसी दिखने लगती है जैसे ऑरेंज। सुनने में ये थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन ऐसा भी होता है कि जो त्वचा जो है वो ऑरेंज के छिलके जैसे लगने लगे, ऐसा कैंसर का लक्षण होता है। साइज और शेप में चेंज हो जाए, अचानक से ब्रेस्ट बहुत बड़ा या बहुत छोटा हो जाए। इसके अलावा निप्पल में डिस्चार्जेस हो सकते हैं जिसमें से ब्लड आ जाए। डिस्चार्जेस बहुत कई बार ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जब खत्म हो जाए तभी भी डिस्चार्जेस होते रहते हैं।
0: जे, जे।
1: तो डिस्चार्जेस देखिए इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं, बट हाँ डिस्चार्जेस ब्रेस्ट कैंसर का भी लक्षण है। अच्छा, ब्रेस्ट में तो गांठ हो गई, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि गांठें ब्रेस्ट कैंसर की वजह से आर्मपिट्स में भी हो सकती हैं।
0: आर्मपिट मतलब कांख के बगल,
1: यस,
0: कांख
1: जिसे बोलते हैं, अगर कांख में गांठ बन जाए तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा देखिए जब बॉडी में कैंसर डेवलप होता है, तो जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि ये बॉडी के ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, बॉडी के रिसोर्सेज को यूज करने लगता है, इंसान को वेट लॉस शुरू हो जाता है। इंसान जो भी खा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, वो कैंसर खा के ग्रो कर रही होती हैं, है ना? तो वेट लॉस शुरू हो जाता है। तो अगर सपोज करिए कोई महिला ऐसी है, कैंसर औसतन ना 40-50 साल की उम्र का रोग है, तो अगर किसी की ये ज्यादा है, 40-50 साल से ज्यादा है, और अगर किसी को वेट लॉस स्टार्ट हो जाए, तो हम ओपीडी में कोशिश करते हैं कि हम उनका जरूर ब्रेस्ट एग्जामिन कर लें
0: जी,
1: कि मुझे पता है कि ऐसा कैंसर का लक्षण हो सकता है। अच्छा, फिर कैंसर से एक डर इस वजह से भी होता है कि जो कैंसर की सेल्स होती हैं वो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं, तो इसीलिए सिम्टम्स इस वजह से भी आ सकते हैं कि बीमारी कहीं और चली गई है।
0: Okay.
1: जैसे कि अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, तो ब्रेस्ट कैंसर की जो सेल्स होती हैं वो ब्लड में जाती हैं, ब्लड के थ्रू वो बोन्स में जा सकती हैं, हड्डियों में, तो लोगों को हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो 40 साल से ऊपर के लोग हैं और लगता है हड्डियों में दर्द शुरू हो गया, तो जरूर वहां पे कुछ ना कुछ कैंसर के टेस्ट करवा लेने चाहिए।
0: Okay.
1: लिवर में जा सकता है जिससे जॉन्डिस हो सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कैंसर की वजह से होते हैं। तो इसलिए ये पता होना है कि ब्रेस्ट में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और ब्रेस्ट से बाहर क्या प्रॉब्लम होती है।
0: इसको समराइज करें अगर
1: जी,
0: सो 1, 2, 3 ऐसे करके अगर हम बोले तो लक्षणों को एक बार जरा सा नंबराइज कीजिए।
1: सो सर, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण ब्रेस्ट लंप।
0: ओके।
1: ब्रेस्ट लंप या फिर आर्मपिट में लंप।
0: ठीक है मैम।
1: चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द ब्रेस्ट।
0: ठीक है मैम।
1: निप्पल डिस्चार्जेस, स्पेशली अगर ब्लड डिस्चार्जेस है। स्किन चेंजेस। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट, बट देयर कुड बी अदर सिस्टेमिक सिम्टम्स ऑल्सो, सच एज वेट लॉस, वीकनेस और बोन पेन्स, और समटाइम्स फीचर्स ऑफ जॉन्डिस और लिवर फेलियर।
0: ओके दोस्तों, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने समझाया है, अब बहुत क्लैरिटी आई होगी कि सिम्टम्स क्या है। मेरी गुजारिश रहेगी इस प्रोग्राम को एक बार नहीं 2-3 बार देखिए, जिससे कि आपको याद हो जाए, अवेयर हो जाए आप कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और हमें कब तुरंत डॉक्टर के पास, डॉक्टर प्रिया तिवारी मैम जैसे डॉक्टर्स के पास हमें जाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा मैम। कैंसर के बारे में ये भी सुना जाता है, भ्रांतियां भी हो सकती हैं और कुछ सच्चाइयां भी, कि अगर कुछ हेरिडेटरी है, पारिवारिक कुछ इतिहास है, दादी को या परदादी को या माँ को अगर कुछ ऐसा है तो वो भी महिलाओं में आ सकता है। ये कितना सच है? और एक तो नंबर

0: वन इज दिस, नंबर टू कुछ हमारी आदतों की वजह से भी असर आता है क्या इस चीज पर, मतलब क्या हम ब्रेस्ट कैंसर डेवलप कर सकते हैं कुछ गलत आदतों की वजह से?
1: जी बहुत सही बात की आपने। पहली चीज तो कैंसर और अनुवांशिक कंपोनेंट जिसे कहते हैं हेरिडिटरी कैंसर,
0: ओके,
1: अगर इनके बारे में बात करें, देखिए कैंसर के बारे में ना लोगों को बहुत स्टिग्मा है। हमने ये भी देखा है कि अगर किसी घर में कैंसर का पेशेंट होता है तो लोग घर में शादियां नहीं करते। स्टिग्मा की एक वजह यह भी है क्योंकि कैंसर कुछ केसेस में अनुवांशिक होती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी चलती है। ऐसा इस वजह से होता है कि देखिए कैंसर ना जो होता है बेसिकली डीएनए, जो डिफेक्टिव डीएनए होते हैं ना जीन्स, उनकी वजह से अगर उनमें किसी वजह से खराबी हो जाए तो जिसकी वजह से सेल्स में खराबी आती है, तो कैंसर जो है डिफेक्टिव डीएनए की वजह से होता है। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफेक्टिव डीएनए को रिपेयर करने के लिए।
0: ठीक बात है।
1: अब हम कुछ भी खाते हैं, हम कुछ भी सोचते हैं, उम्र के साथ डीएनए में भी ना खराबी आती रहती है, तो बॉडी हमारी डिफेंसिव मैकेनिज्म भी क्रिएट करके रखती है और उनको रिपेयर करने का काम भी करती है। बट अगर वो रिपेयर मैकेनिज्म ही फॉल्टी हो, गलत हो जाए, उन्हें कुछ गड़बड़ी आ जाए, तो जाहिर सी बात है रिपेयर डीएनए हो नहीं पाएगा, डिफेक्टिव डीएनए बढ़ जाएगा और ऐसे लोगों में कैंसर के रिस्क ज्यादा होते हैं। और यही कैंसर जो होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी ऐसे ही डिफेक्टिव जीन्स की वजह से ट्रांसफर होते हैं। तो 5 से 10% जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उनमें अनुवांशिक कॉम्पोनेंट होता है। अच्छा कैसे पता करते हैं, क्योंकि ओपीडी में बैठते हैं सर तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि मुझे कैंसर है, क्या मेरी बेटी को हो सकता है?
0: करेक्ट।
1: क्या मेरे बेटे को हो सकता है? या फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पिताजी को कैंसर था, क्या मुझे कैंसर हो सकता है? सो देखिए जिन लोगों में अनुवांशिक वजहों से कैंसर होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से कैंसर होता है, डिफेक्टिव जीन्स की वजह से कैंसर होता है, ऐसे लोगों में ना हमें कुछ साइंस एंड सिग्नल्स मिल जाते हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हाँ शायद इस घर में इस पर्सन के अंदर जो कैंसर है वो इस वजह से है। तो वहां हम एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करते हैं। तो वो पॉइंटर्स क्या होते हैं? मल्टीपल फैमिली मेंबर्स, जैसे सपोज करिए कि किसी, अब देखिए जीन्स की बात हो रही है तो जीन्स तो बहुत फैमिली मेंबर्स के आपस में शेयर होते हैं
0: जी।
1: तो मल्टीपल फैमिली मेंबर्स में हमें कैंसर मिलते हैं, पता चला कि एक पेशेंट को कैंसर था, उसकी बहन को भी कैंसर है, या उनकी मदर को कैंसर था, या कम से कम मासी की लड़की में कैंसर है या लड़के में कैंसर है। जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं ये ट्रांसमिटेबल होती हैं, है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसमिट होती है। तो हमें मल्टीपल जनरेशन में मिलता है कि एक जनरेशन में चलो ग्रैंडफादर को कैंसर था, फिर अब इनको कैंसर हो गया, तो हमें जहां पे, तो इसलिए हम डिटेल फैमिली हिस्ट्री लेते हैं
0: जी।
1: अच्छा यंग एज में कैंसर हो जाए, देखिए कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जो बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा देखी जाती है, और इसीलिए एक ये भी रिस्क है कि आजकल इंडिया में हम कैंसर ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि पीपल आर लिविंग लॉन्गर।
0: करेक्ट।
1: हाँ, तो कैंसर इज अ डिजीज विच वी सी, जो हम ना 40-50 साल की उम्र के बाद ज्यादा देखते हैं, बट अगर हमें यंग लोगों में कैंसर मिल जाए 30 साल की अवस्था में, 22 साल की अवस्था में, तो हमें इतना पता है कि यहाँ पे कुछ जीन्स में प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से कैंसर जल्दी हो रहा है। अच्छा एक और क्या चिन्ह होता है कि एक ही इंसान के अंदर दो तरह के कैंसर हो जाए।
0: Oh my God.
1: जी ऐसा भी होता है, लोगों को लगता है कि एक कैंसर हो गया तो कई बार वहां पे बस नहीं होती, कई बार दो एक से ज्यादा कैंसर्स मिलते हैं, और जिनके अंदर जीन्स की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर हमें ब्रेस्ट में कैंसर, ओवरीज में कैंसर, एक स्किन कैंसर होता है मेलानोमा, पैनक्रियाटिक कैंसर ऐसे दिख सकते हैं हमें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, मेल्स में अगर ब्रेस्ट कैंसर हो, अब ये बात बड़ी अजीब लगती है, मेल्स में कैंसर, मेल्स में तो ब्रेस्ट के बारे में कोई बात ही नहीं करता, ब्रेस्ट कैंसर की बात तो बहुत दूर की बात है। मेल्स में अगर ब्रेस्ट कैंसर हो तो वहां पे 100% टेस्ट करना चाहिए ये देखने के लिए कि कैंसर कहीं जीन्स पे रन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि देयर इज अ चांस ऐसे लोगों में मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर भी होते हैं।
0: अगर मेल में ब्रेस्ट कैंसर हो
1: जी,
0: उसके लक्षण क्या होंगे, मतलब किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हो गया या मुझे चेक कराना चाहिए?
1: सर देखिए बहुत रेयर बीमारी होती है मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, इसीलिए स्क्रीनिंग जैसे टेस्ट जो कि फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिकमेंडेड है वैसे तो टेस्ट नहीं है, लेकिन चिन्ह जो है वो फीमेल ब्रेस्ट कैंसर जैसा ही होते हैं।
0: oh.
1: जो सिम्टम्स होते हैं वो फीमेल ब्रेस्ट कैंसर, सो मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन होता है वो लंप या गांठ ही होती है।
0: okay.
1: जैसा कि मैंने अभी आपको बताया निप्पल से डिस्चार्ज, आर्मपिट में गांठे, चेंज इन साइज एंड शेप, ये सारी चीजें मेल्स में हो सकती हैं। सो हाँ, दूसरी चीज ये कि एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करके सर जीन्स आइसोलेट करके ये पता कर सकते हैं कैंसर अनुवांशिक है या नहीं, जहां हमें लगता है कि हाँ जरूरत है करना चाहिए वहां ये सिंपल ब्लड टेस्ट इंडिया के हर छोटे बड़े शहर में उपलब्ध हैं और डॉक्टरी रिकमेंडेशन पे किए जा सकते हैं, रिपोर्ट 2-3 वीक्स में आ सकती है। अब आपके आई थिंक एक दूसरा क्वेश्चन भी था कि
0: आदतें,
1: जी आदतें, देखिए सबसे जरूरी चीज ये समझनी है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कैंसर का वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, और वो क्या है? बढ़ती उम्र।
0: ओके,
1: तो इसलिए दुनिया का हर इंसान कुछ अच्छी आदतों के साथ हो, कुछ बुरी आदतों के साथ हो, कैंसर उसे हो सकता है और ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है।

0: लेकिन हाँ कुछ रिस्क फैक्टर्स की वजह से रिस्क ज्यादा हो जाता है और कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की वजह से रिस्क कम किया जा सकता है। तो कुछ तो हमारे हाथ में भी चीजें हैं
1: जी हाँ।
0: इंडिया में ओबेसिटी का खतरा बहुत बढ़ रहा है, ओबेसिटी कैपिटल बन रहे हैं अब हम, मोटापा, मोटापे की वजह से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। सुनने बड़ा अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है मोटापा और कैंसर, यहाँ तो मैं बोल रही हूँ कि कैंसर में वेट लॉस होता है
1: जबकि
0: सर मोटापे की वजह से क्या होता है ना, जो हमारी फैट चर्बी की लेयर होती है ना, वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्रिएट कर देती है।
1: ठीक बात है।
0: ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ग्रो करने के लिए ना, ब्रेस्ट को, नॉर्मल ब्रेस्ट को ग्रो करने के लिए एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है। ये फैट में भी बनता है, चर्बी की लेयर में बनता है ये। तो अगर एस्ट्रोजन, जिन जो लोग मोटे होते हैं उनमें एस्ट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाता है और ये ब्रेस्ट की टिश्यू को ना कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट करता रहता है ग्रो करने के लिए।
1: ओके।
0: तो किसी भी वजह से अगर एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ जाए तो मोटे लोगों में ये दिक्कत होती है। शराब के सेवन से दिक्कत बढ़ती है, शराब का सेवन करने से एस्ट्रोजन के लेवल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं। कुछ तरह की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो देखिए ओसीपीस तो अच्छे होते हैं बट हमें साथ में उनका कंटेंट भी देखना चाहिए। कुछ ऐसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, कुछ हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज होते हैं जिसमें एस्ट्रोजन काफी ज्यादा होता है,
1: बढ़ जाता है।
0: ऐसी सप्लीमेंट्स जो हैं ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। अच्छा, लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी ना करें, देखिए बॉडी के ऊपर ना बहुत तरह के स्ट्रेसर्स होते हैं, तो बॉडी कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू रिपेयर देम। फिजिकल एक्टिविटी से हम सारे स्ट्रेसर्स इंप्रूव कर सकते हैं। साइंटिफिक डेटा है कि अगर आप 5 दिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, हफ्ते में आधे घंटे के लिए भी करें, जिसमें कि ब्रिस्क वॉक हो गया, साइकिलिंग हो गया, रनिंग, जॉगिंग, कुछ भी करें, तो आप कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। अच्छा, खाने में आजकल बातें होती हैं, बहुत जरूरी है खान पान भी समझना। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, रेड मीट एंड प्रोसेस मीट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि अगर रेड मीट का कंजम्पशन ज्यादा है, प्रोसेस मीट का कंजम्पशन ज्यादा है, तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा है, दूसरे कैंसर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
1: साहब, इसी बात से एक सवाल और दिमाग में आ रहा है, तभी किसी ने जिक्र किया था इस बात का, आज की दुनिया में डेवलपमेंट हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो उसके कुछ गलत इफेक्ट भी हमारे समाज पर आ रहे हैं। उसमें से एक गलत इफेक्ट है कि कई कई लेडीज अब शादियां भी नहीं करती। जब शादियां नहीं करती तो बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं होते तो जाहिर सी बात है ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति ने बनाया है
0: जी,
1: उसके अगेंस्ट चली गई वो
0: जी।
1: तब मेरे को किसी ने जिक्र किया था कि बिकॉज ऐसा हो रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही, उस वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, क्या ये इसमें कुछ सच्चाई है?
0: जी बिल्कुल है। देखिए जब ब्रेस्ट फीडिंग चल रही होती है ना, तो बॉडी में कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल कम रहता है।
1: ओके
0: जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत हद तक एस्ट्रोजन से रिलेटेड है, तो जी हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग से प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन तो बिल्कुल हो रही है। यस
1: दोस्तों, इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है, ये भ्रांति है जो आज डॉक्टर साहब ने दूर की है। ब्रेस्ट फीडिंग एक बिल्कुल प्राकृतिक नियम है, एक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है, इसके अगेंस्ट जाना या इसको टाल देना या इसको नेग्लेक्ट करना उचित नहीं है। ये भी उन्हीं आदतों में जिसमें जिनमें डॉक्टर साहब ने थोड़ी दो चार आदतें बताई, जैसे ड्रिंकिंग या रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट, उन चीजों के बारे में बताया, उसी में एक ये प्रोसेस भी है। एक और सवाल दिमाग में आ रहा है, क्योंकि जब हम ब्रेस्ट कैंसर सुनते हैं या कोई भी महिला ब्रेस्ट कैंसर सुनती है और वो अगर पढ़ी लिखी है, तो उसके दिमाग में एक बात तो साफ साफ आती है कि सेल्फ चेक
0: जी।
1: और जाहिर सी बात है पहला तो पहचान या सिम्टम या महसूस तो उसी को होने वाला है, तो वो सेल्फ चेक करेगी
0: जी।
1: कई बार महिलाएं सेल्फ चेक करती ही नहीं या उन्हें पता ही नहीं कि सेल्फ चेक किया कैसे जाए
0: जी।
1: इसके बारे में डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप?
0: देखिए सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं पता
1: जी,
0: तो उनको पता ही नहीं कि कैंसर जैसी बीमारी ब्रेस्ट में भी हो सकती है। अब एक्चुअली जब कैंसर के बारे में नॉलेज पता होगा, फिर पता चलेगा कि कैंसर तब सबसे अच्छी तरह ठीक होता है अगर समय पे पकड़ा जाए।
1: बिल्कुल ठीक।
0: यानी कि बीमारी जब एक ही ऑर्गन में छोटी सी गांठ है तो 100% चांस है कि वो इलाज से बिल्कुल ठीक हो सकती है, तो अगर समय पे पकड़ी जाएगी तो 100% चांस है कि वो इलाज से बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो अगर समय पे पकड़ी जाएगी तो बीमारी ज्यादा फैलेगी नहीं, वापस आने का रिस्क कम हो जाएगा। और इसीलिए ये चीज जरूरी है कि हम समय समय पे कुछ ना कुछ चेकअप करते रहे। अच्छा, ब्रेस्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो बड़ा सुपरफिशियल सा ऑर्गन है, ये फेफड़े जैसा नहीं है, ये स्टमक जैसा नहीं है कि हम पैल्पेट करके टच नहीं कर सकते। सारी महिलाएं अगर ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन सीख लें, सर यूट्यूब पे आज अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं, सबको एसेसिबिलिटी है यूट्यूब की,

0: घर में देख सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर थोड़ा सा भी सेल्फ एग्जामिनेशन सीख ले और रेगुलरली अगर अपना ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कब 20 साल की उम्र से स्टार्ट कर दें, कितना फ्रीक्वेंटली करें, महीने में एक बार करें, कब करें, जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं ना उसके, जैसे कि पीरियड साइकिल 3 to 4 days के होते हैं, उससे 2-3 दिन के बाद, क्योंकि पीरियड्स के दौरान क्या होता है ना सर, ब्रेस्ट में इंगॉर्जमेंट आता है तो वैसे भी थोड़े फुलनेस आ जाती है, तो पीरियड्स के दौरान ना करें, उसके कम से कम 2-3 दिन के बाद। छोटी छोटी गांठें पकड़ में आ जाती है, 1 centimeter 1.5 centimeter की गांठें पकड़ में आ जाती है, वो आ जाते हैं हमारे पास, और भी बाकी चेंजेस पता चल जाते हैं, शेप एंड साइज में कोई चेंज है, निपल में कोई चेंज है, आर्मपिट में कोई चेंज है, तो ये चेंजेस लेके पेशेंट आ जाते हैं, हम टेस्ट करवाते हैं, कैंसर समय पे पकड़ा जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं।
1: बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, कैंसर को सुनते हैं या ब्रेस्ट कैंसर जैसे शब्द को सुनते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि हर 14 सेकंड में एक महिला को ये शब्द सुनने को मिल रहे हैं, इस पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर ये सेल्फ चेक जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, YouTube पर बहुत आराम से ये तरीके सेल्फ चेक के अवेलेबल हैं, हर महिला को जैसा डॉक्टर साहब ने बताया हर महीने पीरियड्स के 2-3 दिन के बाद अपने ब्रेस्ट चेक जरूर जरूर करने चाहिए 20 साल की उम्र के बाद। इसमें अब कोई सोशल स्टिग्मा नहीं रह गया है, ओपनली बात होती है, डिस्कशन होते हैं, तो इसमें कोई शर्म नहीं है, अपने आप को ठीक रखना हमारा सबसे पहला दायित्व है। तो अगर ये सेल्फ चेक करके कोई भी कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर पहली स्टेज में पकड़ में आ जाए, तो 10 में से 9 से ज्यादा महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी बहुत स्वस्थ जीवन गुजारती हैं, बिल्कुल आजाद। ये है वो बात जहां जो एस्टैब्लिश करती है कि हमें अब डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। जब किसी पेशेंट को या किसी भी महिला को ये कहा जाता है कि आपको कैंसर है, तो आप सबसे पहले उनसे क्या बात करती हैं, उनको उम्मीद देने के लिए, या हाउ डू यू काउंसिल, बिकॉज आपके लिए भी तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता होगा किसी कैंसर पेशेंट को डिक्लेयर करना।
0: सर देखिए, एक टर्म होता है पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप, दो तरह के पेशेंट्स आते हैं, एक होते हैं कि जिनको केवल गांठ पता चली बट अभी तक कैंसर की डायग्नोसिस नहीं है, तो कुछ गांठ पता चली और वो सीधे हमारे पास आ गए। अब इंडिया उन कंट्रीज में से है कि जहां पे पेशेंट को गांठ पता चलती है तो वो जनरल फिजिशियन पे जाने की बजाय वो ऑनकोलॉजिस्ट के पास आ सकता है। सर ये हमें रियलाइज नहीं होता कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां पे हमारे पास क्या पर्क्स है, बट इंडिया में ये चीज है, ये किसी और कंट्री में नहीं हो सकता। तो एक तो ये तरीके मरीज आते हैं कि हाँ गांठ पता चली, फिर मैंने कुछ तो हमें समझ में आ भी जाता है शुरुआती चेकअप्स पे कि ये कैंसर नहीं है, लेकिन हाँ जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें लगता है कि ये कैंसर हो सकता है। तो फिर एक इन्वेस्टिगेशन होती है, बायोप्सी FNAC बोलते हैं, कि निडल डाली, सैंपल लिया। यहाँ पे एक भ्रांति है, लोगों को लगता है निडल डालेंगे कैंसर की गांठ फूट जाएगी, जो कि सही नहीं है, ये बहुत सेफ प्रोसीजर होता है। तो जब निडल डालेंगे, सैंपल ले लेंगे, कोई चीरा फाड़ा का काम नहीं है, और वो डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन कर ली जाती है और पता चल जाता है कैंसर है या नहीं। अच्छा, अगर कैंसर है तो जब पेशेंट रिपोर्ट लेकर आते हैं ना, तो एक ये बात जरूरी है समझना कि उस समय हमारा सारा कंसंट्रेशन और फोकस सर उस पेशेंट पे होना है। मेरा फोन बज रहा है, मैं किसी और से बात कर रही हूँ, मैं किसी और से हंस रही हूँ, तो ये चीजें ना मुझे ये दिखाता है कि मैं बहुत कैजुअल हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझे अपना सारा फोकस अटेंशन उस पेशेंट के लिए देखना है, क्योंकि उस पेशेंट के लिए मैं क्या बोलने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। तो हम उस तरह का माहौल ओपीडी में हमें क्रिएट करना चाहिए, ये सारे डॉक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। सर हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम जो पेशेंट को बताने वाले हैं, हम क्या बोलने वाले हैं, हम किस तरह की काउंसलिंग करने वाले हैं, पेशेंट की सारी आगे की जर्नी उसी चीज से डिसाइड होगी। क्योंकि बहुत हद तक बीमारियों का रिजल्ट कैसा होगा, ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट कैसे होंगे, ये सब कुछ पेशेंट के एक मेंटल मेकअप पे भी डिपेंड करता है। और फर्स्ट स्टेप उसमें यही रहता है कि मैं जो फर्स्ट स्टेप पे उसको ये बताती हूँ कि उसको जो कैंसर की डायग्नोसिस है वो मैं उसे कैसे माहौल में बताती हूँ, वो मैं कितनी एम्पैथी के साथ बताती हूँ। एट द सेम टाइम मुझे उसमें उन्हें कॉन्फिडेंस भी इम्पार्ट करना है कि हाँ ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट की डिटेल्स क्या हो सकते हैं, ट्रीटमेंट के पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और मुझे ओपन कम्युनिकेशन रखना है, मुझे ये कॉन्फिडेंस देना है पेशेंट को कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे, आपको जितना टाइम चाहिए आपको वो मिलेगा।
1: बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। यहाँ पर एक साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ, एक मतलब एक नॉर्मल रूटीन मानसिकता से जुड़ा हुआ सवाल मेरे को दिमाग में आ रहा है। फर्ज कीजिए, ईश्वर ना करे कभी भी ऐसा हो, लेकिन फर्ज कीजिए आपको अपनी सिस्टर को या परम मित्र को, आपकी जो सहेली हो, उनको ये बताना हो कि ऐसा कुछ आपके साथ हो गया है,
0: सर एक्चुअली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है
1: जी.
0: तो मतलब कैंसर आजकल अनफॉर्चुनेटली इस कंट्री में इतना कॉमन हो गया है, नॉट जस्ट ब्रेस्ट कैंसर, कि नियर एंड डियर वंस पर भी मिल रहा है.
1: जी जी.
0: तो सर मैंने एक्चुअली वहीं से सीखा है.
1: ओके.
0: हाँ, कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर, और फिर वहीं से ये कंडीशनिंग डेवलप हुई है शायद, कि ये जो पेशेंट है इसको मुझे वही एम्पैथी देनी चाहिए जो मैं अपने नियर एंड डियर वंस को दूंगी. तो सर बिल्कुल जो वो स्टेप्स फॉलो करेंगे कि मुझे किसी अपने रिलेटिव को देना पड़े, क्लोज रिलेटिव, तो माय मैटरनल ग्रैंडमदर डाइड बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. तो इसलिए मुझे पता है कि बहुत ही एम्पैथी चाहिए होती है सर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमें हर ट्रीटमेंट में और हर न्यूज ब्रेक करते वक्त हमें ये सोचना होता है कि अगर ये मेरे किसी रिश्तेदार को होगा तो मैं क्या बोलूंगी, मैं क्या करूंगी.
1: जी, जी.
0: और कई बार पेशेंट भी ओपनली बोल देते हैं मैडम. कई बार होता है ना सर, आजकल लोग ओपिनियंस लेकर आते हैं, तो ये बड़ा कॉमन हो गया है कि आपके रिलेटिव में होगा, आपकी मदर को कैंसर हो जाएगा तो आप कैसे ट्रीट करेंगे.
1: अरे.
0: तो ये बड़ा कॉमन. तो इसलिए मुझे वो, तो देखिए सर, मुझे जो डिसीजन पे कॉन्फिडेंस होगा वो मैं इम्पार्ट करूंगी. तो मुझे भी ये क्लैरिटी चाहिए कि मुझे क्या करना है.
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. दोस्तों, हम मैं स्पेसिफिकली इस बात से थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूं. ये चीज मैं साफ साफ आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर प्रिया तिवारी मैम का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ही यही है कि कोई भी महिला जिसको इस तरह की बात कही गई हो कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, डॉक्टर तिवारी का उद्देश्य है कि वो महिला अकेली नहीं होगी. डॉक्टर तिवारी हर कदम पर, हर समय, हर मोमेंट उनके साथ होंगी. इमोशनली उनके ट्रीटमेंट करते समय डॉक्टर तिवारी की कोशिश है कि ऐसा ट्रीटमेंट मॉडल बनाया जाए जो सिर्फ उनके डिजीज को ट्रीट ना करे बल्कि उनकी पूरी लाइफ को संभाले. WHO भी कहता है डॉक्टर, कैंसर ट्रीटमेंट में क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर तो चलिए है ही है, लेकिन पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती रहे, वो उसको कभी ऐसा महसूस ना हो कि मैं कुछ अलग ही तरीके से बीमार हो गया. तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप?
0: सर देखिए, जब पेशेंट ओपीडी के कमरे में आता है ना, रूम में आता है, तो वो डॉक्टर को बड़ा एलियन समझते हैं, राइट सर? तो हमें ये हो गया कि एक तो बीमारी से फाइट करना है, डॉक्टर्स के साथ भी चैलेंजेस रहते हैं, मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, कुछ लोग डॉक्टर स्माइल नहीं करते.
1: हाँ.
0: तो जनरली ऐसा होता है कि पेशेंट एक पार्टी हो जाता है, बीमारी एक पार्टी हो जाती है, डॉक्टर एक पार्टी हो जाता है. तो हमें कहीं पेशेंट्स को ये समझाना है, हमें ये कॉन्फिडेंस देना है कि नहीं, पेशेंट एंड डॉक्टर आर वन टीम अगेंस्ट कैंसर.
1: करेक्ट,
0: इजंट इट सर? सो सबसे तो कॉन्फिडेंस हमें ये देना है. अच्छा, पेशेंट्स के ना सर कई बार कई इश्यूज होते हैं, बहुत स्पेशली फीमेल्स में बड़ा कॉमन है, गिल्ट बहुत कॉमन होता है.
1: जी जी जी.
0: है ना, कि मैंने शायद कुछ गलत किया है जिसकी वजह से मुझे कैंसर हो गया है. देखिए, फीमेल्स की ऐसी अपब्रिंगिंग होती है ना सर इंडिया में, कि उनको ये सिखाया जाता है कि आपको लोगों की देखभाल करनी है ना, यू हैव टू बिकम केयर टेकर फॉर एवरीबॉडी.
1: करेक्ट.
0: तो जब कैंसर होता है तो उनको लगता है कि नाउ दे आर समबडी एल्स हैज टू टेक देयर केयर, तो उसमें काफी लोग अफेक्टेड हो रहे हैं. तो फीमेल्स को ये बात भी बड़ा परेशान करती है. तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो फीमेल्स के दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं. मैंने ये बात रियलाइज किया है कि कई बार ना सर एक काउंसलिंग बहुत हेल्प करती है. तो आजकल स्पेशली हर अच्छे हॉस्पिटल्स में ना एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट भी आ गए हैं. तो जो केयर गिवर्स होते हैं और जो पेशेंट होते हैं उनको तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि कुछ ना कुछ काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे जो दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं उनमें काफी क्लैरिटी मिल जाती है.
1: तो सब यूं समझ लीजिए आपने मेरे सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे दिया. बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज का. मेरे दिमाग में दो सवाल आ रहे थे. एक तो आपने सही कहा कि महिलाओं को ऐसा लगने लगता है कि हमारी कोई गलती हो गई, ब्रेस्ट कैंसर हो गया हमें, तो हमने कुछ गलत कर दिया, हमारा दोष है. तो एक तो उनको इस साइकोलॉजी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, चाहे वो हेरिडिटरी ही क्यों ना हो, आपकी कोई गलती नहीं है. और किसी भी दूसरी बीमारी की तरह के आप एक पेशेंट है और उसको ठीक किया जा सकता है. इसका जवाब आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिया. दूसरा सवाल जो आप ये जवाब देते देते मेरे दिमाग में आया था, उनके परिवार वाले. अब हम इतना तो ग्रो कर ही गए हैं एक समाज के तौर पर कि हम समझने लगे हैं, हम भी आगे बढ़कर उन महिलाओं की मदद करना चाहते हैं, उनकी केयर करना चाहते हैं. लेकिन दोस्त हुए, परिवार वाले हुए, बेटे हुए, पति हुए, उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं समझ में आता कि हम मदद करें कैसे. एक तो वो भी कॉन्शियस रहती हैं कि हम मदद लें कैसे, और हम कॉन्शियस रहते हैं कि हम मदद करें कैसे. तो क्या करना चाहिए, मतलब जो केयर गिवर्स आपने बताया
0: जी,
1: उन्हें क्या करना चाहिए?
0: सो देखिए, हर इंसान के अंदर ना एक बेसिक समझदारी होती है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल यहीं पे आप पड़ता है जो एग्जामिनेशन होता है उस समझदारी का ना सर
1: जी।
0: अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। सपोज करिए किसी को कैंसर की डायग्नोसिस बनी है ना, तो क्या होता है ना रिश्तेदार आके ना ढेर सारी सलाहें देने लगते हैं
1: जी,
0: ये मत खाओ, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, इससे मत मिलो, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं पेशेंट्स।
1: बिल्कुल ठीक।
0: तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सलाहों से बचे।
1: ओके
0: हाँ, क्या जरूरी होता है, देखिए पेशेंट के दिमाग में 100 चीजें चल रही होती हैं, पेशेंट को सुने।
1: बिल्कुल ठीक।
0: हाँ, सो अब पेशेंट हियरिंग लिसनिंग इसको कहते हैं ना, कि शांति से ना आप सुने मरीज क्या कह रहा है। देखिए फैमिली मेंबर्स के दिमाग में भी 100 चीजें चल रही हैं, तो सबसे बड़ी चीज है ना कि सुनने वाले लोग चाहिए, सलाह देने वाले नहीं।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो अपना सब देखिए, सबको हमें हमें आपको हम कैंसर हो चाहे ना हो, सब हम एक सपोर्ट सिस्टम के साथ काम करते हैं। तो कैंसर जिस व्यक्ति को हो उसको ये देखना है कि उसको अपने सपोर्ट सिस्टम में कैसे लोग चाहिए
1: जी।
0: तो मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग रखें कि जो आपको सलाहें ना दें, जो समझदार हो और जो कहने से ज्यादा आपकी सुने, वो सबसे जरूरी चीज है। अच्छा, ऐसे भी लोग मिल जाते हैं कि आप तुमने तो ये गलती की होगी इसलिए हो गया है ना, तो बहुत सारे लोगों से बचे भी है ना।
1: बिल्कुल,
0: ये समय देखिए रिश्ते निभाने का नहीं है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है।
1: बिल्कुल ठीक
0: है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो हमारी प्रायोरिटीज भी काफी चेंज हो जाती हैं, तो प्रायोरिटीज चेंज करिए, वो जरूरी है, उसके लिए भी आपको अपराध बोध की जरूरत नहीं। तो ऐसा सिस्टम बना के चलेंगे सर।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है कि अब जैसे कि हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ खासतौर पर प्रॉब्लम है कि वो खाना नहीं बना पा रही, हो सकता है सब्जियां लाने का काम नहीं है, तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि हाँ ऐसे समय लोगों की और सहायता ले। अब ना लोगों के साथ ये होता है कि नहीं सब कुछ मुझे ही करना है, बीमारी हो तभी भी हम ही करेंगे, तो ये चीज समझनी है कि नहीं, इफ यू आर नॉट वेल ओके रेस्ट, हेल्प एक्सेप्ट करना भी, इट्स ओके टू एक्सेप्ट द हेल्प।
1: इट्स एब्सोल्युटली ओके।
0: यस
1: डॉक्टर साहब, आपकी इस बात से मुझे दो चीजें जो पकड़ में आई है, सुनना एक बहुत बड़ी आर्ट है। मैं किसी एक सिंगर म्यूजिक टीचर से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि साहब आप अपने जो शिष्य हैं, अपने स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या एक टीचिंग देते हो, इम्पोर्टेंट टीचिंग। तो उन्होंने बोला कि मैं उनको बोलता हूं तानसेन बनने से पहले कानसेन बनना सीखो।
0: सही,
1: मतलब पहले सुनना सीखो बाद में गाना। सो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। दोस्त भी देखा जाए डॉक्टर साहब तो वही अच्छा है जो सुने आपको।
0: yes.
1: सुनने वाले ही नहीं है, हमें अपनी ही बात कहते रहने में मजा आता है। दिस इज नंबर वन।
0: यस।
1: दूसरा बात जो आपने बहुत बढ़िया कही, बहुत सारे लोग सलाह देने आएंगे।
0: यस। yes.
1: आपको भी पता होगा कि कौन लोग, मुझे माफ कीजिएगा ये शब्द यूज करने के लिए, टॉक्सिक है, उनसे बात मत कीजिए, क्योंकि वो ऐसी सलाहें देंगे या आपको दोष ठहराएंगे कि आपने कुछ गलत कर दिया है, उसी वजह से ऐसा हो गया।
0: यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी आपको।
1: प्लीज।
0: एक पेशेंट थे, उनको उनकी ना कैंसर की बीमारी दोबारा वापस आ गई, तो उनके घर में 2 रिलेटिव्स आए और उनसे पूछते हैं, हाँ तो अभी कितना समय बचा है, हाउ मच टाइम यू हैव लेफ्ट। आई मीन बहुत इनसेंसिटिव कमेंट,
1: बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव।
0: अब लोगों को लगता है कि शायद वो भला सोच रहे हैं, बट बहुत ही इनसेंसिटिव कमेंट था ये।
1: ऑफ कोर्स मतलब बहुत ही, इफ एट ऑल आई एम परमिटेड टू से, स्टूपिड क्वेश्चन था ये कि जी कितना समय बचा है। ये आपने सही कहा, बहुत इनसेंसिटिव है ये मामला। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगर ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें,
0: यस,
1: तो इन पिछले 5 सालों में ऐसे क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं जिससे हम थोड़ा उनके बारे में बताइए, जिससे हम बिल्कुल फील कर सके नाउ वी आर सेफ।
0: सर देखिए, डेवलपमेंट ना बहुत सारे लेवल्स पे हुआ है। एक इंडिया में अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो जो सुविधाएं, जो फैसिलिटीज केवल Tier 1 cities में उपलब्ध थी, अब छोटे छोटे शहरों में भी उपलब्ध है। पहले क्या थी ना कि हेल्थ फैसिलिटीज एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड थी, बीमारी के इलाज के लिए हमेशा लोग भाग भाग के छोटे शहरों से बड़े शहरों में आते,
1: दिल्ली बॉम्बे।
0: यस। लेकिन अब छोटे छोटे शहरों में भी कैंसर जैसी बीमारी का अच्छा इलाज उपलब्ध है, मशीनें उपलब्ध है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, रेडिएशन की मशीनें, तो ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, कैंसर में ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, एक होता है सर्जरी। पहले क्या करते थे ना कि ब्रेस्ट पूरा रिमूव कर देते थे कि कैंसर है, रूट्स हैं, वापस आ जाएगी बीमारी, पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर दो। लेकिन आज हमें ये पता चलता है कि कैंसर जैसी बीमारी में भी वी नो कि कहाँ पे हमें बहुत रेडिकल होने की जरूरत नहीं है, वेयर लेस इज एनफ। तो कहाँ केवल ब्रेस्ट की गार्ड निकाल के ट्रीटमेंट हो सकता है, पूरा ब्रेस्ट नहीं रिमूव करना। अच्छा, कीमोथेरेपी से लोगों को बहुत डर लगता था।
1: जी जी जी।
0: सबसे बड़ा रिस्क जो फिल्मों में दिखाते हैं कि कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई और सारे बाल गिर गए।
1: हाँ।
0: तो थोड़ा ड्रामेटिक चीजें हैं, हर कीमोथेरेपी से हेयर लॉस नहीं होता है, लेकिन हाँ आजकल कूल कैप करके डिवाइसेस आ गई हैं
1: जी,
0: जिससे हेयर लॉस भी कम हो गया है। पहले लोगों को लगता था कि कीमोथेरेपी करेंगे तो बड़ा पेनफुल होगा, बड़ा वॉमिटिंग होती रहेगी, बहुत अनप्लेजेंट जर्नी हो जाएगी, बट सपोर्टिव केयर बहुत इंप्रूव कर गया है
1: जी।
0: इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं कि नोजिया वॉमिटिंग ना के बराबर होता है,

0: दूसरे साइड इफेक्ट्स को भी फाइट करने की अच्छी मेडिसिन है। कुछ और तरीके के भी डेवलपमेंट्स हैं, एक है इम्यूनोथेरेपी। एक देखिए, हर कैंसर सेम नहीं होता, हर पेशेंट सेम नहीं होता। ब्रेस्ट कैंसर एक होता है, एक सब टाइप होता है जिसको हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, जो सबसे एग्रेसिव कैंसर होता है। उसमें इम्यूनोथेरेपी का इलाज बड़ा अच्छा कारगर काम कर रहा है, स्पेशली अगर किसी को ऑपरेशन, देखिए कैंसर की गांठ अगर एक ही जगह है तो हम ऑपरेशन करवा देते हैं, राइट। पर कई बार देखते हैं बीमारी उसके बाद वापस आ गई। अच्छा, वापस क्यों आती है? क्योंकि कैंसर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड में जाने की टेंडेंसी,
1: कहीं और चला गया वो,
0: हाँ, वहां से वो वापस आता है। तो इसलिए आजकल कॉन्सेप्ट ये है कि कैंसर की सर्जरी से पहले ही कुछ इलाज कर दिया जाए, ताकि जो ब्लड में सेल्स है वो कम हो जाए, ब्लड की सफाई कर दी जाए। तो लोग सर्जरी से पहले कीमोथेरेपीज देते हैं,
1: ड्यूबल की,
0: हाँ जी। और आजकल इम्यूनोथेरेपी करके एक इलाज आया है। इम्यूनोथेरेपी एक अलग तरह की दवाइयां होती हैं, ये कीमोथेरेपी वाली दवाइयां नहीं है। अब लोगों को सुन के आश्चर्य लगे कि आपका जो बॉडी का इम्यूनिटी होता है ये केवल इन्फेक्शन से नहीं, कैंसर से भी फाइट करता है।
1: जी हाँ, बिल्कुल
0: जी। तो इसी प्रिंसिपल को यूज करके कुछ स्पेशल तरह की मेडिसिन बनाई गई हैं, जो एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, जो कि कैंसर का खात्मा करती हैं। और ये देने से फिर ये इम्यूनोथेरेपी दे दी, सर्जरी करा दिया, जो बचा हुआ ट्रीटमेंट है वो कर लिया, तो कैंसर वापस आने का जो रिस्क है वो काफी कम हो जाता है। तो इम्यूनोथेरेपी बहुत अच्छा हो गया है, सपोर्टिव केयर इंप्रूव कर गया है, सर्जिकल टेक्निक्स इंप्रूव कर गई है, रेडिएशन की मशीनें। अब रेडिएशन क्या होता है? कैंसर्स में क्या होता है सर, रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं। अब कोई पेशेंट आया, पूछा सर्जरी तो करा ली, आगे रेडिएशन क्यों कराना? कैंसर में ना जड़ें होती हैं जिससे वापस ग्रो करता है, तो इसलिए ना हम रेडिएशन यानी कि लेजर्स यानी रेस का इस्तेमाल करते हैं उन जड़ों को जलाने के लिए। तो आजकल लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट रेडिएशन मशीन्स आ गई हैं, जिनमें प्रिसीजन बड़ा अच्छा होता है कि जो सराउंडिंग टिश्यूज को जो साइड इफेक्ट होने वाला होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो कम से कम हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे नए नए डेवलपमेंट्स आए हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट में पेशेंट्स को काफी हेल्प कर रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया। मैं ये सवाल मेरे दिमाग में उठ ही रहा था जब आप ये बात बता रही थी कि कैंसर से ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड बड़ी सारी भ्रांतियां, बड़े सारे डर, बड़े सारे कंफ्यूजन पूरे समाज में है, क्योंकि गूगल पेशेंट बहुत हो गया है आजकल। ये एक टर्म मेरे को किसी एक डॉक्टर साहब ने बोला,
0: गूगल पेशेंट गूगल डॉक्टर
1: जी। वो खुद भी डॉक्टर बन जाते हैं
0: जी।
1: आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, सपोर्टिव थेरेपी आ चुकी है, टारगेटेड थेरेपीज आ चुकी हैं, इम्यूनोथेरेपी आ चुकी है, जिनसे कम से कम आपकी बात से ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये भ्रांतियां अब बिल्कुल बेकार हैं, इनका कोई मूल नहीं है, इनका कोई बेस नहीं है। वी आर एब्सोल्युटली सेफ, आपके हाथों में, आपके एक्सपर्टाइज, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हाथों में हम बिल्कुल सेफ हैं। प्लीज सेफ, आपके हाथों में, आपके एक्सपर्टाइज, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हाथों में हम बिल्कुल सेफ हैं। अब इस तरीके की जो साइड इफेक्ट्स हुआ करते थे ट्रीटमेंट के, वो अब नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, जो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपके बहुत काम आएगा। डॉक्टर साहब, हम लोग ने ट्रीटमेंट की बात कर ली, हम लोग ने एडवांसमेंट्स की बात कर ली, हमने भ्रांतियों के बारे में बात कर ली, हमने डर के बारे में बात कर ली, हमने सेल्फ चेकअप की भी बात कर ली। फर्ज कीजिए कोई भी एक महिला है इस प्रोग्राम को सुनने के बाद, वो ये डिसाइड करे कि चलो लेट मी चेक माई सेल्फ, लेट मी एस्टैब्लिश अ रूटीन कि जी मैं ऐसा ऐसा करूंगी अब अपने स्वास्थ्य के लिए। एक मॉडल दीजिए
0: जी,
1: अगले एक हफ्ते में कोई भी महिला ऐसा क्या करे अपने हेल्थ के लिए, अपनी ब्रेस्ट हेल्थ के लिए?
0: बहुत अच्छा सवाल है सर। तो देखिए, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन तो हमने डिस्कस कर ही लिया, मेमोग्राम जरूरी है
1: जी। ओके,
0: मेमोग्राम एक ऐसी जांच है, सिंपल वर्ड में बोले तो एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट। मेमोग्राम, अगर किसी महिला की उम्र 40 साल से ज्यादा है तो मेमोग्राम एक ऐसी जांच है जिसका डेटा आया है कि स्क्रीनिंग मेथड है कि अगर 1 से 2 साल में एक बार मेमोग्राम करवाते हैं तो उससे ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क में कमी होती है, ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली डेथ्स में कमी होती है। क्योंकि देखिए, आपने सेल्फ एग्जामिनेशन कर लिया, छोटी छोटी गांठें पकड़ में आती है, बट फिंगर्स की भी कुछ सेंसिटिविटी होती है, कुछ लिमिटेशंस होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मेमोग्राम छोटे से छोटे 0.2 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर की गांठ को भी पकड़ सकती है। एक आपको फिगर देती हूँ, ब्रेस्ट कैंसर अगर अमेरिका में हुआ तो 8 महिलाओं में से 7 महिलाएं बिल्कुल ठीक हो जाती है।
1: बहुत बढ़िया।
0: हाँ, चाइना में से 5 में से 4 ठीक हो जाती है, इंडिया में से बस 2 में से 1। 50% यस, ओनली बिकॉज स्क्रीनिंग नहीं होती हमारे यहाँ।
1: ओह गॉड।
0: तो देखिए, लाइफ स्टाइल मैंने आपको बताया, मैंने बताया आपको एक्सरसाइज की अहमियत बताई, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल अवॉइड करिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है ये देखिए,

0: लेकिन मेमोग्राम बहुत जरूरी है
1: जी,
0: और कुछ नहीं तो अगर मेमोग्राम ही कर रहे हैं तो कैंसर छोटी सी गांठ में ही पता चल जाए, तो देखिए जितनी कम बीमारी उतना कम इलाज।
1: बहुत बढ़िया, ये इस बात से मुझे दो चीजें पकड़ में आ रही हैं जो मैं खुद की लर्निंग के हिसाब से आ रही है, मैं भी पारिवारिक इंसान हूँ
0: जी,
1: दो चीजें समझ में आ रही है, एक तो सेल्फ चेकअप, दूसरा मेमोग्राम।
0: यस
1: दोस्तों एक बार मैं गौर से बोलना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने अभी बोला मैमोग्राम 40 साल की उम्र की से ज्यादा की महिलाओं में थोड़ा ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब 40 साल की उम्र से कम की भी महिलाओं में ये रिकमेंडेड है अगर कोई गांठ पकड़ में आ जाए तो?
0: उन्हीं लोगों में रिकमेंडेड है सर। देखिए स्क्रीनिंग तब कहते हैं जब कोई सिम्टम नहीं है, मतलब आपने सेल्फ एग्जामिनेशन कर लिया और आपको कोई गांठ नहीं मिली।
1: करेक्ट।
0: अच्छा 40 साल से कम में तभी रिकमेंडेशन है अगर फैमिली में किसी को कैंसर से, या आपको कुछ हेरिडिटरी कैंसर, जो हम आनुवंशिक कैंसर की बात करते हैं
1: जी,
0: उसमें, तो फिर ये डिसाइड करते हैं कि कब मेमोग्राम शुरू करना है कि उस इंसान में बाकी लोगों को कब कैंसर हुए हैं।
1: ओके, ये भी दोस्तों बात सीखने की है कि डरिए मत, जस्ट इन केस हमारी फैमिली हिस्ट्री में कहीं पर इस तरीके का कैंसर हुआ हो हमारी माँ को, दादी जी को, परदादी जी को, किसी को भी, तो अवेयर रहें और एक बार मैमोग्राम को कंसिडर जरूर करें। डॉक्टर साहब मैं एक चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि जस्ट इन केस कोई महिला, कोई यंग लेडी ये डिसाइड करे कि चलिए जैसा अभी इस प्रोग्राम के तहत कहा गया, डॉक्टर साहब ने समझाया है, तो चलिए मैं एक मेमोग्राम करा लेती हूँ, तो क्या वो एक फिजिशियन से इस बारे में बात करें या वो सीधे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आए?
0: देखिए महिला तो मेमोग्राम खुद भी जाके करवा सकते हैं
1: जी जी,
0: है ना, आपको किसी फिजिशियन से भी मिलने की जरूरत नहीं है।
1: ओके,
0: लेकिन हाँ तो आप फिजिशियन से मिलकर भी करवा सकते हैं, आप ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलकर करवा सकते हैं, आपको जिसका सबसे पहले अपॉइंटमेंट मिल जाए।
1: ओके,
0: गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर करवा सकते हैं।
1: नाइस, वेरी नाइस। डॉक्टर साहब क्यों मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि ठीक है महिलाएं जो है वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से हमेशा से जुड़ी रहती हैं, वो उनके फैमिली डॉक्टर हो जाते हैं, फ्रेंड्स हो जाते हैं, तो शायद वो उनसे खुलकर बात कर पाएंगे कि डॉक्टर साहब मैं एक मेमोग्राम कराना चाहती हूँ, करवा दीजिए प्लीज। तो ऐसा तो नहीं होना कि वो गायनेकोलॉजिस्ट कहती क्यों तुमको मेमोग्राम क्यों कराना है, तुम ऐसा करो ये ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल लो, वहां ऐसा ना हो कि उस महिला के मन में डर बैठ जाए।
0: देखिए सर डरना तो कभी नहीं चाहिए
1: जी,
0: सबसे जरूरी चीज तो ये समझनी है कि कैंसर है तब भी क्या आपको डरना चाहिए।
1: जी जी,
0: तो सारा डिस्कशन तो यही है कि कैंसर हो तभी भी नहीं डरना चाहिए। तो अगर कोई ये कह रहा है कि शायद कैंसर हो सकता है, वहां तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमें यही कॉन्फिडेंस तो देना है पब्लिक को कि ट्रीटमेंट है, इलाज है।
1: करेक्ट,
0: इलाज के साइड इफेक्ट्स का भी इलाज है। देखिए इन्वेस्टिगेशंस बड़ी सिंपल हैं, मेमोग्राम हो गया, एमआरआई हो गया, ये कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट करवा सकते हैं। तो यूजुअली देखिए आजकल सिस्टम ये हो गया है कि जब पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ टेस्ट, क्योंकि इजिली अवेलेबल है, सिंपल टेस्ट है, आराम से करवा देते हैं और उसके बाद फिर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। देखिए सर कई बार डॉक्टर्स के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और प्रॉब्लम ये होता है कि उनको शायद हमारे मेडिकल एजुकेशन में ना सर ये ट्रेनिंग ही नहीं है कि हाउ टू ब्रेक अ न्यूज, ये फॉल्ट है, ये है सर, ये फ्लॉ है, हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है बट बहुत सारी चीजें, हाँ ये सॉफ्ट स्किल्स नहीं सिखाते, तो कई बार लगता है कि नहीं लेट समबडी एल्स डू द टास्क, तो वो कहते हैं कि चलो शायद इसमें कैंसर लग रहा है बट लेट द ऑन्कोलॉजिस्ट टेल देम।
1: अच्छा जी,
0: हाँ सर, तो ये बात भी है
1: कि मेरे को नहीं पता उनसे पूछ,
0: तो ये चीज भी है, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे मेमोग्राम की मैं बात कर रही हूँ, मेमोग्राम कई बार बहुत क्लियर कट बता सकता है कि ये शायद कुछ बिनाइन सी लंप है, नहीं पर ये शायद कैंसर वाली लंप है। तो जब वो मेमोग्राम की रिपोर्ट देखते हैं तो अब आइडियली तो मैंने ये बताया कि बायोप्सी करवा लो, पर वो बायोप्सी करवाए बिना फिर हमारे पास भेज देते हैं।
1: ओके,
0: है ना, फिर हम बायोप्सी करवा देते हैं, हम बताते हैं कि हाँ इसमें कैंसर का चांस लग रहा है, लेकिन जब तक बायोप्सी नहीं होगी तब तक 100% कंफर्मेशन नहीं आएगा, तो वहां पे रिपोर्ट्स करेंगे और अगर लगता है कैंसर है तो फिर जैसा हमने स्टार्ट किया कि हाँ कैसे बताना है, कैसे
1: बात करनी है। बहुत बढ़िया दोस्तों एक और चीज की मैं यहाँ पर क्लैरिटी देना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने अभी एक टर्म यूज किया, थोड़ी देर पहले भी यूज किया था, एफएनएसी एंड बायोप्सी, इसके इन दो टर्म्स को लेकर भी जबरदस्त भ्रांतियां हैं। जैसे आपने कहा कि अगर एफएनएसी करेंगे तो वो फूट जाएगा, बढ़ जाएगा और डेवलप हो जाएगा, ये भ्रांतियां हैं, जबकि मैं यहां पर क्लैरिटी देना चाहूंगा कि एफएनएसी मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन, मतलब फाइन नीडल मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि जैसे इंजेक्शन भी थोड़ी सी चुभन देता है, लेकिन एफएनएसी में वो भी नहीं है, ये बिल्कुल आसान है और बिल्कुल सेफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें निकल के आई हैं, एफएनएसी एंड मैमोग्राफी, ये दोनों टेस्ट ऑलमोस्ट कंक्लूसिव हैं
0: जी,
1: पता चल जाएगा
0: जी
1: है या नहीं, उसके बाद कहा जाता है ना डर के आगे ही जीत है, तो डर को मारने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है
0: जी।
1: लेकिन वो चीज हमें एक चैलेंज देती है, जिंदगी है बहुत मुश्किल से मिली है और हमें लड़ना है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ सवाल जल्दी जल्दी से पूछना चाहूंगा, कोई भी एक ऐसी भ्रांति के बारे में बताइए जो आप बहुत रेगुलर सुनती हो।
0: रेगुलरली तो सबसे ज्यादा बायोप्सी है, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग भ्रांति बताती हूँ।
1: प्लीज डू।
0: हम ना विलेजेस में कैंप्स के लिए जाते हैं
1: जी,
0: तो वहां पे ना लेडीज का एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, वो ना ब्लाउज में पर्स रखती हैं। आपने भी देखा होगा
1: जी, जी,
0: उनको लगता
1: जी,
0: है पर्स रखने की वजह से कैंसर होता है। आजकल ये हम बहुत सुन रहे हैं कि ब्लाउज में पर्स रखा था उससे तो कैंसर नहीं होता, उससे तो कैंसर नहीं होता। लेकिन हाँ, बाकी तो सबसे ज्यादा कॉमन तो यही है कि सर नेडल डालेंगे और कहीं कैंसर फूट ना जाए। और दूसरा सबसे ज्यादा लोगों को फिर ये भी स्टिग्मा है कि उस घर में शादी नहीं करेंगे क्योंकि कैंसर है, कैंसर डेथ सेंटेंस है। तो ये तो बहुत ही कॉमन ये है प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है कि कैंसर हो गया तो इसका मतलब जान गई।
1: सबसे असरदार असर क्या उठा सकती हैं महिलाएं इस पूरी की पूरी स्टिग्मा से लड़ने के लिए, इस भ्रांति से लड़ने के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए?
0: ओपन डिस्कशन सर, बातचीत जरूरी है।
1: बहुत बढ़िया।
0: सबसे बड़ी चीज देखिए यही है ना, बातचीत ही नहीं होती है। आप वर्क प्लेसेस पे बात करो, हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे तो कोई और नहीं बनाएगा। आपको हेल्थ में प्रॉब्लम्स हैं तो एक दूसरे से बात करनी चाहिए, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है तो बात करनी चाहिए, हर प्रॉब्लम निगलेक्ट नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल ठीक है। बहुत प्यारी बात कही डॉक्टर साहब आपने।
0: और मैमोग्राम तो है ही
1: जी,
0: सेल्फ एग्जामिनेशन एंड मैमोग्राम।
1: अगर हम अपने आप को आज मॉडर्नाइज कहते हैं, प्रगतिवादी कहते हैं, प्रगतिशील कहते हैं, ठीक है, एक अच्छा सा टर्म यूज करते हैं, समझदार कहते हैं, अगर हम अपने आप को समझदार कहते हैं तो फिर इन चीजों के बारे में खुलकर बात क्यों नहीं करते? हमारा चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, इस बारे में खुल के बात होनी चाहिए। इसके बारे में बात ना करके हम अपने आप को और मुसीबत की ही तरफ लेके जा रहे हैं। हमें कुछ तकलीफ हो जाती है, फिर चाहे वो कैंसर से रिलेटेड हो या किसी और बीमारी से, हम आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं तो कोई ना कोई कुछ कह ही देता कि भाई फला डॉक्टर साहब से मिल लो, देखो मेरी बात मत मानो या किसी और की बात मत मानो, एंटीबायोटिक्स अपने आप ना शुरू करो वगैरह वगैरह।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, पूरे समाज के लिए
0: जी,
1: ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड
0: जी,
1: एक शब्द कहिए।
0: ब्रेस्ट कैंसर का निदान संभव है।
1: क्या बात,
0: सबसे जरूरी बात है सर।
1: बहुत बढ़िया। सो सॉल्यूशन इज हेयर, निदान संभव है दोस्तों। बस अब हमें घबराना बंद करना होगा, डर के आगे जीत है। आगे आइए, सेल्फ एग्जामिनेशन करिए, डॉक्टर्स के साथ जाके मिलिए,
0: बातचीत कीजिए,
1: उसको नेगलेक्ट तो बिल्कुल ना करें। कुछ भी चेंजेस आते हैं तुरंत अपना चेकअप कराइए और डॉक्टर्स के पास जाइए। डॉक्टर तिवारी मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ओपन डिस्कशन हुआ, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे सुनेंगे उन्हें बहुत सारी भ्रांतियों से अब छुटकारा मिलना चाहिए। मुझे ये भी उम्मीद है कि जो भी पेशेंट्स या जो भी लोग आपसे मिलकर और जानकारी लेना चाहेंगे वो आपसे जरूर मिल पाएंगे। डॉक्टर तिवारी मैम आर्टिमस हॉस्पिटल गुरुग्राम में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, बहुत आराम से एक्सेसिबल है, आप चाहें उनसे जाके मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनके पास पूरी टीम है, वो विशेषज्ञ है, कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं, वो जानती हैं कि वो क्या कर रही हैं। डॉक्टर तिवारी मैम थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: आपड़ा झाबुआ ना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो 10 केबल 90.8 FM।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील
1: रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM
2: से आरजे भावना आपण हंगळा भाईयोनु घरू घरू स्वागत करिए से आपरा झाबुआना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्याविल 90.8

0: આપણ હંગલા ભાઈઓનો ઘણું ઘણું સ્વાગત કરીએ છે આપણા ઝાબુઆના સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટાવેલ 90.8 FM ઝાબુઆની આવાજ પર.
1: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है. आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें. दोस्तों मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी बहुत कुछ सिखाएंगी. तो लीजिए सुनिए. आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं. मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे. अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी. महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे. तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी. उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका. मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए. इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे. मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर. और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए. लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है. मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए. उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं. लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे. दोस्तों इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं. वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया. मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग. लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं. मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर.
2: दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं. एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं. तब तक ये गीत सुनिए.

0: आओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें।
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं विनोद भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ, कहीं का उल्लू का पट्टा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहे डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं। टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये दुस्साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, हे मेरे, कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त न रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं। लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: 1992 से लेकर 1993 यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है अनिल कपूर। बेहद ही हंसमुख और हमेशा ही जवान दिखने वाले अनिल कपूर बेहद पॉपुलर एक्टर हैं बॉलीवुड के। तो लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अनिल कपूर जी एक पंजाबी हिंदू फैमिली में 24 दिसंबर 1956 को जन्मे थे और तब से लेकर आज तक बस हम सभी का मनोरंजन करते ही जा रहे हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: डार्लिंग, तुम हर वीक गाड़ी चेंज करता, क्या गाड़ी के साथ साथ लड़की भी बदलता?
1: ऐसा न कहो मेरे

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: यार तुम्हारा कुत्ता तो टाइगर जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो तुम इसको? बंदा ने कहा, अरे भाई ये टाइगर ही है, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है।
2: उन्नीस सौ अस्सी के दशक में ढेर सारी फिल्में की अनिल कपूर ने और हम सभी का भरपूर मनोरंजन किया अपने चुलबुले अंदाज में। लीजिए हो जाए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? अनिल कपूर जी ने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिसमें बधाई हो बधाई, माई वाइफ्स मर्डर, गांधी, माई फादर जैसी फिल्में आती हैं।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। एक बार एक सब्जी वाला सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था, छिड़कता जा रहा था। काफी देर हो गई तो ग्राहक ने गुस्से से बोला, सुनो, अब अगर भिंडी होश में आ गई हो तो 1 किलो तौल दो।

अनिल कपूर जी थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, जैसे उनकी बॉलीवुड कॉमेडी चमेली की शादी में उन्होंने थोड़ा सा गाया भी था। तो लीजिए पेश खिदमत है उनकी ही फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

0: दोस्तों, आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों, लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम। गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो शायर हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हैं, उनका नाम है मजहर कुरेशी मजहर साहब। तो बाकी की बातचीत हम मजहर साहब से ही करेंगे और उनके कलाम सुनेंगे। मजहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए।
1: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया।
0: मजहर साहब, प्रोग्राम को शुरू करते हुए सबसे पहले बस मैं इतनी सी गुजारिश करूंगा कि ये बताएं कि आप अभी कहाँ रहते हैं, उस जगह के बारे में थोड़ा सा, और आप क्या करते हैं मजहर साहब, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
1: मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूं।
0: जी,
1: मैं रिटायर्ड हूं, कोल इंडिया लिमिटेड में मैं डिप्टी जनरल मैनेजर था और मैं वहां से रिटायर होकर के नागपुर में आके बसा हूँ। रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के एजुकेशन और सारी चीजों की सहूलियत को देखते हुए मैं यहाँ आकर के बसा हूँ। तो 15 साल से मैं नागपुर में ही रह रहा हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे जानने वालों को ये मालूम पड़ा कि मजहर साहब कहाँ रहते हैं, वो क्या करते थे, और अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी गजल हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए सुनाए।
1: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जहां तक कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा हट के गजल लिखूं, थोड़ा अलग मौजू में चुनता हूं, तो देखिए आपके श्रोताओं को और आपको उम्मीद है बहुत पसंद आएगा। अर्ज करता हूं कि फूलों की डाली सा तेरा बल खाना तो बनता है। अब इसकी रदीफ आप देखिए, बड़ा अलग तरह की रदीफ है कि फूलों की डाली सा तेरा बल खाना तो बनता है, उसने मुजस्सम बेशक तेरा शर्माना तो बनता है। फिर से अर्ज करता हूं, मतलब कि फूलों की डाली से तेरा बल खाना तो बनता है, हुस्ने मुजस्सम बेशक तेरा इतराना तो बनता है। शेर देखिएगा कि एक सरापा हुस्न खड़ा है जलवा घर मेरे आगे, एक सरापा हुस्न खड़ा है जलवा घर मेरे आगे, उस पर 100-100 जान से यारो मर जाना तो बनता है।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब,
1: बहुत शुक्रिया आदाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब ये शेर देखिएगा इसे कि पहली पहली बार मिले हैं हम दोनों तन्हाई में, पहली पहली बार मिले हैं हम दोनों तन्हाई में, ऐसी सिचुएशन में उनका घबराना तो बनता है।
0: वाह, क्या कहा है, क्या कहा है, बहुत खूब, बहुत खूब कहा।
1: पहली पहली बार मिले हैं हम दोनों तन्हाई में, ऐसी सिचुएशन में उनका घबराना तो बनता है। और ये देखिएगा कि घबराए से शर्माए से दूर दूर क्यों बैठे हो, घबराए से शर्माए से दूर दूर क्यों बैठे हो, वसल की शब में एक दूजे के पास तो आना बनता है।
0: बहुत खूब,
1: वसल की शब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वसल की शब में एक दूजे के पास तो आना बनता है। ये फिर देखें कि अब्र में जाकर छुप जाता है बाम पे जब वो आते हैं, वो जब छत पे आते हैं
0: जी,
1: अब्र में जाकर छुप जाता है बाम पे जब वो आते हैं, चांद का मेरे चांद के आगे शर्माना तो बनता है।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
0: बहुत प्यारा, चांद बहुत प्यारा।
1: चांद का मेरे चांद के आगे शर्माना तो बनता है, और बाहों की जंजीरों में कल कैद उन्हें हम कर लेंगे
0: जी,
1: बाहों की जंजीरों में कल कैद उन्हें हम कर लेंगे, उन पर आज ना आने का ये जुर्माना तो बनता है।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: बाहों की जंजीरों में कल कैद उन्हें हम कर लेंगे, उन पर आज ना आने का ये जुर्माना तो बनता है। ये मकता देखें कि कमसिन है वो प्यार मोहब्बत समझेंगे धीरे धीरे,
0: जी
1: कमसिन है वो प्यार मोहब्बत समझेंगे धीरे धीरे, मजहर आपका सब्र तहमुल दिखलाना तो बनता है, सब्र करें मजहर मियाँ। कमसिन है वो प्यार मोहब्बत समझेंगे धीरे धीरे, मजहर आपका सब्र तहमुल दिखलाना तो बनता है, फूलों की डाली सा तेरा बल खाना तो बनता है, हुस्ने मुजस्सम बेशक तेरा इतराना तो बनता है।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बेहद बेहद बहुत ही दिल को छू जाने वाली, छेड़छाड़ करने वाली, बड़ी शानदार, मजा आ गया साहब, मजा आ गया।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश,
0: बहुत ही प्यारी शुरुआत। तो आगे बढ़ते हुए मजहर साहब, एक छोटा सा मासूम सा सवाल पूछना चाहूंगा।
1: जरूर।
0: आप बचपन में क्या बनना चाहते थे मजहर साहब?
1: देखिए बचपन में हमारे लोगों का बचपन हमारे आज के बच्चों के बचपन जैसा नहीं
0: जी।
1: हम लोग हमारे माता पिता ये रास्ता देखते थे कि बच्चा किसी तरह ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो और किसी तरह नौकरी करके घर का सहारा बने। तो उस वक्त दिल दिमाग में सिर्फ एक चीज रहती थी कि हमको अपने घर को सपोर्ट करना है
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: उस हिसाब से अपना एजुकेशन लिए। बाद में फिर इधर उधर की नौकरियां करते हुए कोल इंडिया में जब वैकेंसी निकली तब हमें लगा कि ये सही जगह है, यहाँ हमारा भविष्य बन सकता है। तो उस जगह पे हमने अपना इंटरव्यू दिया और ऊपर वाले की मेहरबानी कि इसमें सक्सेस हो गए और उसके बाद में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते डिप्टी जनरल मैनेजर तक पहुंचे और बड़ी खूबसूरती से अपने काम को अंजाम दिया और बहुत सुकून से अंजाम दिया और बहुत सुकून में है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात। ये सवाल खासम खास मैं इस वजह से पूछता हूँ कि हमारे श्रोताओं को जो भी यहाँ पर शायर होते हैं, इंटेलिजेंसिया होती है, जो भी बुद्धिमत्ता वाले या जो इम्पोर्टेंट लोग बैठे होते हैं, वो जाहिर से बात है कुछ तो इस जिंदगी को बेहतर समझे होते हैं।
1: जी जी, बहुत बेहतर समझे होते हैं जनाब, बड़े काबिल लोग आते हैं, काबिल लोग बैठते हैं।
0: तो जब मैं इस तरीके का एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते ही नहीं, गहराई से कभी उस तरफ जाते ही नहीं, और जब आप लोगों की तरफ से इस तरह के जवाब आते हैं तो हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या बात कही है, हम अपने बचपन में क्या बनना चाहते थे और क्या बन गए, सफल हुए या नहीं हुए, दिल में कोई टीस तो नहीं रह गई, क्या हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपने दिल को एक बार वापस से खंगालने का मौका मिलता है सुनकर।
1: बहुत अच्छा सवाल है,
0: तो बस इस वजह से ये सवाल पूछते हैं।
1: मैंने बहुत अंदर सवाल, बहुत अंदर।
0: तो आगे बढ़ते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंदीदा कोई गजल गायक की गजल हमें बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा दें।
1: देखिए मैं आपने गालिब का वो शेर जरूर सुना होगा कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे।
0: जी जी,
1: हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और
0: अंदाज़े बयां।
1: तो उसी तरह से आप देखिएगा कि गजल की दुनिया में जो गजल गाने वाले गुलूकार जिनको हम बोलते हैं
0: जी
1: बहुत हैं। आप मेहंदी हसन साहब को सुनेंगे उनका एक अलग मिजाज है, आप गुलाम अली साहब को सुनेंगे उनका अलग मिजाज है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ जगजीत सिंह साहब को। और मैं एक चीज आपको और बता दूं कि मैं बेसिकली सिंगर हूँ, बेसिक मेरा सिंगर का है।
0: क्या बात है।
1: और वो मैं पता नहीं कब से कर रहा हूँ, तो मैं जगजीत सिंह साहब को ही मोस्टली अपने प्रोग्राम में गाता हूँ। तो मेरी पसंद के सबसे पसंदीदा गजल गायक अगर कोई है तो जगजीत सिंह साहब।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: आप अपने श्रोताओं को चाहे जो उनकी गजल एक आप तो छू लें जिस गजल को वो सुनने लायक हो जाएगी।
0: ओ, क्या कह दिया साहब,
1: उनका तो वो कमाल है ना।
0: जी जी जी जी जी जी जी, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया, एकदम दुरुस्त कहा आपने। तो आइए दोस्तों, जगजीत साहब की ही गाई हुई बहुत ही प्यारी सी ये गजल सुनते हैं।

0: तो कुरैशी साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि एक और प्यारी सी गजल हमें सुना दें, हमारे श्रोताओं को सुना दें।
1: जी जी जी जी जी देखिए, अब मैं ज्यादातर इश्क मोहब्बत पे लिखता हूँ, लेकिन कभी संजीदगी भी शायरी का एक हिस्सा होती है
0: जी।
1: और तो इसको देखिएगा कि अपनी हस्ती को सुपुर्दे आईना करते हुए
0: जी,
1: अपनी हस्ती को सुपुर्दे आईना करते हुए लोग डर जाते हैं सच का सामना करते हुए।
0: वाह।
1: अपनी हस्ती को सुपुर्दे आईना करते हुए लोग डर जाते हैं सच का सामना करते हुए, और आशिकों ने इश्क में वादा वफा करते हुए, आशिकों ने इश्क में वादा वफा करते हुए जान दे दी हक मोहब्बत का अदा करते हुए।
0: क्या बात,
1: जान
0: है?
1: दे दी जी, जान दे दी हक मोहब्बत का अदा करते हुए। ये शेर देखें कि अपना सब कुछ फूंक बैठे हैं पराई आग में, अपना सब कुछ फूंक बैठे हैं पराई आग में, हो गए बर्बाद औरों का भला करते हुए।
0: वाह।
1: हो गए बर्बाद औरों का भला करते हुए। और ये देखें कि सबको समझाते थे बचना इश्क के आजार से, इश्क की बीमारी से बचिए, सबको समझाते थे बचना इश्क के आजार से, खुद हुए बीमार औरों की दवा करते हुए।
0: वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।
1: खुद हुए बीमार औरों की दवा करते हुए। कामयाबी तो हमें बेशक मिली पर क्या करें
0: जी,
1: कामयाबी तो हमें बेशक मिली पर क्या करें, उम्र गुजरी बेवफा को बावफा करते हुए।
0: वाह।
1: उम्र गुजरी, कामयाबी तो हमें बेशक मिली पर हम पर क्या करें, उम्र गुजरी बेवफा को बावफा करते हुए। और ये देखिएगा कि ये फिर एक हुस्न का शेर आ गया कि रश्क होता है उसे भी हुस्ने जाना देखकर।
0: वाह।
1: रश्क होता है उसे भी हुस्ने जाना देखकर, चांद शर्माता है उनका सामना करते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: रश्क होता है उसे भी हुस्ने जाना देखकर, चांद शर्माता है उनका सामना करते हुए। और इश्क कर बैठे थे हम भी किस भरम में क्या पता, इश्क कर बैठे थे हम भी किस भरम में क्या पता, थक गए मजहर खताए दिल रवा करते हुए। यानी अपने दिल की खता को सुधारते सुधारते थक गए, इश्क कर बैठे थे हम भी किस भरम में क्या पता, थक गए मजहर खताए दिल गवा करते हुए। ये थी मेरी दूसरी गजल।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जैसे आपने कहा कि आप इश्क मोहब्बत पे ज्यादातर लिखते हैं, लेकिन कुछ दूसरी संजीदा चीजें भी होती हैं,
1: जो शायर की फितरत में है ही, वो चीज वो आ ही जाती है।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो दोबारा से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने किसी और गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
1: आप मेहंदी हसन साहब की गजल रंजिश ही सही, वो मतलब वो माइलस्टोन है, वो लिखने वाले अहमद फराज साहब ने भी उसको लिखा है, तो वो भी शायद उनकी उस गजल से ज्यादा मकबूल तो वो शायद ही कोई गजल हुई है। और ये गजल जब मेहंदी हसन साहब ने गाई है तो चार चांद लग गए हैं इसमें।
0: आपने बिल्कुल सही फरमाया। आइए दोस्तों, सुनते हैं मेहंदी हसन साहब की आवाज में ये गजल जो मजहर कुरैशी साहब ने फरमाइश की है।

0: बहुत ही प्यारी गजल, बहुत ही प्यारी गजल। तो मजहर साहब, आगे बढ़ते हुए एक ऐसा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जिसका जवाब मुझे पूरा यकीन है कि आपके जैसे शायर ही बड़ा खूबसूरत देंगे।
1: जी,
0: वो ये कि अगर आपको आपकी तीन इच्छाएं पूरी कर देने वाला जिन्न कहीं से मिल जाए तो क्या मांगेंगे आप?
1: तीन इच्छाएं पूरी कर देने वाला जिन अगर मुझे कहीं से मिल जाए
0: तो क्या मांगेंगे?
1: तो क्या मांगेंगे
0: जी?
1: तो मैं उससे ये मांगूंगा कि मुझे जो जिंदगी मिली है बहुत अच्छी मिली है, और मुझे ऐसी जिंदगी की तरफ मत ले जाना कि जो जिंदगी मुझे दूसरों के आश्रय पे गुजारनी पड़े।
0: क्या
1: बस
0: बात है?
1: यही मैं उससे मांगूंगा।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात। और कोई दो ख्वाहिशें बची हैं वैसे आपकी, चाहें तो मांग लें।
1: अब क्या है कि ख्वाहिशों की तो कैफी आजमी साहब ने बड़ा अच्छा शेर लिखा है कि इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं।
0: जी,
1: इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, दो गज कफन भी चाहिए दो गज जमी के बाद।
0: क्या बात तो है, क्या बात है।
1: ख्वाहिशों का तो क्या है।
0: चलिए कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ते हुए वापस से आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें एक गजल और सुनाएं सर आपकी।
1: जी जी, देखिए ये भी मैंने कहा ना कि मैं कुछ थोड़ा सा अलग मौजू के अलग विषय इश्क को ही अलग अलग तरीके से पेश करता हूँ।
0: जी,
1: तो ये भी वही है कि मेरे होते वो किसी और को चाहें, हद है मेरे होते
0: जी,
1: वो किसी और को चाहें हद है, मुझको दानिश्ता सरे बज्म सताएं हद है,
0: क्या
1: मुझे
0: बात है?
1: सरे आम सताएं हद है, मेरे होते वो किसी और को चाहें हद है, मुझको दानिश्ता सरे बज्म सताएं हद है। और ये देखिए बड़ा प्यारा शेर है कि तोड़ दें अहदे वफा वो तो कोई जुर्म नहीं।
0: जी,
1: तोड़ दें अहदे वफा वो तो कोई जुर्म नहीं, हम पे लाजिम है बहर हाल निभाएं।
0: क्या बात है, क्या बहुत खूब, बहुत खूब, हद है भाई, हद है।
1: तोड़ दें अहदे वफा वो तो कोई जुर्म नहीं, हम पे लाजिम है बहर हाल निभाएं, हद है
0: जी।
1: जब भी जी चाहे उतर आए निगाहों में मेरी, जब भी जी चाहे उतर आए निगाहों में मेरी, फेर ले फिर दिले मुस्तर से निगाहें हद है
0: जी,
1: फेर ले फिर दिले मुस्तर से निगाहें हद है। और ये नीम जा लफ्ज है इसमें कि मैं जिसको बोलते हैं ना कि मरनासन
0: जी, जी,
1: नीम
0: जी,
1: जा जी। नीम जा पहले से हूं जलवे जाना की कसम, नीम जा
0: जी,
1: पहले से हूं जलवे जाना की कसम, वो हटाते भी नहीं मुझसे निगाहें हद है,
0: हद है, क्या बात है,
1: वो हटाते है? भी नहीं मुझसे निगाहें हद है। और ये देखिएगा कि खुद नुमाई से परेशान है आईना, मगर आईने के सामने देखने का जो शौक है ना वो खुद नुमाई से परेशान है आईना, मगर उस बेचारे पे भी वो रहम न खाएं
0: हद है, हद है,
1: वो उस बेचारे पे भी वो रहम न खाएं हद है। या आखिरी शेर देखिए, वो हमें चाहे ना चाहे ये है उनकी मर्जी
0: जी,
1: वो हमें चाहे ना चाहे ये है उनकी मर्जी, उनकी ये जिद है मगर हम उन्हें चाहें हद है,
0: हद है। भाई
1: वो हमें चाहे, वो हमें चाहे ना चाहे ये है उनकी मर्जी, और उनकी ये जिद है मगर हम उन्हें चाहें हद है, मेरे होते हुए वो किसी और को चाहें हद है, मुझको दानिश्ता सरे बज़्म सताएं हद है। ये थी मेरी एक और गजल।
0: बहुत बहुत बड़ी खूबसूरत और बड़ी ही मजेदार मजेदार लहजे में मजे लेते हुए आपने बढ़िया ढंग से हल्की हल्की चोट पहुंचाई, छेड़ा, बहुत मजा आया साहब।
1: शुक्रिया।
0: लफ्जों की जो ये इस्तेमालात है इसी को तो गजल कहते हैं, नज्म कहते हैं, और शायरों की ताकत यही होती है। क्या बात है।
1: जी जी जी जी जी।
0: ठीक है साहब, आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा मासूम सवाल फिर से।
1: बिल्कुल पूछिए।
0: आपका सबसे पसंदीदा खाना क्या है और क्यों?
1: देखिए, मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा खाना जो है
0: जी,
1: मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ये अलग बात है
0: जी जी,
1: लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आता है खाने में
0: जी,
1: वो एक जो चीज है उसको बोलते हैं बैंगन, जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, वो मुझे बहुत पसंद आता है।
0: अरे साहब, मुझे तो, बहुत पसंद है बैंगन का भरते का तो जवाब नहीं।
1: बैंगन का भरता, भरवा बैंगन, ये मैं बहुत खाता हूँ। और नॉनवेज में मुझे बहुत ज्यादा शौक अगर किसी चीज का है तो फिश का है
0: जी, जी, जी।
1: और बहुत कुछ नहीं, और मीठा खाने का बहुत शौकीन हूँ।
0: जी जी जी जी,
1: बहुत शौकीन हूँ मीठा खाने।
0: भाई वाह, क्या बात है।
1: मीठा खाने से मीठा बोलने लगता है इंसान, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो मैं समझूंगा कि मैं सही काम कर रहा हूँ।
0: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी कहा ही जाता है कि अगर किसी का मूड खराब हो या ऑफिस में अक्सर ऐसा हो जाता है कि साहब लड़ाई झगड़ा सा हो रहा है, तो फौरन कई समझदार लोग जो हैं अपने टेबल के ऊपर टॉफियों का एक डब्बा रखते हैं, फौरन एक टॉफी पकड़ा दी जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: उससे लड़ाई झगड़ा तुरंत शांत हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये बहुत आजमाया हुआ नुस्खा आपका तो बहुत आजमाया मुझे लगता है, और मैं भी ये रखता था अपने पास में एक जमाने।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी तो जहां तक बैंगन की बात कहें तो साहब कभी
1: मुझे तो बहुत पसंद है, पता नहीं कितने लोगों को पसंद आता है, मुझे तो उसको देख के मेरे मुंह में पानी आता है अगर मैं उसको भर।
0: नहीं, कहते हैं साहब की मतलब कहने कहने वालों की बात है, कहते हैं साहब वो तो सब्जियों का राजा है क्योंकि उसके सर पे तो ताज रखा हुआ है।
1: हाँ,
0: ताज पहने हुए होता है।
1: वो सही में मेरे हिसाब से तो वो सब्जियों का राजा है।
0: बहुत खूब बहुत खूब। तो सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंदीदा किसी गजल गायक की कोई गजल बताएं।
1: जी जी, देखिए आप लोगों ने मैंने जगजीत सिंह साहब का नाम लिया, मैंने मेहंदी हसन साहब का नाम लिया, मुझे एक गजल गायक और बहुत ज्यादा पसंद है
0: जी,
1: और वो उनका अभी अभी काफी अरसा पहले, अभी अभी थोड़े दिन पहले उनका इंतकाल भी हुआ, और वो बहुत अच्छे शायर थे। मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, याद आता है तो मैं आपको जरूर बताता हूँ।
0: शायर या गायक?
1: नहीं नहीं गायक, गजल गायक।
0: तो वो तो ये हैं आपके पंकज उदास साहब।
1: बस पंकज उदास।
0: जी,
1: ऐ गमे जिंदगी कुछ तो कर फैसला,
0: जी जी,
1: एक तरफ उसका घर
0: एक तरफ मैं कदा। क्या बात है, क्या बात।
1: बहुत खूबसूरत गजल,
0: बहुत ही प्यारी गजल, बहुत ही प्यारी गजल साहब। तो लीजिए दोस्तों, कुरैशी साहब के हुक्म पर पंकज उदास साहब की ये बहुत ही खूबसूरत सी गजल सुनते हैं।

0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि अपनी एक और प्यारी सी गजल हमें सुनाएं।
1: जी

0: एक अपनी एक फिलॉसफी होती है कि ना है ये किसी की ना होगी किसी की,
1: जी
0: ना है ये किसी की ना होगी किसी की, मेरे यार दुनिया बड़ी बेवफा है।
1: जी
0: मेरे यार ना है ये किसी की ना होगी किसी की, मेरे यार दुनिया बड़ी बेवफा है। अब ये एक शेर सुनिएगा कि मुखौटे शराफत के पहने हैं लेकिन,
1: जी
0: मुखौटे शराफत के पहने हैं लेकिन ना मैं पारसा हूं ना तू पारसा है।
1: वाह,
0: मुखौटे मुखौटे शराफत के पहने हैं लेकिन ना मैं पारसा हूं ना तू पारसा है। अब ये देखिए, ये शेर भी एक बड़ा मानी खेज शेर है कि भलाई का बदला भला ही मिलेगा।
1: जी
0: भलाई का बदला क्वेश्चन मार्क है
1: जी जी,
0: कि भलाई का बदला भला ही मिलेगा, भले आदमी तुझसे किसने कहा है, भले आदमी
1: जी
0: तुझसे किसने कहा
1: जी
0: भलाई का बदला भलाई मिलेगा, मिलता नहीं आजकल
1: जी जी जी जी जी जी,
0: तो भले आदमी तुझसे किसने कहा है
1: जी।
0: अब ये एक और इसमें गजल का शेर यानी हुस्न का शेर आ गया कि मैं अपने तजस्सुस की तस्की तो कर ली, मैं अपना जो मेरे अंदर जो मैं वो होती ना दे जानने की इच्छा, मैं अपने तजस्सुस की तस्की तो कर लूं, भरम है मेरा या तू सचमुच मेरा है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: मैं अपने तजस्सुस की तस्की तो कर लूं, भरम है मेरा या तू सचमुच मेरा है, और जुदाई का जो जख्म तूने दिया था
1: जी,
0: जुदाई का जो जख्म तूने दिया था, मुबारक हो तुझको वो अब तक हरा है।
1: वाह,
0: मुबारक हो तुझको, जुदाई का जो जख्म तूने दिया था, मुबारक हो तुझको वो अब तक हरा है। और ये इसका मक्ता पेश करता हूं कि कुचल डाले मजहर के सब ख्वाब तूने, कुचल डाले मजहर के सब ख्वाब तूने, बस इतना बता दे तुझे क्या मिला है।
1: वाह,
0: बस इतना बता दे, कुचल डाले मजहर के सब ख्वाब तूने, बस इतना बता दे तुझे क्या मिला है। अजब एक हंगामा बरपा हुआ है, खिलाफे रिवायत अगर कुछ कहा जी।
1: ओहो क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर,
0: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत ही प्यारी गजल, शानदार
0: जी, बहुत शुक्रिया, नवाज़िश।
1: मजहर साहब, आगे बढ़ते हुए फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि एक अपने पसंदीदा गजल गायक की गजल हमें बता दें जो हम अपने दोस्तों को सुना सकें।
0: जी देखिए, गुलाम अली साहब को भी मैं बहुत सुनता हूँ
1: जी,
0: और मैं उनकी गजलों को गाया भी मैंने बहुत है। ज्यादातर गजलें तो मैंने प्रोग्राम्स में जगजीत सिंह साहब की गाई है, लेकिन इक्का दुक्का गजलें मैंने गुलाम अली साहब की भी बहुत गाई हैं। तो गुलाम अली साहब ने अपना निकाह फिल्म में एक गजल गाई भी थी, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, मुझे वो गजल भी बहुत पसंद है और मैं उसको अक्सर सुनता रहता हूँ, गुलाम अली साहब की वो गजल चुपके चुपके रात दिन।
1: क्या बात है, बहुत खूब। आइए दोस्तों सुनते हैं कुरैशी साहब के हुक्म पर गुलाम अली साहब की गाई हुई ये प्यारी सी गजल।

0: बहुत सुंदर गजल, बहुत ही सुंदर। तो कुरैशी साहब, आगे बढ़ते हुए बस एक और प्यारा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि
1: जरूर जरूर जरूर,
0: अपने किसी सबसे अच्छे दोस्त के बारे में बताइए कि वो आपका सबसे अच्छा दोस्त क्यों है।
1: हाँ, ये सवाल आपने अच्छा पूछा कि वो
0: आपका सबसे अच्छा दोस्त क्यों है।
1: जी जी जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में मेरे, अब बचपन के दोस्त तो मेरे बहुत सारे नहीं रहे, लेकिन आज की तारीख में शमशाद शाद साहब जो हैं वो मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे सबसे अजीज दोस्तों में से हैं शमशाद साहब।
0: क्या बात,
1: मैं उन्हीं की शागिर्दी में हूँ, लेकिन वो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं और बहुत इज्जत देते हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ।
0: बहुत खूब साहब। शमशाद शाद साहब का मैंने इंटरव्यू लिया है, उनसे बातचीत की है, उनका प्रोग्राम बनाया है, मतलब इट वाज शीयर प्लेजर टॉकिंग टू हिम। उनसे बातचीत करने का जो मज़ा है वो बेहतरीन है, बहुत ही मज़ेदार। और उसके बाद उन्होंने आगे बढ़कर मुझे आपसे मिलवाया, मुझ पर एहसान किया, और भी बहुत सारे शायर अरे नहीं, उन्होंने एक से एक खूबसूरत, एक से एक बेहतरीन शायरों से मुझे मिलवाया।
1: जी जी,
0: ये उनका शुक्रिया है।
1: मैं तो कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं हूँ मैं तो, मैं तो उनके, मैं ये समझ लीजिए कि उनके नक्शे कदम पर चलने की एक नाकाम सी कोशिश करता हूँ। कि उनका कहना यह है कि आप जो भी कहें कुछ ऐसा कहें कि सुनने वाले को भी लगे कि इसमें कुछ नयापन है, अपना अंदाज ऐसा रखें। बाकी तो लिखते सभी हैं, कोशिश में भी करता हूँ। जी,
0: बहुत खूब कहा आपने साहब, बहुत खूब कहा। तो मजार साहब, एक और गजल की गुजारिश है आपसे।
1: जी, ये मेरी बहुत पसंदीदा गजल है। देखिए, ये भी इश्क और मुश्क से हटकर गजल है।
0: जी जी जी,
1: अर्ज करता हूं कि धूप खिली है आंगन में।
0: जी,
1: धूप खिली है आंगन में और अंधेरा है मन में।
0: ओहो,
1: धूप खिली है आंगन में और अंधेरा है मन में। ये शेर देखिएगा कि उम्र के थप्पड़ है मुंह पर।
0: जी,
1: उम्र के थप्पड़ है मुंह पर, क्या देखें अब दर्पण में।
0: ओहो,
1: उम्र के थप्पड़ है मुंह पर, क्या देखें अब दर्पण में। प्यार ना कुर्बान हो जाए तेरी मेरी अनबन में, प्यार ना कुर्बान हो जाए तेरी मेरी अनबन में। ये शेर देखें कि दर्द झलकता है अक्सर तेरी हंसी के खन खन में। क्या दर्द झलकता है अक्सर तेरी हंसी के खन खन में। और इतनी तो रुसवाई न थी, ये शेर मुझे भी बहुत पसंद है।
0: जी जी,
1: इतनी तो रुसवाई न थी, दाग है जितने दामन में।
0: जी,
1: इतनी तो रुसवाई न थी, दाग है जितने दामन में। और ये इसमें मैंने हिंदी के शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। तो ये तो बताओ कब कैसे, ये तो बताओ कब कैसे आन बसे मेरे मन में, ये तो बताओ कब कैसे आन बसे मेरे मन में। और ये हमारी सबकी इच्छा होती है कि हो जाए ऐ काश वही, हो जाए ऐ काश वही जैसे थे हम बचपन में।
0: क्या बात है,
1: हो जाए ऐ काश वही जैसे थे हम बचपन में। मख्तार करता हूं कि शहरों में दम घुटता है।
0: जी,
1: शहरों में दम घुटता है मजहर चलते हैं बन में, शहरों में दम घुटता है मजहर चलते हैं बन में, धूप खिली है आंगन में और अंधेरा है मन में।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही संजीदा और बहुत ही मजेदार गजल। साहब, कहना पड़ेगा आपकी सारी गजलों में एक अजीब सा जिसको कहते हैं किक है इंग्लिश में, अगर हम कहें, मेरे पास लफ्ज नहीं है कहने के लिए, कि एक अजीब सी किक है जो सुनने वालों को अगली गजल के इंतजार में बस बैठाए ही रखती है। बहुत
1: नवाजिश आपकी और आपके तमाम सुनने वालों की, बहुत नवाजिश और बहुत शुक्रिया।
0: बहुत खूब सर, बहुत खूब। मजहर साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने आए, आपकी बातें सुनकर, आपके सवालात का, सवालों के जवाब सुनकर, आपकी गजलें सुनकर बस लुत्फ आ गया साहब।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बुलाया और आपने अपने सुनने वालों को मेरे कलाम सुनाए, और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो भी टूटे फूटे कलाम जैसा मैं पेश कर सका, आपको और आपके सुनने वालों को जरूर पसंद आए होंगे।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और हमारे किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि हम और आप देख रहे हैं गर्मी इतनी ज़्यादा भीषण पड़ रही है। ऐसे में हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान साथी जिनका मन नहीं मानता है और वो सोचते हैं कि हम तो खेती में ही हमें पूरा समय व्यतीत करना है, और चाहे वो गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, या फिर बरसात का मौसम हो, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, सोचते रहते हैं कुछ नयापन करने के लिए। और बहुत सारे किसान साथी ऐसा करते भी हैं और कर भी रहे हैं, तो ऐसे में किसान साथी थोड़ा अपना भी ख्याल अवश्य रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से हमारे किसान साथी यदि बीमार पड़ जाएंगे तो आगामी फसल कैसे करेंगे। हाँ, हमें आशा है कि किसान साथी हमारी बात को समझ रहे होंगे। और किसान साथी, इस बार चूंकि आपके जिले झाबुआ में पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन खुल गया है, तो नई नई जानकारी तो आप सुन ही रहे होंगे, और आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों की ये जो जानकारी है वो बहुत पसंद आ रही होगी। हम कोशिश करेंगे कि वो छोटी सी छोटी जानकारी हमारे किसान साथियों तक पहुंचाई जाए, जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो। अब हमारे किसान साथी चूंकि पथरीला इलाका है झाबुआ जिले का, और हमारे किसान साथी कम सीमित उनके पास खेती भी है, और जिनके पास ज्यादा खेती है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन जिनके पास कम खेती है वो क्या करते हैं कि खेती बस दो सीजन की खेती लेते हैं, ये बरसात के बाद जो खरीफ वाली है या रबी वाली फसल, दोनों फसलें लेते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है, ऐसे में किसान साथी संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी से परामर्श लेकर, आपके पास में KVK है यानी कृषि विज्ञान केंद्र भी है, वहाँ पर जो संबंधित वैज्ञानिक बैठे रहते हैं वो आपके लिए तत्पर तैयार रहते हैं। और साथियों, आपके पास कम्युनिटी रेडियो है जिस पर आप जानकारी अपनी आदान प्रदान कर सकते हैं, साझा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसान साथियों की आय किस तरीके से दोगुनी हो, क्योंकि दुगनी तभी होगी हमारे किसान साथियों की आय जब हम वैज्ञानिक पद्धति की ओर मूव करेंगे, जब हम वैज्ञानिक खेती करना स्टार्ट करेंगे, नई नई पद्धति, नए नए वैरायटी के बीज, और स्प्रिंकलर से खेती करना या फिर ड्रिप एरिगेशन से खेती करना, तो विभिन्न प्रकार की संभावनाएं खेती में, और इसमें लागत भी कम आती है और मुनाफा अधिक होता है। तो हमारे किसान साथी समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, हमें आशा है कि समझ गए होंगे, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें। और अभी से चूंकि बरसात का मौसम जैसे ही आएगा, तो हमारे किसान साथी क्या करेंगे, अभी से तैयारी करें, क्योंकि मनरेगा में बहुत सारा पैसा रहता है, मेड़ बंधान कर सकते हैं हमारे किसान साथी, जो ढालू उबड़ खाबड़ जमीन है उसको एक समतलीकरण उसका कर सकते हैं, जो हमारे किसान साथियों के लिए समतली जमीन है उन पर वो बागवानी लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं, तमाम प्रकार की संभावनाएं खेती में करें। तो किसान साथी करने के लिए यदि तत्पर हैं, तो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी भी तत्पर हैं और हमारे वैज्ञानिक भी तत्पर रहते हैं आपके सहयोग करने के लिए। आपको बस उनके पास जाना है, समझना है, सोचना है, और हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना है। आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज हम एक नई पद्धति की खेती के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, वो है कि किस तरीके से जो हमारे किसान साथियों के पास छोटी छोटी जमीनें हैं वहाँ पर पॉली हाउस, चूँकि पॉली हाउस सरकार द्वारा अनुदान भी इसमें दिया जाता है। पॉली हाउस में टमाटर की खेती किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर की खेती यानी टमाटर सीजनेबल होता है और आपको पता है कि अहम खेती में से एक मानी जाती है टमाटर की खेती, तो ऐसे में किसान साथी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कैसे संभालें, तो पॉली हाउस में किस तरीके से खेती कर सकते हैं टमाटर की, उस पर हम आज एक नजर डालेंगे। साथ साथ में एक सफल किसान की कहानी भी हम सुनाएंगे, साथ साथ में आधुनिक जमाने में हम किसान साथियों को किस तरीके से खेती कर सकते हैं, कौन सी योजना का लाभ लेकर हमारे किसान साथी खेती करते हैं कर सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो तीन चार सेगमेंट होंगे आज हम, साथ साथ में मौसम आधारित जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन साथियों जानकारी उपलब्ध कराने से पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से वीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आप लोग रेडियो अपनी बातें।

सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया बिल 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से भीली गीत को सुना, आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अब जानते हैं मौसम क्या कहता है, क्योंकि जब तक हम मौसम आधारित खेती नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा क्या कहता है मौसम। तो आने वाले 5 दिनों के दौरान तेज हवा, आंधी, तूफान चलने की संभावना देखते हुए हमारे किसान साथी, जिन किसान साथियों के पास कच्चे छत वाले पशुशालाओं हैं तो उनका गिरने का डर बना रहता है, इसलिए कच्चे पशुशालाओं की मरम्मत का कार्य अति शीघ्र शुरू कर दे। साथ साथ में कच्चे छत वाले पशुशालाओं के पशु सुरक्षित रहें। आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना बताई जा रही है। आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना भी बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 45 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना बताई जा रही है। रात का न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना बताई जा रही है। हवा की औसत गति 11 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें? आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना बताई जा रही है। साथ साथ में गर्म लू चलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई जिन्होंने सब्जी बोई है, उड़द मूंग भी की फसल उन्होंने बोई है, फलों के बगीचे उन्होंने लगाए हैं, तो हल्की हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर करते रहें। साथ साथ में मूंग में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाई फसल का निरीक्षण करें। नियंत्रण हेतु मिथाइल डेमोटोन और डाई मैथो एट दवा 2.0 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आसमान जब साफ रहे तब उसका छिड़काव अवश्य कर दें। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वे हरी घास हेतु मक्का या ढेंचा की बोनी कर सकते हैं। आने वाले 5 दिनों के दौरान तेज हवा चलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई पान की यदि खेती करते हैं तो पान की बेलों को डंडी या बांस से ऊपर बांधकर चढ़ाने का कार्य शुरू कर दें। साथ साथ में टमाटर जिन किसान साथियों ने लगाई है, मिर्च बैगन की नर्सरी लगाई है, तो उनको दोपहर के समय छाया का उचित प्रबंधन अवश्य करें जिससे गर्म हवाओं से बचा जा सके। कद्दू वर्गीय जिन किसान साथियों ने सब्जियां लगाई हैं, लाल कीड़ा सफ़ेद मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके लिए हमारे किसान भाई ट्राइजोफास 40 ईसी दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अवश्य कर दें तथा दवा छिड़काव के 7 दिन बाद तक सब्जियों को ना तोड़ें। वर्तमान मौसम में बैगन और टमाटर में फल तथा तना छेदक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके बचाव के हेतु क्वानाल फास 25 सीसी दवा 2.0 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अवश्य कर दें। और हमारे जिन किसान साथी नए बाग बगीचे फलबाग लगाने के लिए सोच रहे हैं तो वो गड्ढों की खुदाई अवश्य कर दें, उचित दूरी पर गड्ढे खोदें। साथ साथ में खुदी हुई जो मिट्टी रहती है उसको धूप से तपने दें जिससे जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाए। मानसून पूर्व पशुओं को गलघोंटू और जहरी बुखार के टीके अवश्य लगवा लें। आपके नज़दीकी जो पशु चिकित्सा होगा तो वहाँ पर जाकर संपर्क कर लें। साथ साथ में बारिश के मौसम के आने तक इनके अंदर रोग रोधक क्षमता का विकास हो सके। मुर्गी पालक हमारे किसान साथी जो पाले हुए हैं उनको मुर्गियों को गर्मी से बचाव हेतु मुर्गी खाने में चारों ओर जालियां में टाट फट्टी जो रहती है, बोरे जो रहते हैं उसको लगा देवे। साथ साथ में दिन का समय 2 से 3 बार पानी का छिड़काव अवश्य कर देवे। तो ये थी जानकारी मौसम आधारित जो आपको सुनाई जा रही थी। इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है हमारे कार्यक्रम को सुनने का। हमारे किसान साथी दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि गीत संगीत भी होगा और आपको जानकारी भी हम मुहैया कराएंगे। तो आइए इसी बीच सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके अर्जे मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपड़ा रेडियो आपड़ी बात है।

0: रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम आपरो रेडियो आपरी बातें
1: रेडियो टांडिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं पॉली हाउस में हमारे किसान साथी किस तरीके से टमाटर की खेती कर सकते हैं। आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को, बने रहिए आपके आरजे मरीज के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया व्हील 90.8 एफएम आपका रेडियो अपनी बातें।
2: टमाटर की फसल बहुत ही नाजुक होती है, मौसम की मार इस पर बहुत ज्यादा पड़ती है, प्रभावित हो जाती है इसकी उपज। ऐसे में जरूरी है कि हम कोई विकल्प ढूंढें। विकल्प है पॉली हाउस। जी हाँ, टमाटर की खेती हम पॉली हाउस में कर सकते हैं, बेहतर उत्पादन हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। किस तरह से ये संभव हो सकता है, आइए जानते हैं हमारे इस सेगमेंट के जरिए।
3: देश में टमाटर की मांग साल भर बनी रहती है। प्रधानमंत्री से टॉप फसलों में शुमार कर चुके हैं और ये केंद्र सरकार की ओर से चलाए जाने वाले ऑपरेशन ग्रीन्स का भी हिस्सा है। ज्यादा मांग की वजह से ही इसकी खेती आर्थिक रूप से काफी सुरक्षित मानी जाती है, यानी टमाटर कमाई वाली फसल है। लेकिन ज्यादा धूप, तेज हवा, अत्यधिक बारिश, ओले या मौसम दूसरे हमले इस फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में कीटों और बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। इसकी वजह से किसानों को फसल में कीटनाशकों और दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। इससे न सिर्फ लागत बढ़ जाती है बल्कि गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। पॉली हाउस लोहे और पॉलीथिन से बना छाया घर है, जो महंगी फसलों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं और उन्हें मौसम की मार से बचाता है। इन घरों में जलवायु को नियंत्रित करके बेमौसमी फसलें भी उगाई जा सकती है। बेमौसम फसलें हमेशा से ही ज्यादा मुनाफा देती है। पॉली हाउस में बोने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने कई किस्में तैयार की हैं। पूसा रक्षित, पूसा टमाटर, संरक्षित ए, चेरी टमाटर, हिम शिखर, नवीन, हिम सोना, अभिलाष, शहनशाह, अर्का रक्षक और अर्का सम्राट। ये ऐसी किस्में हैं जो उन्नत भी है और लंबे समय तक फल देती है। टमाटर की खेती के लिए हल्की बलोई या बलोई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। मिट्टी पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होनी चाहिए और पीएच मान 6 से 7। पॉली हाउस के अंदर खेत तैयार करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। मिनी रोटावेटर या कल्टीवेटर से 2-3 जुताई काफी है। पहले जुताई के समय गोबर की खाद जरूर डाल दें। टमाटर उथली जड़ वाली फसल है और फल आने के बाद शाखाओं के लटक जाने या टूट जाने का खतरा रहता है, इसलिए समय समय पर पौधों को रस्सी से बांधकर सहारा देना चाहिए। बसंत और गर्मियों के दिनों में 4 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी है। आम मौसम में हर 10 दिन पर पानी दे सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि पॉली हाउस में टपक सिंचाई का इंतजाम करें। इससे न सिर्फ पानी की बचत होगी बल्कि लागत भी कम आएगी। पॉली हाउस चूंकि बंद संरचना है, इसलिए बारिश होने पर जल भराव की समस्या नहीं आती। टमाटर में रुपाई के पहले 4 हफ्तों के दौरान निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। फसल में तापमान और नमी बनाए रखने के लिए फोगर सिंचाई भी कर सकते हैं। पॉली हाउस में चूंकि वातावरण नियंत्रित होता है, इसलिए पैदावार भी खुले खेत के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इसके अलावा आप साल भर टमाटर की फसल ले सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पॉली हाउस सामान्य खेती के मुकाबले 4 गुना ज्यादा मुनाफा दिला सकता है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया व्हील 90.8 एफएम
4: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी, और अभी आपने सुना पॉली हाउस में किस तरीके से टमाटर की खेती कर सकते हैं। अगला सेगमेंट है कि बागवानी में किस तरीके से हमारे किसान साथी आगे बढ़ सकते हैं, और साथ में सुनेंगे सफल कहानी हमारे एक किसान की। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम आपका रेडियो अपनी बातें। इसी बीच कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं इस प्यारे से वीर गीत को।

0: खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
1: खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा।
0: इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
2: किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी में कई ऐसी मिसालें हैं जो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। आज एक ऐसे ही किसान अमरनाथ से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं कैसे उन्होंने कामयाबी का ये सफर तय किया है।
3: अमरनाथ का जन्म गांव खेड़ा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। इन्होंने खेतीहर परिवार में जन्म लिया था, इसलिए जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे उनकी रुचि खेती से जुड़ती जा रही थी। उनके पिता ने उनका दाखिला स्कूल में कराया तो था, लेकिन पेड़ों की छांव में पढ़ते समय भी अमरनाथ के दिमाग में खेती ही गूंजती रहती थी। पुराने दिन की वे यादें आज भी वे भूले नहीं है। अमरनाथ बचपन से ही अपने पिता के साथ खेतों पर जाते थे। उन्होंने देखा कि किसान किस तरह खेतों में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जितनी मेहनत वो करता है उसके मुकाबले किसानों को मजदूरी तक नसीब नहीं होती है। इसी कारण अमरनाथ ने कई जगह नौकरी भी की, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ खास तरक्की नहीं मिली। आखिरकार अमरनाथ ने खेती को चुना और इसमें लगातार मेहनत करने लगे। वो दिन रात खेतों पर काम करते, बुआई बिजाई से लेकर कटाई तक सारे काम वे खुद ही करते हैं। काम करने की लगन और हमेशा कुछ नया करने की जिद ने अमरनाथ के लिए नए रास्ते बनाने शुरू कर दिए। उन्हें कहीं से पता चला कि सरकार किसानों के लिए अनेक सुविधाएं और ऋण मुहैया कराती है, तो बस फिर क्या था, अमरनाथ ने सरकार से खेती करने के लिए ऋण लेकर अपने काम को आगे बढ़ाया। उन पैसों से ट्रैक्टर खरीदा, धान काटने की मशीन खरीदी। सरकार की तरफ से मिली इन सुविधाओं से खेती से काफी मदद मिली। इन सभी मिली सुविधाओं से अमरनाथ की समझ भी बढ़ी। उन्हें उन्हें ये समझ आने लगा कि परंपरागत खेती को छोड़ नई तकनीकों को अपनाकर ही किसान खेती में सफलता हासिल कर सकता है। लिहाजा वे नई तकनीकों के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने लगे। अमरनाथ ने अनेक राज्यों के सेमिनारों में शिरकत की और वहां अपने फसलों का प्रदर्शन किया और उसके लिए अमरनाथ को इनाम भी मिला। अमरनाथ खेती से जुड़ी बारीकियों और नई तकनीकों को जानने के लिए शहरों के चक्कर भी लगाते थे। इसी बीच उनका नासिक जाना हुआ था। वहां जाकर उन्होंने उन्नत किस्म के प्याज की उपज के विषय में विस्तार से जानकारी इकट्ठी की। उन्होंने प्याज की खेती करनी शुरू कर दी और उसमें उन्हें अपार सफलता भी मिली। सेमिनारों में उनके प्याज को खूब सराहा गया और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। अमरनाथ ने फसल चक्र को अपनाया। उन्होंने एक साथ कई फसलें लेनी शुरू की। प्याज के साथ गन्ना और चना भी लगाया, जिससे उनकी आय में भारी इजाफा हुआ और प्रगति के नए रास्ते भी खुलते गए। गरीबी के साए में पले बढ़े अमरनाथ आज अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बलबूते आज सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं।
0: ये पूरा प्राकृतिक है। अधिक जानकारी के लिए
2: बता दें आपको कि हमारी जो सरकार है वो आपकी उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, कई अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम है कृषि अवसंरचना कोष। इस कोष का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, हमारे किसानों को यानी कि आप लोगों को इससे किस तरह का लाभ मिल सकता है, जानने के लिए आइए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट पर।
4: लेकिन साथियों, इनकी बातचीत को सुनने से पहले सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, आपना रेडियो आपनी।

कृषि अवसंरचना कोष केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बनाई गई एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद कृषि अवसंरचना प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए माध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना, उपज बढ़ाने के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए धन उपलब्ध करना, लिए गए ऋण पर सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना प्रमुख है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारित तंत्र को मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके और साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनिटिक मानदंडों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाए।

0: जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 यानी 10 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स पात्र हैं। ये ऋण 4 वर्षों में वितरित करने का लक्ष्य है। कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म सभी योग्य संस्थाओं को ऋण के लिए आवेदन करने में सुविधा प्रदान कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति या संस्थान पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन से पहले अलग अलग बैंकों द्वारा प्रस्तावित ऋण दरों के बीच तुलना करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की प्रक्रिया के साथ साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं।
1: किसान भाइयों बहनों, अथर्ववेद में लिखा है कि ये धरती हमारी माँ है और हम सभी इसके पुत्र हैं। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, वैसे ही ये धरती भी हम इंसानों का पेट भरती है अपनी उपज से। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा उपज मिले, इसके लिए हमने क्या किया? रासायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया, जिससे हमारे देश की मिट्टी बीमार हो गई। अब हमारा दायित्व है कि हम इसे स्वस्थ बनाएं। कैसे? प्राकृतिक खेती को अपनाकर। आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं।
2: रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है, जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें 2 तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद 2 तरह से बन सकती है, मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय लोकप्रिय हो रही है और खासतौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और महत्वपूर्ण योजनाएं साथ साथ में हमारे सफल किसान की कहानी और साथ साथ में पॉली हाउस में किस तरीके से हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं उसके बारे में हमने जाना, समझा और सोचा। साथियों, हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अब समझ गए होंगे कि आपके लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है और साथ साथ में योजना पर भी काम कर रहे हैं। और साथियों, यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए हो तो KVK अपना झाबुआ में बना हुआ है, वहाँ पर संबंधित जो वैज्ञानिक रहते हैं उनसे परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि पॉली हाउस की योजना में भी अनुदान दिया जाता है, तो किस तरीके से लाभ लेना है उससे संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में नई पद्धति से नए बीजों का चयन और किस तरीके से जैविक पद्धति से हम खेती करना चाहते हैं, किस तरीके से बागवानी लगाना चाहते हैं, तो आप संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। कि हमें आशा है कि हमारे किसान साथी इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और हम कोशिश करते रहेंगे कि किसान साथियों को वो सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी है। एक बार फिर से आपको हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, अपना ख्याल रखें, पशुओं का भी विशेष तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे में पशुओं को बार बार पानी पिलाएं, साथ में उनको शरीर पर ठंडक बनाए रखें, नहलाएं उनको, नदी यदि आसपास है तो वहाँ पर नदी में भी नहला सकते हैं, साथ साथ में मेड़ बंधान पर विशेष तौर पर ध्यान दे सकते हैं हमारे किसान साथी। और साथ साथ में एक हम उम्मीद करेंगे कि इन कार्यक्रमों को सुनकर हम हमारे किसान साथी अपने जीवन में, अपनी खेती में जरूर बदलाव करेंगे। और साथ साथ में एक बातचीत और फिर से दोहराना चाहते हैं कि जिन किसान साथी जो खेत पर काम कर रहे हैं वो विशेष तौर पर अपना जरूर ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बार बार पानी पीते रहें, साथ साथ में तौलिया या गमछा अपने सर पर डाल के रखें जिससे आपको धूप ना लगे, और ज़्यादा मेहनत ना करें, समय समय पर रेस्ट लेते रहें और अपना काम करते रहें। तो ये जानकारी जो आपको उपलब्ध कराई जा रही है वो आपको बता देना चाहते हैं, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको दी जा रही है। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। फोन नंबर है हमारा 94251436003, यानी 9425413603। इस नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
4: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
3: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे। और कार्यक्रम लेकर आए हैं, कार्यक्रम का नाम है खेती बाड़ी कार्यक्रम, और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, अपना रेडियो अपनी बातें। इस कार्यक्रम में किसान साथियों के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं, उन सेगमेंटों पर बात करते हैं जो हमारे खेती किसानी में हमारे किसान साथियों के लिए बेहद ज्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। अभी चूंकि खेती किसानी में हमारे किसान साथी घर पर बैठे होंगे क्योंकि सीमित उनके पास जमीन है और उन्होंने खेती वो कर अपनी उत्पादन लेकर अपने घर पर बैठे हुए हैं। अब हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं ऐसी गर्मी के मौसम में, तो किसान साथियों के लिए बहुत अच्छी आज के इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत लेकर आए हैं, यानी टमाटर की नर्सरी हमारे किसान साथी कैसे कर सकते हैं, चूंकि पथरीला इलाका है, पानी कम है, किस तरीके से हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं और अपने खेत की आय को बढ़ा सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, और किस तरीके के बीज लगने होंगे और किस तरीके के मौसम की जरूरत होती है और किस तरीके से नर्सरी तैयार की जाती है, इस बात पर हम जिक्र करेंगे आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी में। साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम अपने किसान साथियों को लिए वो छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं जो उनके आय को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहती हैं। हम और आप देख रहे हैं कि खेती करना कितना मुश्किल हो गया है, और ऐसे में किसान साथी चूंकि हम और आप देखते हैं कि सीमित उनके पास जमीन है, पथरीला इलाका है, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो पानी की बहुत ज्यादा किल्लत रहती है, ऐसे में कम पानी वाली फसलें का भी चयन हमारे किसान साथी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे नजदीकी कृषि विभाग में जाकर संपर्क करना होगा, साथ साथ में केबीकेबी है वहां पर जाकर भी संपर्क करना होगा, तब जाकर हमारे जो कृषि वैज्ञानिक रहते हैं उनसे सलाह लेकर हम अपने किसान साथियों को छोटी छोटी बातों को बताएंगे और साथ साथ में आप उनसे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हम नर्सरी पर भी बातचीत करेंगे और साथ साथ में अगर जैविक पद्धति की बात करें, क्योंकि जैविक खेती करना ये अब धीरे धीरे अब हमारे किसान साथियों के जहन में आ गया है कि अब हमें रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, ऐसे गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी अपनी जो खेत खाली पड़े हुए हैं उनकी जुताई कर लें, जुताई के साथ साथ जो पराली रहती है पराली जलाए नहीं, आप उससे खाद उत्पादन कर सकते हैं और खाद से जैविक खाद बनाकर अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं और उनसे भी अपने आय को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लागत जब कम लगेगी तो जाहिर सी बात है उत्पादन भी अच्छा होगा और उत्पादन अच्छा होगा तो हमारे किसान साथियों की आय में वृद्धि होगी। तो हम देर नहीं करते हैं, हम अपने किसान साथियों को टमाटर की नर्सरी किस तरीके से लगा सकते हैं उस पर जिक्र करेंगे, बातचीत करेंगे, विषय विशेषज्ञ के पास आपको ले चलेंगे। लेकिन इस जानकारी से पहले आपको करा देते हैं मनोरंजन इस प्यारे से भीली गीत के साथ। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा भील 90.8 एफएम, आपका रेडियो अपनी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं हमारे वैज्ञानिक से, हमारे विषय विशेषज्ञ से, किस तरीके से हमारे किसान साथी नर्सरी कर सकते हैं टमाटर की, क्योंकि बहुत महंगा टमाटर चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें, नर्सरी करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, आय भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं विषय विशेषज्ञ की इस चर्चा को।
1: टमाटर हमारे भारतवर्ष के उत्तरी मैदानों में काफ़ी खेती की जाती है और लगभग पूरे वर्ष भर इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। तो अब आप देखें, अगर हमारे किसान भाई जो कि फरवरी मार्च की खेती कर रखे हैं, अब वो फसल धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है, तो अब मैदानी क्षेत्रों में जो टमाटर है अब इतनी गर्मी के कारण पकता है तो बिल्कुल लाल भी नहीं होता है। आप देखेंगे हल्का लाल रंग का बन जाता है, बस उसी पे तुड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर जब 40 के डिग्री ऊपर होने लगता है तो उसमें पिगमेंट ही नहीं बनता है लाल रंग का लाइकोपिन, इस वजह से वो टमाटर लाल नहीं होता है। तो ये गर्मी का प्रकोप है, उसकी वजह से लाल नहीं बनता है। तो इस वजह से अब ये धीरे धीरे, वैसे भी वो फसल समाप्ति की ओर है, तो अब हमारे किसान भाई ये देखें, अब अगली फसल की तैयारी उनको करने का समय आ रहा है कि अब नेक्स्ट टमाटर की जो खेती उनको करनी है, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी सोचनी है। हमें कौन सी वैरायटी लगानी है, किस किस्म का चुनाव करना है और किस तरह से उसके नर्सरी की तैयारी करनी है, तो इस बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आप अभी से चुनाव करके उन किस्मों का चयन करके अपने पास उसके बीज उपलब्धता कर लेंगे, तभी तो आप नर्सरी बनाएंगे, फिर आपकी फसल अच्छी होगी। तो आप देखें, ये जो हमारा आने वाला समय है उसमें एक बीमारी बहुत तेज आती है टमाटर के अंदर में, हमारे उत्तर भारत के मैदानों में, जिससे काफी क्षति पहुंचती है। उसको हम लोग पर्ण कुंचन रोग बोलते हैं टमाटर में, अंग्रेजी में लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं। इसका प्रकोप बहुत अधिक होता है इस सीजन की खेती में, जो कि फरवरी मार्च वाले में कम होता है। तो और या तो फिर जो आपका समय है, आप अक्टूबर में जो बुआई करते हैं उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ये जून जुलाई वाला मौसम, जुलाई अगस्त में जो ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई आप करते हैं, इसमें अधिक से अधिक आपका ये पर्ण कुंचन रोग आने की संभावना होती है। तो आपको इस समय ये ध्यान रखना है कि जो किस्म का चुनाव आप करेंगे, वैसे तो टमाटर की खेती में बहुत सारी किस्मों का आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूँ कि जो पर्ण ही आप चुनाव कर रहे हैं तो इस सीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। और अक्टूबर के मौसम के लिए तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, उसको आप खेती कर सकते हैं। तो आप जब अभी बुआई की बात समय जो हम कर रहे हैं कि आप जून, मध्य जून से लेकर के पूरा जुलाई में आप इसकी नर्सरी की टमाटर की डालेंगे, तो उसके लिए जो उपयुक्त किस्में हैं, क्या आप देखें, पंजाब से हमारे जो कुछ किस्में निकाली गई हैं जो कि काफी बहुत ही अच्छी हैं और उनकी उपज भी अच्छी मिलती है और उनका साइज भी 80 से 90 ग्राम तक का होता है हर टमाटर का, और लाल रंग के होते हैं, और इसमें सीमित बढ़वार वाली फसल है, तो जिससे आपको बहुत ज्यादा ये सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है चढ़ाने की, तो आप खुले खेतों में उसकी खेती कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट वाला बोलते हैं। तो उसमें पूसा बरखा एक, पूसा बरखा दो और पूसा बरखा चार, ये जो तीन किस्में हैं हमारे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है, जो बिल्कुल ही लीफ कर्ल वायरस रेजिस्टेंट किस्में हैं, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। और इसी क्रम में हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, वहां से भी दो तीन अच्छी किस्में के लिए बहुत ही अच्छी हैं। में है काशी अमन, काशी विशेष, काशी अमृत और एक हाइब्रिड किस्म भी उन्होंने बनाई है, अभी नई नई निकाली है, काशी अभिमान। तो ये जो चार किस्में हैं जो काशी से निकाली गई हैं और तीन किस्में आपको पंजाब से निकाली गई हैं, ये इस बरसात के मौसम में जो आपकी फसल आएगी उसके लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। उसका कारण सिर्फ यही है कि इस सीजन में पर्ण कुंचन रोग का प्रकोप बहुत अधिक होता है, तो जो दूसरी किस्में लगाएंगे आप उसमें लगाएंगे, लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके आप उस टमाटर से कुछ खेती से आप लाभ ले पाएंगे। तो हमारे किसान भाई आप देखें, अगर आप एक हेक्टेयर टमाटर की खेती लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है, लेकिन हाइब्रिड किस्म अगर है तो उसका 200 से 250 ग्राम बीज ही पर्याप्त होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और उसी हिसाब से आप इस बीज की मात्रा को अपने पास सुलभ कर लें और किस्मों का चयन कर लें। आप देखें जो खुले खेत हैं, आपको टमाटर की खेती करनी है तो कम से कम आपको 10 क्यारी की आवश्यकता पड़ेगी, 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची। इस तरीके से आप 10 क्यारी बनाएंगे और हर क्यारी में लगभग 40 ग्राम के आसपास बीज की आप बुआई करेंगे तो आपके अच्छे पौधे तैयार होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसलिए सबसे पहले आपको भूमि शोधन करने की जरूरत है, और भूमि शोधन दो प्रकार से होती है। एक तो ये है कि जो सौर हमारा इतना गर्मी का मौसम है इसमें खाली आप अगर नमी है तो उसमें डाल दें, अगर लेकिन उसमें एक चीज और डाल दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसा मैंने फॉर्मलिन आती है आपको, फॉर्मल्डिहाइड नाम से भी आती है बाजार में, तो आप उस दवा को ले लें और 25 ml दवा 1 लीटर पानी में इस हिसाब से घोल के आप पूरे क्यारियों के ऊपर अच्छे से छिड़काव कर दें, जिससे कि उसमें नमी बन जाए। और नमी हो जाने के बाद जो सफेद पॉलीथीन की सीट आती है, चादर आती है, वो 15 से 50 माइक्रोन वाली, उसको आप उसको चारों तरफ से उसको ढक दें और साइड से इतनी मिट्टी से दबा दें साइड को कि उसके अंदर

0: बंद कर दें तो जो धूप पड़ेगी अंदर और नमी जो नीचे है उसके अंदर वाष्प पैदा होगा, और वाष्प होने से जो अंदर की जमीन के नीचे फफूंद या कीड़े मकोड़े हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। तो इससे काफी हद तक आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आप जब इस तरीके से कर रहे हैं उसके बाद आप उस पॉलीथीन को हटाएं। पॉलीथीन हटाने के बाद एक हफ्ते तक पॉलीथीन को ढके रखिएगा, उसके बाद हटाएं। हटाने के बाद उससे थोड़ा सा फावड़े से लेकर के मिट्टी को खोल दें, हल्का सा गुड़ाई कर दें, तो जिससे उसके अंदर जो गैस भरी हुई है दवा की वो धीरे धीरे 4-5 दिनों में निकल जाएगी। उसके बाद फिर आप खेत की तैयारी करें और उसमें हर क्यारी में 15 से 20 किलो सड़ी गोबर की खाद आपके पास है या केचुए की खाद भी उपलब्ध है तो जो भी है आप उसमें क्यारी में मिलाएं। और क्यारी में डालने के बाद उसमें हर क्यारी में 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट भी उस क्यारी में मिलाएं, छिटक दें मिट्टी में, और संभव है तो 10 ग्राम प्रति क्यारी फोरेट ये भी आप उसमें मिला सकते हैं, जिससे कि कोई जमीन में जो कीड़े होते हैं कटुआ कीट होते हैं और कोई बोरर के कीट होते हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरीके से आपका खेत इसमें डाल करके बिल्कुल खेत को एकदम अच्छी से गुड़ाई करके घास खरपतवार निकाल करके बिल्कुल तैयार रखें और भुरभुरा हो बिल्कुल खेत, यह ध्यान रखना है। तो जब खेत बिल्कुल आपका तैयार हो गया और बीज शोधन, अगर आपने बाजार से बीज खरीदी है तो शोधित करके ही बीज आती है, अगर आपको शुद्ध बीज मिल रहा है बिना शोधित के जिसका कि हल्के पीले कलर का बीज आपको दिखाई दे रहा है जो लगता है कि ये बिना ट्रीटेड है, तो आप चाहें तो उसमें कैप्टान 2 से 3 ग्राम 1 किलो बीज जिसे आपने आधा किलो के आसपास ली है तो एक चुटकी दवा सिंपल 1 से 2 ग्राम उसमें मिला करके बिल्कुल ऐसे ऐसे मिक्स करने के बाद तो वो बीज शोधन हो जाएगा। उससे फिर आप 5 सेंटीमीटर की कतारों में लाइनें निकालें हर क्यारी में और गहराई रखें 1.5 से 2 सेंटीमीटर की।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।